शुभ प्रभात दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दर्शन के भजनों के इस प्रोग्राम में। भजन क्यों किए जाते हैं, यूं तो सभी को इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी भजन करने से जो मन की शांति हमें मिलती है, स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है, सुबह सुबह जो हमारे चित्त को, हमारे स्वभाव को, हमारे सोचने की शक्ति को प्रबल कर देता है, अच्छा बना देता है, सुख से भर देता है, उसी को भजन कहते हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये भजन। भजन किसी भी भाषा में धार्मिक विषय या आध्यात्मिक विचारों के साथ किसी भी भक्ति गीत को संदर्भित करना होता है, विशेष रूप से धार्मिक धर्मों में। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये प्यारे से भजन। हमने इस दुनिया में आने के बाद क्या सही किया, क्या गलत किया, ईश्वर रूपी दर्पण में सब कुछ साफ दिखाई देता है। दोस्तों, हमें अपने आप को पहचानने की बहुत जरूरत है।

बार बार किसी पूज्य या देवता या प्रभु को याद करना, उसका नाम लेना, जय जयकार करना, ये वही गीत हैं जिसमें ईश्वर या किसी देवता आदि के गुणों का कीर्तन किया जाता है। इन्हीं को भजन कहते हैं मित्रों। तो लीजिए सुनते हैं दिव्य दर्शन की ये भजन। दक्षिण भारत के चित्तूर का एक किसान आर्थिक संकट के कारण मालगुजारी के राशि जमा नहीं कर पाया। इस वजह से अदालत ने उसे जेल भेज दिया। इस बीच श्राद्ध के दिन आ गए। किसान के स्वर्गीय पिता का श्राद्ध कौन करे, ये समस्या खड़ी हुई। किसान की विधवा मां रोने लगी कि उसके पति का श्राद्ध कैसे होगा। अपनी दादी को रोता हुआ देखकर किसान का 11 वर्षीय बेटा रंगनाथ चित्तूर के जिला जज के घर जा पहुंचा। उसने बहुत रिक्वेस्ट करते हुए कहा, जज साहब, आप मेरे पिता को एक दिन के लिए जेल से छुड़वा दें, वो मेरे बाबा का श्राद्ध करके वापस जेल चले जाएंगे। जज ने कहा कि बिना जमानत लिए मैं कैसे किसी को जेल से छुड़ा दूं। रंगनाथ ने कहा, ठीक है जज साहब, पिताजी की जगह आप मुझे जेल भेज दीजिए। मेरे स्वर्गीय दादाजी का श्राद्ध नहीं हुआ तो मेरी दादी जीवित नहीं रहेगी। जज एक बालक की अनूठी पितृभक्ति और स्वर्गीय दादा के प्रति कर्तव्य बोध को देखकर दंग रह गए। उन्होंने खुद ही जमानतनामे पर हस्ताक्षर किए और किसान को जेल से रिहा करा दिया। पितृभक्त वो बालक आगे चलकर दक्षिण भारत के अग्रणी विद्वान रंगनाथ शास्त्री के नाम से जाना गया।

भजन या किसी भी अन्य प्रार्थना का अंतिम उद्देश्य जीवन का जश्न मनाना है और हमें ये जीवन देने के लिए ईश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इस वजह से संगीत के साथ ये गाए हुए शब्द भजन कहलाते हैं। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये भजन। ईश्वर ने शुरुआत में ही मनुष्य को इस तरह बनाया था कि उन्हें न खाने पीने की आवश्यकता थी, न काम करने की, न कपड़े लत्ते की और न घर में रहने की। उन दिनों सब तंदुरुस्त हुआ करते थे और उनकी औसत आयु भी 100 वर्ष के आसपास हुआ करती थी। इसकी वजह यह थी कि लोगों में कोई बीमारी थी ही नहीं, उन्हें पता भी नहीं होता था कि बीमारी कोई चीज है। ईश्वर मनुष्य को बनाकर निश्चिंत हो गए और उन्हें लगा कि संसार में सब अच्छा ही रहेगा। कुछ दिन बाद उन्होंने सोचा कि पृथ्वी पर चलकर देखें कि इंसान रह कैसे रहा है। तब वो पृथ्वी पर आए। उन्हें यह देखकर बेहद हैरानी हुई कि मनुष्य सुखी नहीं था। वे रात दिन आपस में लड़ते झगड़ते थे। उन्हें सिर्फ अपने दुख सुख की चिंता थी और इसके लिए हर कोई दूसरे को परेशान किया करता था। ऐसा करके हर एक ने अपना जीवन विषाद पूर्ण बना दिया था और वे रात दिन संसार को ही कोसने में लगे रहते थे। बहुत सोचने के बाद ईश्वर को समझ में आया कि शायद इंसान अलग अलग रहता है, उसके पास कोई काम नहीं है, इस वजह से शायद वह अपने ही जीवन के बारे में सोचता रहता है। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि हर मनुष्य का कोई ना कोई काम हो जिसके बगैर उसका जीवन ना चल सके। तो अब मनुष्य के पास काम भी आ गया। उन्हें खेती करनी होती थी, अपने खाने के लिए अनाज उगाना पड़ता था, साथ ही सर्दी बारिश धूप से बचने के लिए घर बनाना पड़ता और फिर तन ढकने के लिए सूत भी काटना पड़ता। ईश्वर ने सोचा कि ये सारे काम अकेला इंसान तो नहीं कर सकता, इसके लिए उसे दूसरों की मदद की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। इस तरह मिलकर काम करने से उनमें एकता की भावना पैदा होगी और ये दूसरे के जीवन की कीमत समझ सकेंगे। औजार बनाना, मकान बनाना, लकड़ी काटना, ढोना, अनाज बोना, सूत काटना, कपड़े बनाना, ये सभी काम अकेले कर पाना तो मनुष्य के लिए संभव था ही नहीं। इसी से मनुष्य को समझ में आ जाएगा कि जितनी अच्छी तरह वह दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करेगा उतना ही सुखी रह सकेगा। अंत में उसे एकता की कीमत पता चल जाएगी। ईश्वर यह सब प्रबंध करके निश्चिंत हो गए। कुछ समय बीता तो वह फिर से मनुष्यों को देखने आए कि वो लोग अच्छी तरह से रह रहे हैं या नहीं, उनका जीवन सुखमय हुआ या नहीं। वो ये जानकर और दुखी हो गए कि मनुष्यों का जीवन तो पहले से भी बदतर हो गया था। वे साथ साथ काम तो करते थे क्योंकि ऐसा करना जरूरी था, मगर सब एक साथ नहीं थे। उन्होंने छोटे छोटे दल बना लिए थे। हर दल दूसरे के काम छीनने की कोशिश में लगा रहता था। वे एक दूसरे के काम में विघ्न डालकर अपनी शक्ति और समय को लड़ाई झगड़े में नष्ट कर रहे थे। सभी की दशा बुरी थी। ईश्वर को लगा यह व्यवस्था भी तो ठीक नहीं है। तब उन्होंने ऐसा उपाय किया कि मनुष्य को मृत्यु का सामना करना पड़े और मृत्यु भी ऐसी हो कि उसके समय का पता ही ना चले, कोई भी अचानक कहीं भी मर जाए। ईश्वर ने इस बात की घोषणा मनुष्य के बीच में कर दी। ईश्वर को आशा थी कि किसी भी समय मृत्यु आ जाने की बात जानने पर मनुष्य अपने जीवन के अनिश्चित समय को बर्बाद नहीं करेगा और क्षणिक लाभ के लिए आपस में झगड़ा नहीं करेगा, परंतु परिणाम उल्टा ही रहा। जब ईश्वर मनुष्यों की दशा को पता लगाने के लिए वापस लौटे तो देखा कि उनकी दशा तो इस बार भी बुरी ही थी। मनुष्यों में जो अधिक बलशाली थे उन्होंने इस मृत्यु वाले फलसफे का फायदा उठाना शुरू कर दिया। क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था में किसी की भी मौत कहीं भी आ सकती थी, तो ऐसे में सबल लोगों ने निर्बलों को मार

डाला और बहुतों को मारने की धमकी देकर प्रताड़ित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि बलवान लोग और उनके परिवार वाले खुद तो कुछ करते नहीं थे, लेकिन निर्बलों को खटाते रहते थे। धनी लोग आलस्य और बेकारी के कारण दुखी थे, जबकि गरीबों को अपनी ताकत से ज्यादा काम करना पड़ता था। उन्हें न तो अपने लिए और न परिवार के लिए समय मिल पाता था। यही नहीं, दोनों पक्ष एक दूसरे से डरते और असुरक्षित भी थे। एक दूसरे से वो नफरत करने लगे। तो कुल मिलाकर मनुष्य का जीवन पहले से भी अधिक दुखी हो चुका था। यह सब देखकर ईश्वर असमंजस में पड़ गए। मनुष्यों की दशा में सुधार करने की इच्छा से उन्होंने एक आखिरी उपाय करने की ठानी। मौत जैसी व्यवस्था करने के बाद उन्होंने मनुष्यों के बीच रोग फैला दिए। हर मनुष्य को तरह तरह के रोगों का सामना करना पड़ता। ईश्वर ने सोचा, जब मनुष्य बीमार होगा, शरीर और मन से लाचार होगा, तो उसे दूसरों की तकलीफों के बारे में पता चलेगा। तब उसे समझ में आएगा कि जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें बीमारों पर करुणा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए, ताकि जब वो खुद रोग के कारण कष्ट भोग रहे हों तो दूसरे लोग उसी तरह उनकी भी मदद करें। ईश्वर इस व्यवस्था के बाद निश्चिंत थे कि इसका मनुष्य जाति को जरूर लाभ होगा। सारा प्रबंध करके वो वापस अपने लोक में चले गए। काफी समय बीतने के बाद वो एक बार फिर से पृथ्वी पर देखने के लिए लौटे कि उनका बनाया मनुष्य अपने घर, कपड़े, अनाज, रोग और मृत्यु के साथ किस तरह जीवन यापन कर रहा है। क्या वो अब सुखी है या फिर अब भी उसके पास ढेर सारी शिकायतें हैं? कहना ना होगा कि इस बार मनुष्य की हालत देखकर तो ईश्वर भी पूरी तरह निराश हो गए। उन्होंने देखा कि किस तरह तरह के रोगों के हमला होने के कारण लगभग सभी मनुष्य कष्ट भोग रहे हैं और उनके जीवन का सुख चैन गायब हो चुका है। वे पहले से भी ज्यादा दुखी रहने लगे हैं। ईश्वर ने जिन रोगों को मनुष्य के बीच इसलिए फैलाया था ताकि उनके बीच मेलजोल, भाईचारा बढ़े, वही रोग उन्हें अलग अलग कर रहे थे। जिन मनुष्यों में दूसरों से अपना काम कराने की क्षमता थी, वे रोगी होने पर निर्बलों से अपनी सेवा करा लेते थे, लेकिन दूसरों के बीमार पड़ने पर खुद कभी भी उनकी मदद को नहीं जाते थे। यह अजीब सी व्यवस्था थी कि यहां भी निर्मल पिस रहा था। इस तरह बलशाली और निर्बल के बीच की खाई और बढ़ती जा रही थी। निर्बलों को बलवान के लिए काम करना पड़ता। इसके अलावा जब भी वे बीमार होते तो भी उन्हें धनवानों की सेवा करनी पड़ती। इन सब से इतना थक जाते कि न तो खुद पर और न अपने परिवार पर ही ध्यान दे पाते। उन्हें अपने ही घर के रोगियों की देखभाल या मदद करने का वक्त ही ना मिल पाता। इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा दुखदायी पहलू यह था कि निर्धन रोगियों और उनके कष्ट से भरे दृश्य धनवानों के भोग विलास में बाधा न डाल सकें, इसके लिए कुछ अलग घरों की व्यवस्था कर दी गई। यहां निर्धन रोगियों को रख दिया गया, यहीं पड़े पड़े वो मर जाते थे। विडंबना यह थी कि मरते दम तक उनके प्रिय संबंधी उनके पास नहीं आ पाते थे। भाड़े पर रखे हुए कुछ लोग उनके अंतिम समय में उनके पास रहते, जिन्हें उनके सुख दुख या पीड़ा के बजाय अपने वेतन की परवाह होती। वे बिना किसी सहानुभूति के मरीजों की सेवा करते, साथ ही उनसे घृणा भी करते। इसके अलावा बहुत से रोगों को संक्रामक समझकर लोग न सिर्फ उन रोगियों से बल्कि उनकी सेवा करने वालों से भी दूर रहा करते। इस तरह की व्यवस्था ने इंसान को कई तरह से बांट दिया और वो बेहद दुखी हो गया। तब ईश्वर ने सोचा कि जब मेरे इतने उपायों के बाद भी मनुष्य एकता का महत्व नहीं समझ पाया है, वह नहीं देख पाया है कि उसे वास्तविक आनंद कैसे मिल सकता है, तो फिर उसे उसकी हाल पर ही छोड़ देना ठीक है। शायद बहुत दुख सहने के बाद उसे थोड़ी अक्ल आ जाए। अपनी ही बनाई हुई व्यवस्था और मनुष्य से आहत होकर ईश्वर इस बार यूं ही वापस चले गए। कहते हैं कि इस तरह मनुष्य हमेशा के लिए अकेला और बेसहारा हो गया।
बहुत समय तक ऐसे ही रहने के बाद उसे समझ में आया कि उसे सुखी होना चाहिए और वह सुखी रह सकता है। उसे समझ आने लगा कि उनके सुख का दायित्व उन्हीं पर है, उन्हें बचाने वाला अब कोई नहीं है। अभी थोड़े ही दिन हुए जब कुछ मनुष्यों ने काम की अहमियत को जाना। उन्होंने समझा कि काम के आधार पर मनुष्य को कमतर या उच्चतर नहीं समझना चाहिए, काम से हर मनुष्य को सुख मिलना चाहिए। काम ऐसा होना चाहिए कि मनुष्य के बीच एकजुटता का भाव बना रहे। अब वो समझ गए हैं कि जीवन क्षणभंगुर है और मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए जीवन का जितना भी समय हमारे हाथ में है उसका प्रत्येक साल, महीना, दिन, घंटा और मिनट हमें प्यार और सौहार्द के साथ बिताना चाहिए। वे समझने लगे हैं कि रोग हमें एकता की ताकत समझाने के लिए आते हैं, इसलिए दूसरे की दुख, बीमारी और कष्ट में उनकी मदद करना हर इंसान का कर्तव्य है।

भजन सुनने से, गाने से न केवल मन को शांति मिलती है बल्कि भजन प्रतिरक्षा को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। मतलब हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं भजन। चिंताएं दूर होती हैं, भजन भक्ति मार्ग को प्रशस्त करता है, आसपास के अशुद्ध वातावरण का नाश हो जाता है। तो लीजिए सुनते हैं ये भजन। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के भजन।

रेडियो टंटिया भील आपके झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM सुनते रहिए आपके झाबुआ।

तो चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा, आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।

कभी आपने सोचा है हम इंडियंस फिलोसफी कितना पढ़ते हैं? सच सच बताइए, कितने लोगों ने उपनिषद पढ़े हैं? कितने लोगों ने चार वक्त के दर्शन को समझने की कोशिश की है? कितने लोगों ने कश्मीरी शैविज्म के बारे में पढ़ा है? और मार्क्सिस्ट ह्यूमनिज्म, नाम सुनते ही आधे लोग कहेंगे मैडम थोड़ा इजी बताइए ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप सब ने फिलोसफीज को कभी ना कभी सुना जरूर है, तो क्या सोचेंगे आप? हो सकता है उन्हें आपने किसी यूनिवर्सिटी के लेक्चर में नहीं, किसी फिलोसोफर की किताब में नहीं, बल्कि हिंदी फिल्म के एक गाने में सुना हो। जी हाँ, एक गाने में। और यही बात एक बार जावेद अख्तर साहब ने बहुत खूबसूरती से कही थी। आम इंसान शायद फिलोसफी की किताब न पढ़े, लेकिन वो फिलोसफी को गाने में गा जरूर लेता है। और फिर वही इंसान शादी में डीजे के सामने खड़ा होकर जीवन के सफर मेरा ही गाता हुआ अचानक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चला जाता है। जिंदगी भर फिलोसफी से दूर भागे, लेकिन किशोर कुमार ने दो लाइन क्या गा दी? बंदा सोचने लगता है मैं आखिर हूं क्यों, मैं आखिर हूं कौन। यही तो कमाल है हिंदी सिनेमा का। हमारे गाने सिर्फ गाने नहीं हैं, कभी कभी वो फिलोसफी हैं, कभी साइकोलॉजी हैं, कभी सोशियोलॉजी हैं, और कभी आपकी एक्स की एक याद है। लेकिन आज का जो गाना है उसमें फिलोसफी भी है, तर्क भी है, और एक ऐसा सवाल भी है जो शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर कर दे। गाना है संसार से भागे फिरते हो। जी हाँ, फिल्म चित्रलेखा। और इस गाने के पीछे जो सवाल छुपा है वो बहुत सिंपल है। क्या दुनिया को छोड़कर भगवान को पाना ही असली स्पिरिचुअलिटी है? या फिर हो सकता है भगवान को ढूंढने के चक्कर में दुनिया को ही छोड़ देना उसकी बनाई हुई दुनिया का अपमान? या फिर हो सकता है कि भगवान को ढूंढने के चक्कर में दुनिया को ही छोड़ देना उसकी बनाई हुई दुनिया का अपमान हो? जरा सोचिए, आपके सामने एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग है, किसी ने घंटों बैठकर बनाई है, रंग भरे हैं, हर लाइन सोच समझ कर खींची गई है, और आप पेंटिंग को देखकर कहते हैं बहुत बेकार है।

मैं पेंटर को ढूंढने जा रहा हूं। पेंटर कहेगा, भाई पहले पेंटिंग तो देख ले। बस इसी सवाल के आसपास घूमता है ये गाना, और इसमें साहिर लुधियानवी साहब एक बहुत गहरी बात को बहुत ही सिंपल लफ्जों में कह देते हैं। अब कहानी समझिए, फिल्म चित्रलेखा में एक तरफ एक योगी, एक तपस्वी जो मानता है कि दुनिया मोह माया है, संसार से दूर जाओ, भोग से दूर जाओ, इच्छाओं से दूर जाओ, तभी मुक्ति मिलेगी। और दूसरी तरफ चित्रलेखा, एक ऐसी औरत जिसे समाज ने पहले ही डिसाइड करके रख दिया है कि कौन पापी है, कौन पवित्र है, कौन अच्छा है और कौन बुरा है। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल, पाप क्या है, पुण्य क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये डिसाइड कौन करता है कि आप, मैं, समाज, धर्म या वो लोग जो अपने हिसाब से नियम बनाकर फिर उस पर भगवान की मोहर लगा देते हैं। अब जरा रुक कर सोचिए, हमारी दुनिया में कितने रूल्स ऐसे हैं जिनके पीछे हम कभी सवाल ही नहीं करते, ये मत करो, क्यों, बस मत करो, क्यों भाई, लोग क्या कहेंगे। और लोग क्या कहेंगे भारत का शायद सबसे पुराना और सबसे पावरफुल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। इसका कोई ऑफिस नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, लेकिन इसका प्रेशर, उफ बाप रे बाप, तौबा। हर घर में फुल टाइम अवेलेबल है ये फ्री में, फ्री वाईफाई भी इतना अवेलेबल नहीं होता। आप क्या पहनेंगे, लोग क्या कहेंगे, आप किससे शादी करेंगे, लोग क्या कहेंगे, आप शादी नहीं करेंगे तो फिर लोग और क्या कहेंगे, क्या क्या कहेंगे, ये तो आप सोच भी नहीं सकते, बाप रे। आप करियर बदलेंगे, लोग क्या कहेंगे, पागल है। आप करियर नहीं बदलेंगे, लोग कहेंगे कुछ कर ही नहीं रहा। मतलब आप कुछ भी कर लो, लोग क्या कहेंगे, नाम का एक परमानेंट टैटू, एक परमानेंट बैकग्राउंड स्कोर साथ चलता जरूर रहेगा। और इसीलिए साहिर लुधियानवी जी का सवाल और भी गहरा हो जाता है, क्या पाप और पुण्य सच में इतने सिंपल हैं, या फिर हमने अपनी सुविधा के हिसाब से इनकी डेफिनेशंस बना ली हैं। अब आइए थोड़ा फिलॉसफी की तरफ चलते हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एग्जाम नहीं दूंगी, नो पेपर। पहली सोच, कश्मीरी शैविज्म। इस दर्शन में दुनिया को सिर्फ माया कहकर खारिज नहीं किया जाता, ये माना जाता है कि जो कुछ हमारे सामने है वो भी उसी दिव्यता का हिस्सा है। मतलब ये दुनिया भी उसी क्रिएशन का पार्ट है। तो अगर आप क्रिएशन को ही रिजेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप क्रिएटर को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। अब इसका बहुत सिंपल वर्जन समझिए, अगर किसी ने आपके लिए बहुत प्यारा सा खाना बनाया और आप प्लेट को देखकर बोले, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं तो कुक को ढूंढने जाऊंगा, तो कुक कहेगा, पहले खाना खा ले, बाद में मिल लेना, क्या पता भगवान भी हमसे यही कह रहे हो। अरे भाई जो दुनिया दी है थोड़ा जी लो। लेकिन हम क्या करते हैं, जिंदगी मिलती है हम उसे समझने में आधी जिंदगी लगा देते हैं, खुशी मिलती है हम सोचते हैं ये खुशी कब खत्म होगी, प्यार मिलता है हम डरते हैं ये छोड़कर चला गया तो, और फिर जिंदगी खत्म हो जाती है और हम कहते हैं काश थोड़ा जी लेते। और यही आता है इस गाने का एक बहुत ही पावरफुल थॉट, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जाने, क्या लाइन है, वाह। जरा सोचिए, हमारे यहां तपस्या का मतलब अक्सर क्या समझा जाता है, जंगल चले जाओ, सब कुछ छोड़ दो, भोग छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो। लेकिन ये लाइन कह रही है, हो सकता है जिंदगी को पूरी तरह जीना भी एक तपस्या हो।
खुशी को महसूस करना, प्यार करना, दर्द सहना, रिश्ते निभाना, जिम्मेदारियां उठाना, किसी के लिए रुकना, किसी को माफ करना और फिर भी दिल में कड़वाहट ना रखना, ये भी तो तपस्या है दोस्तों। क्योंकि त्याग कर देना कभी कभी बहुत आसान होता है, लेकिन रिश्ते में रहकर रिश्ते को निभाना वो सबसे मुश्किल काम है। दुनिया से भाग जाना कभी कभी बहुत आसान है, लेकिन दुनिया में रहकर दुनिया को बेहतर बनाना वही असली काम है। और शायद यहीं पर आता है एक तीसरा नजरिया, ह्यूमनिज्म। इंसान को छोड़कर स्पिरिचुअलिटी कहाँ मिलेगी, सोच के देखिए। आप मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, जंगल जा सकते हैं, हिमालय जा सकते हैं, लेकिन अगर वापस आकर आप इंसान को ही दर्द देने लगे तो फिर सवाल तो बनता है ना। अगर आपकी पूजा के बाद आप घर आकर अपने ही घर वालों से बदतमीजी करते हैं तो भगवान शायद सोच रहे होंगे, बेटा इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी, घर में ही प्रैक्टिस कर लेते। स्पिरिचुअलिटी का असली टेस्ट मंदिर में नहीं होता, असली टेस्ट होता है ट्रैफिक जाम में, असली टेस्ट होता है जब कोई आपको गलत समझ ले, जब कोई आपके साथ बुरा करे, जब आपके पास पावर हो और आप उसका गलत इस्तेमाल ना करें, जब आपके पास बदला लेने का भी मौका हो और आप माफ कर दें, जब आप किसी कमजोर इंसान के साथ वही इज्जत से पेश आए जो आप किसी पावरफुल इंसान को देख के देते हैं, शायद यही असली तपस्या है। और फिर गाना हमें एक और बहुत गहरी जगह ले जाता है। एक तरफ हम कहते हैं ये दुनिया झूठी है, दूसरी तरफ कोई कहता है नहीं ये दुनिया मेरी है। और फिर वो लाइन जो पूरी डिबेट को एकदम सिंपल बना देती है, हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है, हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे। तो आप बताइए कौन सही है, वो जो दुनिया को पकड़ कर बैठा है या वो जो दुनिया को छोड़कर निकल गया। शायद दोनों के बीच कहीं सच छुपा है, क्योंकि अटैचमेंट भी प्रॉब्लम हो सकती है और कंप्लीट डिटैचमेंट भी प्रॉब्लम हो सकती है। जिंदगी का कमाल शायद यही है कि आप दुनिया में रहो लेकिन दुनिया को अपने अंदर मत बसा लो, प्यार करो लेकिन किसी को अपनी पूरी जिंदगी का मालिक मत बनाओ, पैसे कमाओ लेकिन पैसा आपका मालिक ना बन जाए, नाम भी कमाओ लेकिन नाम चला जाए तो आप खुद को ना खो दो, खुशी मनाओ लेकिन खुशी खत्म होने से डरो मत, और दुख आए तो उसे भी जी जाओ। जिंदगी का मतलब सिर्फ सुख नहीं है, सिर्फ त्याग भी नहीं है, जिंदगी दोनों के बीच वो अजीब सी जगह है जहां हम हंसते भी हैं, रोते भी हैं, प्यार भी करते हैं, टूटते भी हैं, जीतते भी हैं और हारते भी हैं, और एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। तो फिर सवाल ये नहीं है कि हम दुनिया से भागे या नहीं, सवाल ये है कि जब तक हम यहां हैं तब तक हम इस दुनिया के साथ क्या कर रहे हैं, क्या हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं या किसी और की जिंदगी में भी थोड़ी सी रोशनी ला रहे हैं, क्या हम सिर्फ भगवान को ढूंढ रहे हैं या उस इंसान में भी भगवान को देख रहे हैं जो हमसे कमजोर है, हमसे कम है, क्या हम मंदिर में सर झुका रहे हैं और घर में किसी का दिल लगातार तोड़ रहे हैं, क्या हम स्पिरिचुअलिटी के नाम पर जिंदगी से भाग रहे हैं या फिर जिंदगी को पूरी ईमानदारी से जीने की हिम्मत कर रहे हैं। और शायद इसीलिए जावेद अख्तर साहब की वो बात आज भी कहीं ना कहीं सही लगती है, हर आदमी फिलोसफी की किताब नहीं पढ़ता लेकिन हर आदमी कभी ना कभी एक गाना जरूर सुनता है जो उसके दिल में एक सवाल छोड़ जाता है और फिर वही सवाल सालों तक उसके साथ चलता है। तो आज आप भी एक सवाल अपने साथ ले जाइए यहां से,
आपके हिसाब से हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? इसे छोड़ने के लिए या इसे पूरी तरह जीने के लिए? क्या जिंदगी एक ऐसा सपना है जिससे एक दिन जगना है, या फिर यही सपना भगवान की सबसे खूबसूरत देन है जिसे हमने आंखें खोलकर देखना है? मैं तो बस इतना कहूंगी कि अगर जिंदगी एक फिल्म है तो इंटरवल के बाद का सीन कब आएगा ये किसी को नहीं पता। इसलिए गाना बज रहा हो तो गा लीजिए, प्यार मिल रहा हो तो कर लीजिए, दोस्त मिल रहे हो तो मिल लीजिए, माँ बाप पास हो तो उनके साथ बैठ लीजिए, और अगर कभी जिंदगी बहुत मुश्किल लगने लगे तो थोड़ा रुक जाइए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मैं भाग कहाँ रहा हूं? क्योंकि हो सकता है जिस सुकून को हम दुनिया छोड़कर ढूंढ रहे हैं ना, वो सुकून इस दुनिया के किसी कोने में, किसी इंसान की मुस्कान में, किसी पुराने से गाने में, किसी गर्म चाय के कप में, या फिर खुद हमारे अंदर बैठा हो। तो संसार से भागना है या संसार को समझना है, त्याग करना है या भोग को एक तपस्या की तरह जीना है, भगवान को ढूंढना है या उनकी बनाई हुई दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बनाना है, इसका जवाब आप मुझे दीजिए। आपके लिए संसार से भागे फिरते हो सिर्फ एक पुराना फिल्मी सॉन्ग है या फिर एक फिलोसॉफिकल सवाल जो आज भी हम सबसे यही पूछ रहा है, तुम जिंदगी से भाग रहे हो या जिंदगी को सच में जी रहे हो? मैं हूं आरजे तनुषा, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। याद रखिए, कभी कभी एक गाना एक पूरी किताब से ज्यादा आपको अपने बारे में बता सकता है। बस सवाल ये है कि क्या हम उस गाने को सिर्फ सुनते हैं या कभी कभी उसमें खुद को सुन लेते हैं। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: डॉक्टर ने बुजुर्ग पेशेंट को न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हुए कहा, बाबा एक बार दिमाग वाले डॉक्टर को दिखला लो। बुजुर्ग बोला, अच्छा भैया, हमें तो लग रहा था आप ही के पास होगा दिमाग।

माँ सिर्फ एक शब्द, बस दो अक्षर, लेकिन इन दो अक्षरों में कितनी दुनिया समाई है, ये शायद हर इंसान अलग तरीके से महसूस करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। और आज की बातें इधर की उधर की शुरुआत एक छोटे से सवाल से करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं आंखें बंद कीजिए और माँ को बस याद कीजिए, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? उनकी मुस्कान, उनकी आवाज, उनके हाथ, या वो डांट जो सिर्फ दो मिनट बाद प्यार में बदल जाती थी? लेकिन सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने कभी अपनी माँ को देखा ही नहीं, ना तस्वीर, ना चेहरा, ना आवाज, सिर्फ एक रिश्ता जो था भी और जैसे नहीं भी। आज की कहानी एक ऐसे ही एहसास की है, एक ऐसे इंसान की जिसकी माँ उसके बचपन में ही इस दुनिया से चली गई, और इतनी जल्दी चली गई कि उसके पास माँ की एक तस्वीर तक नहीं थी। अब जरा सोचिए, हम लोग कितनी बार मोबाइल गैलरी साफ करते हुए बोल देते हैं, अरे ये फोटो डिलीट कर दो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी भर एक ही फोटो के लिए तरस जाते हैं। वो कहता है, मैं अपनी माँ का चेहरा नहीं जानता। कितनी अजीब बात है ना। हम अक्सर कहते हैं बिल्कुल माँ पर गया है, लेकिन जब चेहरा ही याद ना हो तो कैसे पता चलेगा कि मैं किस पर गया हूं? फिर वो एक अजीब सी तलाश शुरू करता है अपने ही चेहरे में अपनी माँ को ढूंढने की। लोग कहते हैं तुम्हारी आंखें बिल्कुल माँ जैसी होंगी, तो वो शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी आंखों को देखता है। शायद यही आंखें उनकी भी होंगी। फिर कोई कहता है तुम्हारे कान में जो छोटा सा निशान है ना, शायद माँ में भी रहा होगा। कोई कहता है तुम्हारे दांतों के बीच जो हल्का सा गैप है, हो सकता है उनका भी ऐसा ही हो। और बस वही छोटी छोटी बातें उसके लिए यादों की तस्वीर बन जाती हैं। कभी सोचा है हम अपने घर वालों की कितनी आदतों से परेशान रहते हैं? क्या माँ आप भी ना, क्या पापा आप हर बात पे? लेकिन एक दिन यही आदतें याद बन जाती हैं, और फिर इंसान सोचता है कि काश काश एक बार और सुन लेता, एक बार और डांट खा लेता, एक बार और गले लगा लेता, एक बार बात कर लेता। एक बात बताइए, बचपन में जब माँ बाजार जाती थी और 5 मिनट के लिए भी नजर ना आती थी, तो हम घर में डिटेक्टिव बन जाते थे, मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई। और जब मम्मी बोलती थी बस पड़ोस तक गई थी, तो लगता था जैसे सदियों बाद वापस आई हैं। लेकिन सोचिए जिसकी माँ सच में कभी वापस ना आए, उसका इंतजार कितना लंबा होगा। कभी कविता की एक लाइन दिल को छू लेती है, मैं तुम्हें पहचानूं कैसे, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। क्या बात है, पहचान हमेशा चेहरे से ही होती है या एहसास से भी? कभी कभी लगता है माँ का चेहरा याद रहे या ना रहे, लेकिन उनका प्यार कहीं ना कहीं हमारे अंदर रह जाता है। हमारे बोलने के तरीके में, हमारे मुस्कुराने में, हमारे किसी की फिक्र करने में। और शायद इसीलिए कहते हैं माँ कभी पूरी तरह जाती ही नहीं, वो आदतों में रह जाती है, दुआओं में रह जाती है, और कभी कभी हमारे अपने चेहरे में रह जाती है। एक बार किसी ने बहुत खूबसूरत सी बात कही, जब माँ साथ होती है
तो हम बड़े होने की जल्दी में होते हैं, और जब माँ चली जाती है तो फिर से बच्चा बनने का मन कर जाता है। कितनी सच्ची बात है ना ये। तो आज अगर आप अपने माँ के साथ हैं तो सिर्फ एक काम कीजिए मेरे कहने से, फोन उठाइए, या अगर वो पास बैठे हैं तो बिना किसी वजह

और अगर आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है तो उनकी कोई अच्छी सी बात याद कीजिए, उनकी कोई आदत को अपना लीजिए, क्योंकि इंसान चला जाता है लेकिन उसकी मोहब्बत, उसके संस्कार कहीं नहीं जाते, कभी नहीं जाते। चलिए आज जाते जाते आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपको अपनी माँ की कौन सी बात सबसे ज्यादा याद आती है? उनकी डांट, उनके हाथ का खाना, उनकी हंसी, या बस उनका बेटा खाना खा लिया? इतना पूछना, सोचेगा जरूर, क्योंकि कुछ रिश्तों की कीमत उनके होते हुए कभी समझ ही नहीं आती और उनके ना होने पर जिंदगी भर समझ आती रहती है। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे आज की ये बातें इधर की उधर की। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ, जो शायद आपको किसी अपने के और करीब ले जाएगी। नमस्कार।

0: कैसा लगा मामा?
1: क्या
0: मेरा गाना, मेरा पहला परफॉर्मेंस?
1: अरे सुनाई कहाँ दिया ये नालायक विवेक, अरे बैटरी लाना ही भूल गया।
0: क्या यार विवेक?
2: अरे क्या भैया, मुझे क्या बोल रहे हो, आपको लाने को बोला था ना बैटरी।
0: कोई काम सब तो मैं ही करूंगा ना। मामा तू लाओ इधर। चलो मामा जल्दी लगाओ।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: चोरी के अपराध में चोर को 6 महीने की सजा दे दी गई। चोर मजिस्ट्रेट से बोला, हुजूर हुजूर मेरी बात सुनिए, ये सजा तो मेरे वकील को मिलनी चाहिए ना। वकील साहब आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लग गए। मजिस्ट्रेट ने भी बड़े अचरज से पूछा, काहे भैया? चोर बोला, क्योंकि मैंने जितना रुपया चुराया था सबका सब मेहनताने के रूप में तो ये वकील साहब ले चुके हैं।

अपना ताज गराज में छोड़ाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। आज का हमारा बातें उधर की इधर की शुरू करने से पहले मैं फिर से अपना फेवरेट काम करूंगी। जी हाँ, एक सवाल पूछती हूँ, छोटा सा। आप घर पहुंचते ही सबसे पहले क्या उतारते हैं? जूते, घड़ी, बैग या अपना ईगो? आज की कहानी इसी बात पर है। ये कहानी है दुनिया के सबसे सफल बिजनेस लीडर्स में से एक, इंदिरा नुई जी की। लेकिन आज हम उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे। नो, हम सब जानते हैं, ना पेप्सी की ना बोर्डरूम्स की, आज हम बात करेंगे घर की। सोचिए, आप अभी अभी प्रमोशन लेकर आए हैं, ऑफिस में सबकी तालियां बज रही हैं, बॉस ने आपसे कहा है कंग्रेचुलेशंस, आज से आप कंपनी के सबसे बड़े पदों में से एक पर हैं। दिल खुशी से फटा जा रहा है, भरा जा रहा है। बस ऐसा ही कुछ हुआ था इंदिरा नुई जी के साथ। उन्हें पेप्सिको का सिर्फ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ बनाया नहीं गया था, ये एक बहुत बड़ी बात थी। उनकी मेहनत रंग लाई थी, वो खुशी खुशी घर पहुंची और सोचा, सबसे पहले माँ को बताऊंगी। घर का दरवाजा खुला, माँ सामने खड़ी थी। इंदिरा जी ने मुंह खोला ही था कि माँ बोल पड़ी, बेटा घर में दूध खत्म हो गया है, जाओ पहले दूध ले आओ। अब जरा सोचिए, अगर हम होते तो शायद तुरंत बोल देते, मम्मी आपको पता भी आज क्या हुआ? लेकिन इंदिरा जी चुप रही, गाड़ी उठाई, दूध लेकर आई और फिर थोड़ी देर नाराज होकर बोली, माँ मैं इतनी बड़ी खबर बताने आई थी और तुमने मुझे दूध लेने भेज दिया। अब सुनिए, उनकी माँ ने जो जवाब दिया वो सिर्फ इंदिरा जी के लिए नहीं, हम सब के लिए था। माँ ने कहा, बेटा ऑफिस में तुम सीएफओ हो सकती हो, कल सीईओ भी बन जाओगी, लेकिन घर के अंदर आने से पहले अपना ताज गराज में छोड़ दिया करो। क्या बात है आंटी, सिर्फ एक लाइन और पूरी जिंदगी का सबक। दोस्तों, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ताज पहनकर घूमते ही रहते हैं। किसी के सर पर डेजिग्नेशन का ताज, किसी के पास पैसों का ताज, किसी के पास डिग्रियों का

ताज और किसी के पास सोशल मीडिया के फॉलोअर्स का ताज। लेकिन घर, घर वो जगह है जहां आपको सिर्फ इंसान बनकर रहना होता है। वैसे एक बात बताइए, घर में मम्मी को कभी फर्क पड़ा कि आप मैनेजर बने या डायरेक्टर? उनके लिए तो आप वही बच्चे हो जो रिमोट ढूंढ नहीं पाते और रोज पूछते, मम्मी मेरी चाबी कहाँ है? और मम्मी बिना जीपीएस के सीधा सीधा बता देती हैं, टेबल के नीचे, बैग के पास। सच कहूं, गूगल मैप से भी कोई तेज हो तो वो है माँ। और एक बात, ऑफिस में हम दूसरों को ऑर्डर देते फिरते हैं, घर में माँ का एक ही ऑर्डर होता है, पहले खाना खा लो। और उस ऑर्डर को आज तक किसी ने कहीं चैलेंज नहीं किया। इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि घर का काम करो, बात उससे कहीं गहरी है। दोस्तों, हम सब जिंदगी में बहुत सारे किरदार निभाते हैं, ऑफिस में एम्प्लॉई, कहीं बॉस, कहीं टीचर, कहीं डॉक्टर, लेकिन घर आकर सिर्फ इतना, हम सिर्फ बेटा, बेटी, भाई, बहन या माँ बाप होते हैं और वही असली पहचान होती है। एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, हम लोग अक्सर कहते हैं ना, मैं इतना बिजी हूं, उफ। लेकिन सच पूछिए तो घर वालों को हमारी कमाई से ज्यादा हमारा समय चाहिए, उन्हें प्रमोशन से ज्यादा एक कप चाय साथ पीना पसंद है, एक साथ बैठकर हंसना, दो बातें करना, यही असली दौलत है। और हाँ, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये इतना ही जरूरी है। घर किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, घर सबका होता है और प्यार भी तभी बढ़ता है जब जिम्मेदारियां भी बांटी जाती हैं। तो अगली बार जब ऑफिस से घर लौटिएगा, दरवाजे पर 2 मिनट रुकिएगा, सोचिए, क्या मैं अपना गुस्सा, अपनी टेंशन, अपना ताज बाहर ही छोड़ सकती हूं? क्योंकि घर को आपके डेजिग्नेशन की नहीं, आपकी मुस्कान की जरूरत है। चलिए आज का सवाल आपसे, अगर आपके घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाना हो तो उस पर आप क्या लिखेंगे? यहां सिर्फ रिश्तों की एंट्री है या कृपया अपना ईगो बाहर ही उतार कर आएं? इस बारे में सोचिएगा जरूर। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे आज की ये छोटी सी बट प्यारी सी बातें इधर की उधर की। मिलते हैं फिर एक और छोटी सी कहानी के साथ जो शायद जिंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बना दे। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेठ जी बोले, जरा देखना तो कितना टाइम हो रहा है। नौकर बोला, मुझे सेठ जी टाइम देखना नहीं आता। सेठ बोला, अच्छा कोई बात नहीं, तो ये देख कर बताओ कि बड़ी सुई कहाँ है और छोटी सुई कहाँ है। तो नौकर बोला, दोनों सुइयां घड़ी में ही है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

दुनिया की क्या हालत है। दोस्तों, अगर आप अपनी नजर खबरों पर ले जाएंगे तो आपको हर जगह गिरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, विफल होती हुई कंपनियां और आपदाएं ही नजर आएंगी। इससे ये सोच लेना कि दुनिया खात्मे की ओर बढ़ रही है बड़ा आसान है। हालांकि सफल लोग इन सब की चिंता नहीं करते, क्योंकि वो उन सब चीजों में खुद को नहीं उलझाते जिन पर उनका बस ही नहीं चलता। इसके बजाय वो हर दिन का इस्तेमाल आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने और अपनी कोशिशों को बेहतर बनाने के लिए करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीजों पर ध्यान ही ना दीजिए जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बने रहिए आरजे समीर के साथ। दोस्तों, प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि प्रेम की भाषा गूंगे भी बोल लेते हैं और इसे बहरे भी सुन सकते हैं।

तेरा हाथ पकड़ते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, वो जितनी भी तकलीफें फुर्र हो जाती हैं।

0: करते रहती। इसकी तो हवाएं निकल गई। अब क्या होगा भैया?
1: सही जगह पे निकली है गोविंद, तो इसमें हवा भरवा ले।
0: अच्छा भैया।

गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिर की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार संता और उसका परिवार गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने कहा, अरे वाह संता जी, आप तो सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चला रहे हैं, शाबाश, आपको मिलता है ये 500 रुपए का इनाम। और उसने 500 रुपए दिए। अब आप ये बताएं कि इस 500 रुपए का क्या करेंगे? तो संता ने कहा, जी सबसे पहले तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूंगा। तो संता की माँ बगल में बैठी थी, उसने कहा, अरे इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये दारू पी के कुछ भी बोलता है। पिताजी पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, मुझे पता था हम चोरी की गाड़ी में बहुत ज्यादा दूर जा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोचिए क्या होता अगर रजनीकांत 150 साल पहले पैदा होते। आजादी की लड़ाई अंग्रेजों को लड़नी पड़ती।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था अभी तो।

संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला ही होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास

जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन कीर्तन कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड युष्कल बंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड

रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कविंद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना, सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा, अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यही वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर शांति।
2: सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
2: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूँ। उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा,
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
2: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़ित ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: इंसुलिन की कहानी भाग एक।
2: सन 1918 की शरद ऋतु, सितंबर 28, प्रथम विश्व युद्ध का आखिरी वर्ष। संयुक्त सेना के ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा के जर्मनी पर प्रहार जारी थे। अपनी चिकित्सा स्नातक की डिग्री को हासिल कर एक 25 वर्षीय नौजवान लेफ्टिनेंट कनाडा सेना की मेडिकल कोर में दाखिल हुआ था। फ्रांस के युद्ध स्थल पर कार्यपरायण डॉक्टर को हाल ही में पदोन्नति के साथ कैप्टन बनाया गया था। वो बुरी तरह जख्मी हो गया था और उसे बॉक्सटन के विशेष अस्पताल में लाया गया था।
3: थोड़ा हाथ ऊपर उठाओ, थोड़ा और, बस। मुझे खेद है कैप्टन, लगता है कि हाथ काटना पड़ेगा।
4: नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं
3: कैप्टन,
4: बिल्कुल नहीं।
3: मुझे इस बात का एहसास है कि तुम अभी जवान हो और तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी है,
4: लेकिन नहीं नहीं डॉक्टर।
3: ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारी इच्छा पर छोड़ देते हैं।
4: शुक्रिया।
3: मैं दुआ करूंगा कि ईश्वर तुम्हें शक्ति प्रदान करे।
4: शुक्रिया डॉक्टर, शुक्रिया।

0: मरीज के जीवन का जोखिम लेते हुए उनकी बांह को बचाने की खातिर डॉक्टर पाल्मर ने उनके हाथ को नहीं काटा। वो बहादुर जख्मी थे, डॉक्टर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग। एक साल बाद उन्हें वीरता के लिए मिलिट्री क्रॉस के पदक से सम्मानित किया गया। सन 1919 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो वो कनाडा लौट आए और थोड़े समय के लिए उन्होंने ओंटारियो प्रांत के लंदन शहर में डॉक्टरी की। डॉक्टरी का काम निभाने के साथ साथ पश्चिमी ओंटारियो विश्वविद्यालय के हड्डी चिकित्सा विभाग में अल्पकालिक प्रशिक्षक के रूप में भी काम किया। एक दोपहर डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान के पुस्तकालय में सर्जरी, गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स नामक पत्रिका पढ़ रहे थे। इस नवंबर अंक के पहले लेख का लंबा शीर्षक था, द रिलेशन ऑफ द आईलेट्स ऑफ लैंगरहांस टू डायबिटीज विद स्पेशल रेफरेंस टू कॉजेज ऑफ पैंक्रियाटिक लिथियासिस। 12 पन्नों की इस रिपोर्ट को डॉक्टर मोजेस बैरन ने लिखा था। इस लेख के सार की 3 मुख्य पंक्तियों को बेंटिंग ने अपनी पॉकेट नोटबुक में लिख कर रख लिया। लिगेट द पैनक्रिएटिक डक्ट्स ऑफ डॉग्स, कीप डॉग्स अलाइव टिल एसिडी डिजनेट, रिमूव द रेसिड्यू एंड देन आइसोलेट इंटरनल सिक्रेशन। ये साधारण सी पंक्तियां थी पर इनमें चिकित्सा विज्ञान के इतिहास को रचने के बीच थे।
1: डॉक्टर बेंटिंग प्रोफेसर F.R. मिलर के दफ्तर गए। प्रोफेसर मिलर स्नायु क्रिया तंत्र के विशेषज्ञ और शरीर क्रिया शास्त्र विभाग के प्रमुख थे। डॉक्टर बेंटिंग ने उन्हें बताया,
2: प्रोफेसर मिलर, ये देखिए, इस लेख में ये दावा किया गया है कि जब पैनक्रियाटिक नली को सर्जरी से बांधकर बंद कर दिया जाता है तो अग्नाशय की वो कोशिकाएं जहां एंजाइम ट्रिप्सिन बनते हैं वो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। पर आइलैंड ऑफ लैंगरहांस की कोशिकाएं बची रह जाती हैं।
3: वाकई ये एक बहुत सरल विचार है।
2: हाँ, और ये तर्क संगत भी लगता है।
3: डॉक्टर बेंटिंग,
2: हाँ,
3: मेरे अध्ययन और शोध का क्षेत्र स्नायु तंत्र की कार्य प्रणाली है। आपने जो शोध समस्या सुझाई है वो वास्तव में एंडोक्रिनोलॉजी का विषय है। लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालय की छोटी सी प्रयोगशाला ठीक नहीं रहेगी। आपको ज्यादा बेहतर सुविधाओं और उपकरणों की जरूरत होगी।
2: तो प्रोफेसर मिलर, इसके लिए मुझे क्या करना होगा?
3: डॉक्टर बेंटिंग
2: जी,
3: आपको टोरंटो विश्वविद्यालय जाना चाहिए।
2: टोरंटो?
3: वहाँ शरीर क्रिया प्रणाली के प्रोफेसर हैं जॉन जेम्स रिकर्ड मैक्लियोट
2: जी,
3: जो कनाडा के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा विज्ञानी हैं। स्कॉटलैंड से आए ये मेहनती इंसान चिकित्सा विज्ञान विभाग के एसोसिएट डीन भी हैं।
2: अच्छा।
3: इन्हें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में विशेष महारत हासिल है। इनकी प्रयोगशाला आपके लिए सही जगह रहेगी।
2: ठीक है प्रोफेसर मिलर, मैं वहीं जाऊंगा उनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
3: वेलकम।
0: अगले सप्ताह नवंबर 8 सन 1921 की सुबह डॉक्टर बेंटिंग प्रोफेसर जॉन मैक्लियोट से उनके दफ्तर में मिले।
2: प्रोफेसर?
4: हाँ।
2: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
4: हाँ, आइए। कृपया यहाँ बैठिए।
2: जी, धन्यवाद। श्रीमान, मुझे प्रोफेसर मिलर ने आपके पास भेजा है।
4: किस लिए?
2: जी, ये मेरे पास मधुमेह रोग के इलाज के लिए एक शोध का प्रस्ताव है। मेरी सोच का आधार है कि
4: बिल्कुल ठीक कहा आपने। पर ये सब आप करेंगे कैसे?
2: सर, पाचन प्रणाली में अग्नाशय क्या क्या और कैसे कैसे अपना कार्य करता है इसका पता लगाकर।
4: हाँ जी, हाँ, ये मेरा अपना भी विशेष शोध क्षेत्र है।
2: अच्छा सर, मैं सोचता हूँ कि अग्नाशय में कुछ ऐसे रस का रिसाव होता है जो रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करता है।
4: पर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई रिसाव इसके लिए जरूरी है?
2: ये बिल्कुल स्पष्ट है, और कम से कम मैं ये कोशिश करके साबित करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं आपके सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ।
4: क्या आपके पास पहले प्रयोग और शोध करने का कोई अनुभव है डॉक्टर बेंटिंग? क्या आपको रक्त में शक्कर की मात्रा मापना आता है?
2: जी जी नहीं, मैं रसायन शास्त्री नहीं हूँ।
4: डॉक्टर बेंटिंग, मैं आपकी मदद करूंगा। आपका शोध में कोई प्रशिक्षण नहीं है, इसलिए अन्वेषण की प्रयोजना तैयार करने में मैं आपकी सहायता करूंगा।
2: जी।
4: आप चूंकि रसायन शास्त्र के जानकार नहीं हैं, मैं आपके साथ काम करने के लिए एक रसायन शास्त्र प्रशिक्षित सहायक भी दूंगा।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
4: डॉक्टर बेंटिंग।
2: जी,
4: लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो तरीका आप सुझा रहे हैं, यूरोप के अग्रणी नामी गिरामी शोधकर्ता पहले ही उसकी कोशिश करके देख चुके हैं, और उनमें से कोई भी अभी तक सफल नहीं हुआ।
2: जी सर।
4: उनके अलावा आप क्या अलग करना चाहते हैं?
2: मुझे उनके प्रयासों और परिणामों के बारे में पता नहीं है, फिर भी मैं खुद एक बार अपने तरीके से करके आजमाना चाहता हूँ सर।
4: डॉक्टर बेंटिंग, कम से कम आपको तर्क संगत तो बनना ही पड़ेगा।
2: जी जी सर।
4: विभागाध्यक्ष होने के नाते मैं आपको अपनी मर्जी के प्रयोग अपनी ही प्रयोगशाला में करने की इजाजत भला कैसे दे सकता हूँ? आपसे बेहतर और काबिल लोग ऐसे प्रयोग करने के लिए मौजूद हैं।
2: जी।
4: आपकी थ्योरी मुझे लगता है बेकार है।
2: सर, एक बार के लिए आप मान लीजिए कि डायबिटीज के विरुद्ध काम करने वाला कोई आंतरिक रसायन है।
4: ओके।
2: कोई अनजाना एक्स हार्मोन है। मैं उसे धागे से बंधे हुए अग्नाशय से अर्क बनाकर निकाल लेता हूँ और एक डायबिटीज रोग से पीड़ित कुत्ते में इंजेक्ट कर देता हूँ, और कुत्ते के रक्त में शक्कर की मात्रा घट जाती है। क्या ये सबूत काफी नहीं? मैं तो सिर्फ आपसे इस शोध को करने की अनुमति मांग रहा हूँ।
4: डॉक्टर बेंटिंग, मेरी सलाह है कि आप अगली गर्मियों के मौसम तक इंतजार करें, और उसके बाद एक या दो महीने के लिए आप टोरंटो आ सकते हैं।
2: शुक्रिया, धन्यवाद सर। प्रोफेसर मैकलियोट, अगर शोध के लिए मुझे सभी सुविधाओं को देने का आपका वादा बरकरार है, तो मैं आशा करता हूं कि अपने शोध प्रोजेक्ट पर गर्मियां शुरू होते ही मैं अपना काम शुरू कर दूंगा।
4: अपने शोध को पूरा करने के लिए आप पूरी तरह से समर्पित हैं, तो मैं आपके लिए प्रयोग करने की सुविधाएं और जानवरों का इंतजाम करता हूं। मैं चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट से आपके साथ काम करने का अनुरोध करूंगा। वो शरीर क्रिया विज्ञान में स्नातक हैं, अभी वो किशोर उम्र में ही हैं, पर इस काम के लिए वो बेहतरीन हैं।
2: जी सर, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा।
4: बेस्ट में रसायन विश्लेषण का जुनून है, और आप एक अच्छे सर्जन हैं। आप दोनों मिलकर कुत्तों पर बखूबी प्रयोग कर सकते हैं।
2: और प्रयोगशाला की बाकी सुविधाएं?
4: अभी के लिए आप एक छोटी प्रयोगशाला से काम चला सकते हैं, जहां ऑपरेशन के बाद जानवरों को पिंजरे में रखने की व्यवस्था हो, और उसके साथ ही जुड़ा हुआ ऑपरेशन करने के लिए एक अलग विशेष कमरा भी हो, जिसे आप ऑपरेशन थिएटर कह सकते हैं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।
5: ये साधारण सी घटना बाद में एक महान खोज में तब्दील हुई। 1920 के दशक में डायबिटीज यानी मधुमेह एक खतरनाक रोग था, जिसमें मौत शर्तिया ही होती थी। डॉक्टर भी उतना ही इस रोग से डरते थे जितना कि इस रोग के मरीज। डॉक्टरों को सिर्फ इतना ही पता था कि बचने का एक ही तरीका है कि मरीज को एक साधारण पर संतुलित आहार पर रखा जाए, ऐसे भोजन पर जिसमें शक्कर की मात्रा कम से कम हो। इन सब उपचारों से मरीज कुछ ही बरस तक जी तो जरूर लेते थे, पर वो बचते नहीं थे। कई बार तो खुराक इतनी घटा दी जाती थी कि मरीज भूख से ही मर जाता था।
0: लंदन को अलविदा कहकर डॉक्टर बेंटिंग अपनी कार में दो सूटकेस डालकर टोरंटो के लिए रवाना हो गए। उनके मित्र फ्रेडरिक हिपवेल और उनकी पत्नी ने अपने घर में रहने के लिए उन्हें जगह दे दी। प्रोफेसर मैकलियोड ने अपना वादा निभाया। मेडिकल स्कूल की इमारत की दूसरी मंजिल पर 10 कुत्ते और एक टेबल पर बनी एक छोटी रसायन प्रयोगशाला उनके आगमन पर तैयार थी। सन 1921 को 17 मई के दिन मैकलियोड ने सर्जरी का पहला प्रयोग बेंटिंग और बेस्ट के जिज्ञासु दल को खुद करके दिखाया। प्रोफेसर मैकलियोड ने पहले कुत्ते की सर्जरी के बाद किसी दूसरी सर्जरी में हिस्सा नहीं लिया। जून 14 सन 1921 को वो 3 महीने के लिए लंबी छुट्टी पर स्कॉटलैंड चले गए।

0: तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो चार्ल्स। अच्छा चार्ल्स, ये क्या यंत्र है?
1: ये कैलोरी मीटर है, रक्त में शक्कर की मात्रा मापने के लिए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा चार्ल्स, इस शोध परियोजना में शामिल होने की तुम्हारी कोई खास वजह?
1: डॉक्टर बेंटिंग, बचपन में मेरी एक नन्ही सी दोस्त थी, मेरा मतलब मेरी बचपन की साथी, डायबिटीज की वजह से बहुत ही छोटी उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सके। हो सकता है कि हमारे काम से कोई राह निकले, और जो तुम कर रहे हो उससे एक दिन लाखों लोगों की जान बचाना मुमकिन हो सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल होगा। तुम्हें पता है कि इस काम का तुम्हें कोई मेहनताना नहीं मिलेगा?
1: हाँ डॉक्टर, प्रोफेसर मैकलियोट ने मुझे पहले ही बता दिया था।
0: अरे वाह, तब तो कोई समस्या नहीं है।
1: अच्छा डॉक्टर, कब शुरू करेंगे हम अपना काम?
0: बस अभी।
2: मैकलियोट ने पहले अपनी प्रयोगशाला के लिए 8 सप्ताह का ही वादा किया था और उनका समय समाप्त हो चुका था। 10 में से 7 कुत्ते वो पहले ही खो चुके थे, वो भी बिल्कुल टूट चुके थे। इसलिए बेंटिंग ने और कुत्ते खरीदने के लिए अपनी कार बेच दी। अब बेस्ट शहर की गलियों में क्या दिन क्या रात कुत्तों की तलाश में निकल जाते थे। उनके मालिकों से मोलभाव करते उन्हें खरीद कर प्रयोगशाला में ले आते थे। लेबोरेटरी में सैकड़ों कुत्तों पर उन्होंने प्रयोग किए। हर कुत्ते को एक नंबर दिया जाता था। कभी ये नंबर पिंजरे का नंबर होता था, तो कभी ऑपरेशन की तारीख के मुताबिक उन्हें नंबर दे दिया जाता था। ज्यादातर ऑपरेशन के बाद कुत्ते अपनी सामान्य स्वास्थ्य की हालत में वापस आ जाते थे, पर उनके अग्नाशय से पाचन रस बनना लगभग बंद हो जाता था और अग्नाशय अवयव की बाहरी कोशिकाएं या तो सिकुड़ जाती थीं या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाती थीं। एक दिन डॉक्टर बेंटिंग, चार्ल्स और डॉक्टर मैकलियोट प्रयोगशाला में थे।
0: ये तो मैंने कर दिया। चार्ल्स, इस सिकुड़े हुए अग्नाशय को काट कर निकालो और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर उनको नमक और पानी के घोल में डाल दो।
1: जी डॉक्टर।
0: और हाँ, परख नली के चारों तरफ बर्फ के टुकड़े रख दो ताकि घोल सुरक्षित रहे।
1: ठीक है डॉक्टर बेंटिंग।
0: और हाँ, जब अग्नाशय तंतु बर्फ की ठंड से जमने लगे तो छान कर उससे तरल को सफाई के साथ अलग कर लो। समझ गए?
1: जी। ये मैंने छान लिया और इसको अलग कर लिया। वाह, ये रहस्यमयी तरल कई बार निथारने के बाद बना है।
0: अरे वाह चार्ल्स, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। एक काम करते हैं चार्ल्स, क्यों ना हम इस अज्ञात हार्मोन का नाम आइलेटिन रखें?
3: अच्छा, तो काम आप लोगों का यहाँ पर।
0: मैकलियोट सर आइए ना।
1: आइए सर।
0: इस अज्ञात हार्मोन का नाम आइलेटिन रखें?
1: क्योंकि ये लैंगरहैंस के आइलेट से आया है।
3: हाँ, वैसे सोचना आपका अच्छा है, पर आइलेटिन को मेरा ख्याल है कि इंसुलिन कहना शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लैटिन भाषा में आइलैंड को कहते हैं इंसुला। इंसुला, इंसुलिन, राइट?
0: हाँ सर, राइट सर, बिल्कुल सही कहा आपने मैकलियोट सर। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ।
1: जी मैं भी।
0: हाँ, सही फरमा रहे हैं।
3: थैंक यू।
2: प्रयोग के दूसरे कुत्तों के समूह का सारा ही अग्नाशय बाहर निकाल दिया गया। बिना अग्नाशय के ये कुत्ते डायबिटीज के मरीज बन जाते थे और लगभग 1 सप्ताह में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसके साथ ही उन कुत्तों का जिनके अग्नाशय की नली को बांध दिया गया था दोबारा ऑपरेशन किया जाता था।

0: डायबिटीज रोग से ग्रस्त दो कुत्तों में से एक का इलाज अर्क से किया गया और दूसरा कुत्ता बिना इंजेक्शन के रखा गया।
1: डॉक्टर बेंटिंग,
2: हाँ,
1: वो कुत्ता जिसे हमने इंजेक्शन नहीं दिया था वो मर गया।
2: हाँ, लेकिन चार्ल्स फिर भी वो चार दिन तक जिंदा रहा।
1: हाँ।
2: अच्छा, उस पीले रंग के कोली कुत्ते का क्या हुआ?
1: तुम्हारा मतलब कुत्ता नंबर 92?
2: हाँ हाँ, वही नन्ना सा प्यारा सा कुत्ता। मैंने 8 cc एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन उसे लगा दिया है।
1: मैं कैलोरी मीटर से उसके रक्त में शक्कर की मात्रा लगातार माप रहा हूँ।
2: चार्ल्स, आधी रात को रक्त में शक्कर की क्या मात्रा थी?
1: 12 बजे के करीब ये 43 थी।
2: 43? चार्ल्स, हर घंटे रक्त में शक्कर की मात्रा का रिकॉर्ड अपनी नोटबुक में लिखते रहो।
1: ठीक है डॉक्टर बेंटिंग। इस कुत्ते की हालत में सुधार होता नजर आ रहा है।
2: ये देखिए,
1: रात के 2 बजे अब ये 33 पर है।
2: हाँ।
1: 3 बजे 29 अंक पर।
2: अच्छा।
1: और 4 बजे 21 अंक पर।
2: अरे वाह।
1: और 5 बजे ये 15 अंक पर है।
2: बहुत खूब।
1: यानी 6 घंटे में ये 43 अंक से गिरकर मात्र 15 अंक पर आ गया।
2: अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि उसके रक्त में शक्कर की मात्रा घट गई है।
1: हाँ डॉक्टर बेंटिंग, वाकई ये तो कमाल हो गया।
2: अरे वाह चार्ल्स, वाह कमाल कर दिया। सच में अब ये कुत्ता पूरी तरह स्वस्थ है और रोग के लक्षणों से मुक्त है। ओ चार्ल्स, हमने कर दिखाया। हाँ।
1: लेकिन डॉक्टर बेंटिंग,
2: हाँ,
1: हमें अपना प्रयोग कई बार दोहराना पड़ेगा। हमें वो चीज मिल गई है जिसकी डायबिटीज के रोगी बरसों से प्रार्थना कर रहे थे।
2: हाँ, हाँ, चार्ल्स, देखो देखो, ये कुत्ता भी कितना खुश है ना। हाँ। और खुशी में अपनी पूंछ हिला रहा है। सचमुच चार्ल्स, हमने कर दिखाया।
1: हाँ डॉक्टर,
2: सच में। हाँ। आखिरकार हमने कर लिया,
1: कर दिखाया,
2: अपने मकसद में कामयाब हुए।
1: हाँ डॉक्टर। हाँ। हाँ।
0: शोधकर्ताओं को लगा कि वे मधुमेह के इलाज के करीब पहुंच चुके हैं। ये कुत्ता जो उनका दोस्त बन चुका था 92 इंजेक्शनों की वजह से भला चंगा हो रहा था, पर उनके पास जरूरत के मुताबिक अर्क द्रव्य नहीं था। आखिर कुत्ता बीमार पड़ गया। उसके रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ने लगी और वो पेशाब भी बार बार करने लगा और वो कमजोर से कमजोर होता गया। इसके बावजूद वो रोग के साथ और इंजेक्शनों की मदद से पूरे 20 दिन तक जिंदा रहा। डायबिटीज से पीड़ित कुत्ते की मौत पर बेंटिंग के आंसू निकल पड़े, पर इस प्रयोग से इन दोनों शोधकर्ताओं को उम्मीद की किरण भी नजर आई।
3: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम इंसुलिन की कहानी भाग 2। हमारा आज का समय यहीं समाप्त होता है, तो अब मुझे यानी अजीत को और
4: विमलेश को
3: आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।

मोइला चेम्पा कीटक। तो किसान साथियों, यह कीड़ा मांजरिया जेर नंगल नकलता वक्त तीहनो रोज सूही ने फसली पर नुकसान काफी ज्यादा मात्रा में पुगाड़े से। तो इन्हें रोकथाम हारू किसान भाइयों इना नियंत्रण हारू डाइमिथोएड 30 EC नो 750 मिली या इमिडा क्लोरोपीड 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टर ना हिसाब थी नंगल आवाना टाइम नी अवस्था पर इनो छिड़काव करवानो। तो किसान साथियों, अगर हाव देखियो जाए तो फड़का अने सैन्य कीट, तो फड़का अने सैन्य कीट की कम करे से नुकसान तीनी बात देखी जाए तो फड़का अने सैन्य कीट नो भारी प्रकोप थावा पर मिथाइल पैरामिथाल मिथियान डस्ट 2% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर ने दर थी भुरकाव करवो जोई अने इन तो इनो नियंत्रण थाई जैसे। तो किसान साथियों, रोग नो नियंत्रण अगर करवो है तो मक्का नी फसल में मुख्यतः पायड़ा धब्बा तुला सीता डाउनी मिडुल्यू मेडिस अने टर्सिस्कम लीफ ब्लाइट लीफ अने शीत ब्लाइट अने रस्ट नो प्रकोप थाय से। इना रोग नी रोकथाम हारू रोग सहनशील जातियों नो चुनाव करवो जोईए अने ओरवातु पहलू बीज ने फफूंद नाशक दवा थी उपचारित करीने किसान भाई ने ओरवो जोईए। खड़ी फसल में रोग नो प्रकोप थावा पर डाइथेन जेड 78 अने डाइथेन 45 दवा नो 3 ग्राम प्रति लीटर नी दर थी इनो छिड़काव करवा थी आपो इनमा किसान भाई आसानी तो नियंत्रण करी सके से। तो किसान भाइयों, मक्का नी फसल हारू जो आपो दूरी जो ओरवा ने जो जो कतार थी कतार नी दूरी अने पौधा थी पौधा नी दूरी अने प्रति हेक्टर केतरा पौधा रेवा जोई तीना बारा में अगर देखी जाए किसान भाइयों, तो खरीफ फसल में वेगी पाकवा वाली किस्में हारू कतार थी कतार नी दूरी 60 सेंटीमीटर अने पौधा थी पौधा नी दूरी 20 सेंटीमीटर अने प्रति हेक्टर तक किसान भाइयों 80,000 तक मक्का ना पौधा आवी जाए छे इनमा। अने मध्यम अवधि में पाकवा वाली किस्में हारू जो कतार थी कतार नी दूरी 60 सेंटीमीटर अने पौधा थी पौधा नी दूरी 22 सेंटीमीटर अने प्रति हेक्टर तक 75,000 तक पौधा इनमा आवी जाए छे। अने वार थी पकवा वाली जो किस्मियों से मकानी हो तीनी कतार थी कतार नी दूरी 75 सेंटीमीटर अने पौधा थी पौधा नी दूरी 20 सेंटीमीटर अने प्रति हेक्टर 65,000 तक पौधा इनमा आवी जाए छे। अने अंतरवर्तीय फसल पद्धति में कतार थी कतार नी दूरी 75 सेंटीमीटर अने पौधा थी पौधा नी दूरी 20 सेंटीमीटर अने प्रति हेक्टर तक इनमा भी 65,000 तक पौधा आवी जाए छे। तो किसान साथियों, रवि अने जायद मौसम हारू कतार थी कतार नी दूरी 60 सेंटीमीटर अने पौधा थी पौधा नी दूरी 20 सेंटीमीटर अने इनमा लगभग 80,000 तक पौधा प्रति हेक्टर में आवी जाए छे। तो किसान साथियों, खातर अने उर्वरक नी अनुसूचित मात्रा आलवानी विधि, तो कंपोस्ट अने केचुआ ने द्वारा बनेलू खातर अने हड़ेला गोबर ना खातर ने जो जो भी उपलब्ध आप्रिकन ओ है तीनो उपयोग करियो जाई सके से। अने मक्का नी फसल पानी नी कमी अने पानी ना भराव इना बेहे दशाओं मा ज्यादा संवेदनशील रहे से। इना बेहे परिस्थितियों मा हारू खातर नो प्रयोग एकमात्र ही उपाय से। तो किसान साथियों, ओरवाना समय पर कतार मा आलू जोई तीनती फसल ने खुदो लाभ नी थाय से। तो तीने हारू इना तीने खातर ने भी जो की खातर उपलब्ध हो है तीहोनो 8 से 10 टन मात्रा प्रति हेक्टर ना हिसाब थी उपयोग करवानी जरूरत पड़े से। अगर संभव नहीं हो है तो हरी खाद नो उपयोग भी जरूर करवो जोई। मक्का फसल मा हरी खातर ने रूप मा 1:1 कतार मा ढेंचा अने होण लगाड़ी ने 35 से 55 दिन मा 5 से 9 टन तक हरी खाद नी प्राप्ति थाई जाय से। तो किसान साथियों, होण उगाड़ी अने तीना भांगवो पड़े से त्यो तीना खातर ना उपयोग मा हरी खाद ना उपयोग मा आवी जाय से, जबकि मक्का फसल नी प्राप्ति 100% थाई से। तो किसान साथियों, रासायनिक खातर मक्का मा नाखवानी एक थोड़ी सी जानकारी तमने बतावा जाई रह्यो छे। तो खरीफ फसल हारू जो आपड़ा सुमाहानी फसल हारू, तो किसान साथियों, वेगी पाकवा वाली जाति हारू नत्रजन नी जो मात्रा 90, स्फुर नी मात्रा 40 अने पोटाश नी मात्रा 30 अने मध्यम वसमा जो अवधि मध्यम अवधि मा जीनी पाकवा वाली जाति हारू नत्रजन नी मात्रा 120,
કિલો અને સ્પોરની માત્ર 50 અને પોટાશની માત્ર 30 અને વારથી પાકવાવાળી મક્કાની જાતિઓ હારું 150 કિલો નત્રજન અને 80 કિલો સ્પોર અને 60 કિલો પોટાશની માત્ર રહેવી જોઈએ. અને અંતરવર્તી ફસલ પદ્ધતિમાં જો કતારથી કતારની કતારમાં જો ઓરી છે તીનમાં નત્રજનની માત્ર 150 કિલો અને સ્પોર 80 કિલો અને પોટાશ 60 કિલો નાખવું જોઈએ. તો કિસાન સાથીઓ, જાયદ એક વાત તમને બતાડ દઉં કે રબીની બી તમને જાયદ હારું અગર કરવી હોય તો તેની બી માદાન કરી કિસાન ભાઈને માલમ રહેવી જોઈએ. તો તેની હારું રબીની ફસલમાં 180 કિલો નત્રજન, સ્પોર 80 કિલો અને પોટાશની માત્ર 60 કિલો રહેવી જોઈએ.

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग है नेचर का सतरंगी रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं धरती के उस कोने में जहां न कोई शहर है, न भीड़ भाड़, न ट्रैफिक का शोर, जहां चार ओर बस बर्फ ही बर्फ है। मीलों तक फैली सफेद चादर, हड्डियों को जमा देने वाली ठंड, तेज बर्फीली हवाएं और प्रकृति का ऐसा विराट रूप जिसे देखकर इंसान अपनी सीमाओं का एहसास करता है। ये है एंटार्क्टिका, पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे रहस्यमय महाद्वीप। लेकिन आज की ये यात्रा किसी टूरिस्ट की नजर से नहीं, बल्कि एक भारतीय साइंटिस्ट की आंखों से होने वाली है। एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने केवल एंटार्क्टिका को देखा ही नहीं, बल्कि वहां रहकर रिसर्च की, दुनिया के विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के साथ काम किया और भारत के दो साइंटिफिक एक्सपेडिशन का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त किया। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर मनोज के पंडित, राजस्थान विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी, पूर्व प्रिंसिपल महाराजा कॉलेज जयपुर, प्रख्यात जियोलॉजिस्ट, रिसर्चर और एंटार्क्टिक साइंटिस्ट। लगभग चार दशकों के अपने एकेडमिक जीवन में इन्होंने 180 से अधिक रिसर्च पेपर प्रकाशित किए, 32 शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया और देश विदेश में भारतीय विज्ञान का गौरव बढ़ाया। आज की बातचीत में हम केवल एंटार्क्टिका के बारे में नहीं जानेंगे, बल्कि महसूस करेंगे वहां पहुंचने का रोमांच, पहली बार बर्फीले महाद्वीप पर कदम रखने का अनुभव, महीनों तक परिवार से दूर रहने की भावनाएं, पेंगुइन्स, ग्लेशियर्स और साइंटिफिक रिसर्च की दुनिया। और यह भी, इस अनोखी यात्रा ने एक साइंटिस्ट के भीतर के इंसान को किस तरह से बदल दिया। तो आइए अपने कल्पना के जहाज पर सवार हो जाइए और चलिए हमारे साथ भारत से हजारों किलोमीटर दूर एंटार्क्टिका की एक अविस्मरणीय यात्रा पर। प्रोफेसर डॉक्टर मनोज के पंडित, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आलोक जी, सबसे पहले तो इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है और सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एंटार्क्टिक ऐसा विषय है जो मेरे हृदय के बहुत करीब है और आपने मुझे अवसर दिया इस बारे में बात करने का, तो आपका विशेष धन्यवाद।
1: तो चलिए डॉक्टर साहब, ऐसा करते हैं शुरुआत से कर लेते हैं। कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए और यह भी बताइए कि जियोलॉजी जैसा विषय चुनने की प्रेरणा कैसे मिली, क्या बचपन से ही प्रकृति, पहाड़ और पत्थरों में आपकी रुचि थी, क्या क्या हुआ, कैसे आप इधर आ गए जियोलॉजी की तरफ?
2: ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये जो कैसे आ गए, तो उसे मैं कहूंगा संयोग।
1: अच्छा।
2: क्योंकि जब मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी राजस्थान के अलग अलग छोटे छोटे जगह पे हुई, मुख्य मेरे पिताजी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे।
1: अच्छा, अच्छा।
2: और इस वजह से हर वर्ष लगभग उनका तबादला हो जाता था, तो मुझे उन दिनों में हायर सेकेंडरी 11 साल की हुआ करती थी, 11 क्लासेस थी, तो मुझे 11 अपने 11 क्लासेस के लिए 9 स्कूल बदलने पड़े थे।
1: अच्छा।
2: और उस समय न तो जियोलॉजी के बारे में कोई जानकारी थी, कि ये अभी भी जहां तक मैं समझता हूँ कि ये विषय बड़ा व्यापक है और बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, डायरेक्टली रिलेटेड है हमसे, लेकिन भारत में थोड़ी सी इसकी जानकारी कम है। और जहां तक बात है कि प्रकृति से प्रेम तो वो शुरू से था। मुझे पहाड़ों पे चढ़ना बचपन में बहुत अच्छा लगता था। हम लोग मूलतः कश्मीर से हैं, तो जब हम कश्मीर जाया करते थे छुट्टियों में तो हमारे गांव में जो पहाड़ हुआ करते थे, हम अपने कजिन्स के साथ में वहां चले, वहां जाना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। पर जियोलॉजी, उस समय मुझे जियोलॉजी का कोई किसी तरह का कोई आइडिया नहीं था। जियोलॉजी तो इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में आया उसके बाद में ये विषय लिया, और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, मुझे अभी भी अपने आप पे हंसी आती है कि एक महत्वपूर्ण विषय है। और क्योंकि मेरे एक मित्र ने कहा कि जियोलॉजी ले लो, अच्छा सब्जेक्ट है, तो मैंने अपने फॉर्म में जियोलॉजी भर दिया। तो ये एक संयोग था जो मुझे जियोलॉजी में ले आया।
1: नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, आप कश्मीर के रहने वाले हैं, पहाड़ों से तो आपका एक तरह से पैदाइशी संबंध है, और जियोलॉजी में आप संयोग से आ गए। लेकिन ये महासागर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। तो फिर आपने ये बताइए डॉक्टर साहब, जब आपने जियोलॉजी में अपना कैरियर शुरू किया, तो क्या कभी कैरियर के दौरान या ऐसे कभी कल्पना की थी कि एक दिन आपको ये रहस्यमय महाद्वीप अंटार्कटिका जाने का अवसर मिलेगा? ऐसा कभी सोचा भी था ख्वाबों ख्यालों में आपने?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैं जियोलॉजी पढ़ रहा था और जियोलॉजी में जब मैंने करियर की शुरुआत की, तो उस समय ये तो एक जिसको कहते हैं दूर की कौड़ी, बहुत ही दूर लगता था कि एक असंभव सा वो था। तो कभी मन में आया नहीं कि कभी मैं भी वहां जा सकता हूँ। इनफैक्ट जब मेरे अपने करियर के काफी लंबी यात्रा के बाद में ये विचार आया, और ये भी इसका भी एक इसकी भूमिका अगर मैं पृष्ठभूमि बताऊं आपको।
1: जी बताइए। हाँ
2: तो जी हाँ, तो मैं एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व, मेरा उसमें मतलब मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ उसमें, जो कि भारत की जो भौगोलिक परिस्थिति के बारे में था, कि भारतीय भूभाग जो है ये अपने ऐतिहासिक रूप से, जो इतिहास के मतलब करोड़ों साल और लाखों साल की बात कर रहा हूँ, तो भारत कब कहाँ था, कैसे खिसकता हुआ यहाँ, जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के नाम से शायद हम लोग सब जानते हैं इस विषय को। तो उसमें जब उसमें एक होता है, भारत और अंटार्कटिका एक समय में पड़ोसी हुआ करते थे।
1: अच्छा।
2: तो वो वहां से शुरुआत हुई। तो अंटार्कटिक के बारे में ये जानकारी तो थी, लेकिन वहां जाके काम करना, वहां जाके डेटा इकट्ठा करना, उसके बारे में थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि दिमाग में कीड़ा कुलबुलाना, वो तब शुरू हुआ। और ये मतलब मेरे करियर, आधा करियर जब खत्म हो गया था, उसके बाद की ये घटनाक्रम है।
1: देखिए कितनी मतलब सहयोग कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, और ये एक तरह से डेस्टिनी थी कि आप इतने बड़े अभियान से जुड़े हैं और अंटार्कटिका जाएं, और जबकि आपको शुरू में कोई ख्याल भी नहीं था, और ये सिर्फ जो थियोरेटिकल आपने कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ा होगा। और ये भी कितने मजेदार सहयोग है कि इंडिया और अंटार्कटिका किसी जमाने में पड़ोसी थे, करोड़ों साल पहले की बात है, कितना अच्छा है। तो चलिए इसी बात पे रुक के हम एक गाना सुनते हैं प्रकृति के इसी एक संयोग पे कि कभी हम पड़ोसी थे इंडिया और अंटार्कटिका। तो इस पे एक गाना सुनते हैं और एक छोटा सा पॉज देते हैं, और फिर आगे इस बातचीत को जारी रखते हैं।

0: हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो एसएन और रेडियो टांडिया भील, और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज के पंडित, जो हमसे अब बहुत ही दिलचस्प बातें करने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, वेलकम बैक। तो मैं अब आपसे थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो, क्योंकि ये हमारा हर तरह के श्रोता इसको सुनते हैं, तो एक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आर्कटिक और एंटार्क्टिका में आखिर फर्क क्या है, पहले तो ये बताइए। दोनों कहाँ स्थित है, वहाँ का मौसम कैसा होता है, और एंटार्क्टिका वैज्ञानिकों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
1: बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अक्सर मुझे भी जब बातचीत होती है तो कई बार ये पता लगता है कि लोग थोड़ा सा ये जिज्ञासा, ये कन्फ्यूजन है
0: जी।
1: तो यहाँ मैं ये बता दूं कि एलोजी के आर्कटिक जो है उसकी जानकारी हमें काफी पहले से थी। आर्कटिक उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ का जमा हुआ समुद्र है, तो देखने में वहां भी बर्फ है। और जो एंटार्क्टिक है ये दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ स्थित एक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट, जो कि बर्फ से ढका हुआ है। तो ऊपर से देखने पे दोनों जगह में बर्फ दिखाई देती है, लेकिन मूल फर्क ये है कि यहाँ पे बर्फ जो है, आर्कटिक में बर्फ जो है पानी के ऊपर है, और एंटार्क्टिक में जो बर्फ है वो जमीन के ऊपर है। और इस तरह से ये एंटार्क्टिक जो है वो पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का, जिसका एरिया यूरोप से ज्यादा है।
0: जी, वो तो जमा हुआ समंदर है और यहाँ जमीन के ऊपर बर्फ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है। वाह।
1: और एक चीज और भी बता दूं कि इसके जो बर्फ की जो औसत मोटाई है एंटार्क्टिक में वो लगभग 2 किलोमीटर है।
0: 2 किलोमीटर?
1: और जी हाँ, वो औसत मोटाई है। ये जब किनारे पे कम होती है और जैसे हम बीच उसके अंदर तरफ जाते हैं तो वहां 4.5 किलोमीटर तक की बर्फ की मोटाई है। और चूंकि ये शुष्क प्रदेश है और क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा है तो बर्फ बहुत कम गिरती है, और जो बर्फ गिरती है वो वहां जमा हो जाती है। तो यही आपने जो प्रश्न किया था इसके महत्व का, तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका योगदान है हमारे क्लाइमेट चेंज को लेके, वो ये है कि पास्ट क्लाइमेट लगभग, आप कल विश्वास नहीं करेंगे कि 8 लाख साल तक का जो रिकॉर्ड है हमारे पास वहां पे अवेलेबल है बर्फ में। तो उसी डेटा, उन्हीं सैंपल्स से के आधार पे हम जो पिछले हजारों सालों में जो पर एक जलवायु में क्या स्थिति रही और वो किस तरह से परिवर्तन हुए और आगे कैसे परिवर्तन हो सकते हैं, उसका सारा डेटा वहीं से आता है।
0: तो बर्फ में इसका मतलब है कोई चीज अगर रह गई वहां तो वो वैसी की वैसी रह जाती है, मतलब उसमें कुछ डिकम्पोज वगैरह नहीं होता, वैसा का वैसा रह जाता है, इज इट सो?
1: जी हाँ, जिसको हम कहते हैं मतलब विश्व का सबसे बड़ा फ्रीजर है ये।
0: मतलब कितने साल कोई चीज वहां है तो वो वैसी की वैसी रहेगी। तो इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब। आप जयपुर में तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर और 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी होती है, तो एंटार्क्टिका की ठंड वास्तव में होती कैसी है? क्या ये कुछ उसके बारे में कुछ एक कोई एग्जांपल से बता सकते हैं कि ये ठंड होती कैसी है, कैसा महसूस होता है?

0: बिल्कुल बिल्कुल। एक तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो विश्व का सबसे ठंडा ताप जो रिकॉर्डेड तापक्रम है वो है -89.3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 से 89.3 डिग्री सेल्सियस कम। और ये एक रशियन स्टेशन है वहां पे एंटार्क्टिक के केंद्र में वोस्टोक, वहां पर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि अभी तक का विश्व का प्रमाणिक सबसे कम तापक्रम है। और आपका प्रश्न था वहां पे सर्दी कैसी होती है, तो दो तरह की सर्दी मैं बता सकता हूँ। एक जो जो हमारे स्टेशन बने हुए हैं जहां पे हम लोग मतलब जो साइंटिस्ट लोग यहाँ रहते हैं, वो जो स्टेशन है वो हीटेड होते हैं। तो वहां अंदर आने के बाद तो आप जो सामान्य सर्दी का मौसम जैसे सब जगह होता है वैसा आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने से पहले कई सारी पहले आपको क्योंकि ये तापक्रम भी जो है वो बदलता रहता है वहां पे आपकी स्थिति के हिसाब से। आप अगर समुद्र किनारे हैं तो वहां तापक्रम अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, और जब आप इंटीरियर में जाएंगे तो तापक्रम कम होगा। तो आप कहाँ जा रहे हैं, कितनी और वहां पे तापक्रम कैसा होगा, उसके हिसाब से आपको तैयारी करके निकलना पड़ता है। तो जब आप बाहर निकलते हैं तो एक चेकलिस्ट होती है कि आपने ये सब किया है कि नहीं किया है, और जो आपकी तैयारी जिसको कहते हैं कि एक जो इनर थर्मल जिसको बोलते हैं हम लोग, जो हम सर्दी में भी यूज करते हैं, वो इनर लेयर कहलाती है। फिर एक मिडिल लेयर कहलाती है जो कि काफी मोटी जैकेट और आपके लोअर्स होती हैं, और उसके ऊपर एक पोलर सूट पहना जाता है जो जो खुद 4 लेयर्स का होता है जिसमें। हाँ, और तो कुल मिला के जब आप बाहर निकलते हैं तो आपका वजन जो है 7 8 किलो एक्स्ट्रा होता है, और जूते भी जो है वो आपको अब दो साइज बड़े पहनने पड़ते हैं, क्योंकि 2 3 सेट मोजे के पहनने पड़ते हैं आपको। और एक प्रिकॉशन और वहां पे लेनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे आपने सुना होगा कि ओजोन होल जिसकी बात जो हमारे लिए चिंता का विषय है, तो वो सबसे बड़ा ओजोन होल वही एंटार्क्टिक के ऊपर ही है। तो वहां जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनका खतरा भी काफी ज्यादा रहता है, तो आपको उसके लिए भी विशेष तैयारी करनी पड़ती है। जो एक सन क्रीम जिसका कि SPF या सन प्रोटेक्शन फैक्टर 60 से लेकर 90 तक होता है, वो आपको यूज करनी पड़ती है, और चश्मा एक यूवी चश्मा लगाना पड़ता है बाहर निकलते टाइम।
1: तो इसका मतलब इतनी ज्यादा प्रिकॉशंस लेके आप बाहर निकल सकते हैं, इससे अंदाजा हमारे श्रोता लगा सकते हैं कि कितनी ठंड होती होगी वहां पर। आपने बता दिया लगभग 90-90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, रिकॉर्डेड टेम्परेचर है, जो दुनिया का सबसे निम्नतम टेम्परेचर है। तो ये
0: जी,
1: तो
0: बहुत वो तो बहुत दूर है, लेकिन मतलब हाँ, वो तो विंटर विंटर का टेम्परेचर है। हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो जो वहां का समर होता है तो उसमें निकलते हैं।
1: तो पोलर सूट बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मेरे को, जैसे स्पेसशिप वाले इस पे ये स्पेस सूट पहनते हैं, वैसे पोलर सूट में कोई खास ऐसा मटेरियल होता है डॉक्टर साहब, क्या होता है ये पोलर सूट?
0: ये मल्टी लेयर होता है, कैसे बहुत खास थोड़ा सा जब आप पहन लेते तो थोड़ी थोड़ी फीलिंग तो आती है एस्ट्रोनॉट वाली, लेकिन हाँ उससे उससे बहुत ही छोटे स्केल पे है। अगर आप उसको उसको 100 100 कहें तो इसको 10 नंबर दे सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, लेकिन जब आप लोग वहां चलते होंगे तो कुछ वैसी फीलिंग आती होगी, बिल्कुल उसी तरह से लगते होंगे
0: तो,
1: देखने।
0: और वो सबसे बड़ी बात है कि जब आप बाहर निकलते हो तो हर हर व्यक्ति एक जैसा दिखाई देता है। क्योंकि सबकी सबका जो जो पहनावा है, ड्रेस होती है, एक ही होती है, उसके बाद में आपका जो सिर भी कवर्ड होता है और आंखें भी कवर्ड होती हैं।
1: तो डॉक्टर साहब,
0: पोलर सूट जो आप कह रहे थे, इसके 4 लेयर्स होती हैं खुद की।
1: अच्छा,
0: तो ये थर्मल इंसुलेशन और विंड दोनों के लिए होता है।
1: तो चलिए, इस कल्पना के नाम पे और ये जो आपने पोलर सूट के बारे में बताया और आपस में बातचीत करने के, इस पे रुक के एक अच्छा सा गाना सुनते हैं और फिर उसके बाद में बातचीत को जारी रखते हैं।

0: हाँ, वेलकम बैक डॉक्टर साहब। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो एसएन और रेडियो टाटिया भील, और हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर मनोज के पंडित से, जो एक जियो साइंटिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि ये इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन के लिए आपका सिलेक्शन किस तरह से हुआ, क्या सिलेक्शन प्रोसेस था, क्या बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस था, कुछ इसके बारे में बताइए।
1: चलिए बिल्कुल, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा
0: जी जी बताइए।
1: आपको, उसको ताकि अच्छे से जुड़ जाए इस बात से, कि
0: जी जी
1: एंटार्क्टिक और रिसर्च, ये एक थोड़ा सा ये विश्व के सब बाकी रिसर्च से बिल्कुल भिन्न है, और उसकी मैं थोड़ा वो उसके बारे में आपसे कुछ
0: हाँ
1: शेयर
0: हाँ
1: करना
0: बिल्कुल
1: चाहता हूँ
0: बिल्कुल,
1: मैं,
0: मोस्ट वेलकम, बताइए सर।
1: कि इसके जो एंटार्क्टिक का इतिहास जो है, क्योंकि एंटार्क्टिक ऐसा स्थान था, विश्व का ऐसा स्थान है जिसकी जानकारी हमें बहुत सबसे बाद में हुई, 1770 के दशक में लगभग किसी को बहुत दूर कुछ दिखाई दिया, तो लेकिन पहुंचने तक पहली बार पैर रखने की जो जो घटना है ये 1823 में हुई,
0: ओके
1: लेकिन और दक्षिण ध्रुव तक जो पहला व्यक्ति पहुंचा वो 1914 में पहुंचा। तो
0: ओके
1: ये जो चूंकि बहुत कठिन, सब कुछ बहुत कठिन है, तो बहुत धीरे धीरे ये हुआ, और उसके बाद में जब पता लगा वहां कोई नेचुरल हैबिटेट नहीं है, कोई नेचुरल रहने वाले नहीं है, नॉर्थ पोल में तो फिर भी एस्किमोज रहते हैं, यहाँ पे कोई कोई वो नेचुरल हैबिटेट, कोई मतलब मानव किसी तरह का मानव का कोई वहां बस्ती नहीं थी। तो फिर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये चला कि ये इतना बड़ा भूभाग जो है किस देश का हिस्सा हो,
0: ओहो
1: क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ था नहीं वहां पे, इसमें काफी अंतर्राष्ट्रीय वो ये चलता रहा कि जिसको कहते हैं देसी भाषा में खींचतान,
0: राइट
1: जी हाँ। तो जो साउथ अमेरिकन हैं खासतौर पे, ये अर्जेंटीना और चिली, उन्होंने कहा कि हमारा हम सबसे नजदीक पड़ते हैं, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट जो अंटार्कटिक का वो उनसे काफी नजदीक है, लगभग 900 किलोमीटर है, और नॉर्वेजियंस ने कहा कि हम सबसे पहले यहाँ पहुंचे थे, हम सबसे पहले हमारा झंडा लगा था, तो ये हमारा होना चाहिए।
0: जी
1: यूरोपियंस अमेरिकन ये सब अपना अपना क्लेम इनका चल रहा था, लेकिन वहां स्थिति ऐसी थी कि वहां पे अगर आप हासिल कर लेंगे आपको उस मिलेगा कुछ नहीं, तो छोड़ना भी नहीं था और बहुत ज्यादा गंभीर भी नहीं थे लेने के लिए, तो ये इसमें कुछ दशक निकल गए। तो 50 के दशक में जब सारा विश्व में जब ये पर्यावरण को लेकर जब चिंता शुरू हुई, जब पता लगा कि हमने औद्योगिकरण के नाम पे जो बहुत सारा नुकसान कर दिया पर्यावरण का, उसके दुष्परिणाम अब दिखने लगे थे, तो एक वैश्विक चिंतन शुरू हुआ इस बारे में। तो एक विचार आया कि अंटार्कटिक में चूंकि अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, तो अंटार्कटिक जैसा ही प्रकृति ने दिया था वैसा ही है, इसको इसी तरह रहने दिया जाए। तो ये सुझाव बड़ा मान्य सुझाव था, सबको स्वीकार था, तो अंटार्कटिक को एक विशेष दर्जा दिया गया है, इसका कोई ये किसी देश का हिस्सा नहीं है, इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इसमें कोई पुलिस नहीं है, इसमें कोई जुडिशरी नहीं है, और इसका मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक करते हैं, और एक कमेटी के थ्रू इसका नाम है साइंटिफिक कमेटी ऑन एंटार्क्टिक रिसर्च, जो कि 1958 में बनी थी
0: अच्छा सर,
1: जी।
0: थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और बताइए इसके बारे में कुछ। हाँ
1: तो उसके और दूसरा एक जो महत्वपूर्ण बात है, हम मतलब खासतौर से मैं श्रोताओं से भी इस बारे में एक मतलब बात करना चाहता हूँ विशेष रूप से, कि अभी हम बात कर रहे हैं पर्यावरण को लेकर, हम सब चिंतित हैं, पर्यावरण को लेकर परेशान है, पर्यावरण के सुधार के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है, अब इसके बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक पे बैन है और ये मत कीजिए, ये ऐसा कीजिए, ये सब डूज एंड डोंट्स हैं, वो तो अलग बात, लेकिन कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं ये एक अलग प्रश्न है। एंटार्क्टिक विश्व का एकमात्र स्थान है जहां पर कि पर्यावरण को लेके जितना जितना कंसर्न पर्यावरण को लेके वहां उतना कहीं नहीं है, और दूसरी बात ये है कि वहां पर्यावरण की जो कंडीशन है सबसे स्ट्रिक्ट है। जिसका छोटा सा उदाहरण मैं इस बात से देना चाहूंगा कि वहां जो भी कचरा आप करते हैं, किसी तरह का भी कचरा, वहां किसी कोई कचरा वहां फैलाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है, जो भी कचरा आपका जो वेस्ट जिसको हम कहते हैं वो आपको वापस लेके आना पड़ता है वहां से, वहां कुछ भी छोड़ सकते हैं, इवन जिसको जिसको कहते हैं ह्यूमन एक्सक्रीट है जिसको
0: जी, हाँ,
1: वो भी वहां पे वो भी वहां छोड़ने की अनुमति नहीं है। और जब आप खास तौर से जो हम धरती थोड़े इस मामले में थोड़े ज्यादा बदनाम है, तो जब वहां जाते हैं तो हमें विशेष रूप से कहा जाता है कि आप जब बाहर जाएंगे और फील्ड में काम करने जाएंगे तो नेचुरली कुछ साथ में खाने का ले जाएंगे, तो किसी भी तरह का रैपर वहां बाहर नहीं छूटना चाहिए। गलती से अगर छूट गया तो जैसे आपने आप बताया था अभी कि वहां तो सालों साल वैसे ही पड़ा रहेगा, उसका कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, तो अगर वो कोई बिस्किट का पैकेट जिसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ पड़ा हुआ है वो रैपर, तो आपके स्टेशन को बंद करना पड़ेगा। मतलब वो कंडीशन ऐसी है कि फिर आपका स्टेशन बंद होगा और आप परमानेंटली ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। तो इवन सिगरेट जो आप पीते हैं बाहर, हालांकि पीनी नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी पीते हैं, उनका सम्मान करना पड़ता है। तो बाहर सिगरेट अगर आप पी रहे हैं फील्ड में, तो उसका जो बट है वो जेब में रख के लाना पड़ता है, मतलब वो भी आप बाहर नहीं फेंक सकते।
0: पता है इतना ज्यादा, और ये सब सुपरवाइज करती है जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ही इंश्योर करती है कि इस तरह का कोई किसी तरह का कोई चीजें फेंके नहीं या कोई पॉल्यूशन नहीं बनाए। ओके,
1: ये आलोक जी बड़ी अच्छी बात है कि कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन जब आप वहां कर रहे हैं तो आपको लगता नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ये अपने मन अपने आप हो जाता है। मतलब जब आप वहां जाते हैं तो कि आपकी सारी, मतलब आपको किसी चीज को खराब करने का मन ही नहीं करता कि आप। और ये एक बात और मैं आपको बताऊं कि वहां इतना बड़ा महाद्वीप है, अगर आप जीवन भर उसको खराब करने का प्रयास करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते, उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा पर्यावरण पे। लेकिन आपका आप अपने मन से सब चीजें करते हैं जो कि होनी चाहिए, और सिर्फ पीयर प्रेशर है, अगर दूसरे स्टेशन वाले आपका ध्यान रखते हैं आप दूसरे स्टेशन का ध्यान रखते हैं, बस इसी पे चलता है। लेकिन आपका प्रश्न यहाँ पे गौण हो गया, प्रश्न आपने जो पूछा था
0: सिलेक्शन प्रोसेस की, कोई बात नहीं, आप बताइए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो कुछ उसके बारे में बताइए कैसे गए, क्या हुआ, थोड़ा बहुत बताइए।
1: वहीं आता हूँ। तो जब ये 50 के दशक में सब हुआ तो कई सारे अभियान जाने लगे वहां पे बहुत सारे देशों के, और 1981 में हमने भी अपना एक अभियान भेजा। 1980 में हमने तय किया भारत ने कि हम भी अपना एक इंडिपेंडेंट अभियान दल भेजेंगे, और 1981 में हमारा पहला दल गया था, भारतीय अभियान दल, जिसके लीडर थे डॉक्टर एस जेड कासिम, जो कि उस समय ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा के डायरेक्टर थे। और 1983 में हमारा पहला स्टेशन वहां बना, जिसका नाम रखा दक्षिण गंगोत्री।
0: अच्छा।
1: और 1989 में हमारा दूसरा स्टेशन बना, जिसका नाम दिया मैत्री। दुर्भाग्य से ही जो पहला स्टेशन था ये 6 साल बाद बर्फ में दब गया, तो उसको छोड़ना पड़ा 1989 में।
0: अच्छा।
1: और तीसरा स्टेशन हमारा जो बना वो 2012 में बना, जिसका नाम है भारती। तो ये तो अब वहां जाने का जो ये प्रक्रिया और ये सब, तो जब हमने तय किया कि हमें अपना अभियान दल वहां भेजना है, तो ये भी तय किया गया कि हम आगे आने वाले 20-25-30 साल में हम किन किन विषय, मतलब किन किन एरियाज में वहां पे काम करेंगे। और उसके लिए भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज को वो किया गया, कस्टोडियन बनाया गया, जैसे भूविज्ञान से संबंधित काम के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, मैपिंग के लिए सर्वे ऑफ इंडिया को, इसी तरह से मीटोलॉजी के लिए इंडियन मीटोलॉजी डिपार्टमेंट, और ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जिनको, और उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए, और फिर हर साल अपने यहाँ से कुछ वो नॉमिनेट करते हैं अपने साइंटिस्ट को जो कि उस पर काम करते हैं। इसके अलावा आप जो और वैज्ञानिक है जो कि यहाँ नहीं है, जो बाहर इनोवेटिव इंस्टीट्यूट में या रिसर्च में काम करते हैं, उनसे भी कहा जाता है अगर आपके पास हमारे इन फील्ड की कॉम्प्लीमेंट्री कोई अगर आप कुछ करना चाहें तो आप अपना प्रपोजल दे सकते हैं। तो चूंकि मैं इन फील्ड्स में, मैं विश्वविद्यालय से था, तो मैंने अपना प्रपोजल सबमिट किया, जो कि प्रक्रिया है, और वो प्रपोजल टेक्निकल इवेल्युएशन होता है, जैसे कि किसी भी साइंटिफिक प्रपोजल का जो आप देते हैं उसका इवेल्युएशन होता है कमेटी के द्वारा, और वहां पे अगर प्रपोजल अप्रूव होता है उसके बाद में जो दूसरी लड़ाई होती है वो आपको दिल्ली जाकर लड़नी पड़ती है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आपका फिजिकल वो टेस्ट किए जाते हैं, सारे के सारे आपके जो सिस्टम जो है, मतलब एक जिसको एकदम पूरा थरो मेडिकल चेकअप होता है वहां पे, और फिर वो जो मेडिकल बोर्ड है वो तय करता है कि आप वहां जाने की लायक, मतलब सक्षम है या नहीं है, वहां जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं आप। क्योंकि इसमें एक दिक्कत यह है आलोक जी कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है और आप अपना भी काम कर रहे हैं
0: जी, सही बात।
1: और जाने वाले लोग बड़े लिमिटेड हैं, बहुत मतलब ये बहुत बहुत लिमिटेड लोग ही जा पाते हैं, तो आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं हर एक व्यक्ति के पास। और अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका काम तो सफर हो रहा है, साथ में पूरा प्रोजेक्ट पे असर पड़ता है। तो इसलिए ये रखा जाए। उसके बाद फिर ट्रेनिंग की जाती, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है लोगों को, ऑल इंडिया सॉरी इंडो तिब्बतन आईटीबीपी का बॉर्डर पुलिस जो है इंडो तिब्बतन, इनका ओली में सेंटर है।
0: ओके।
1: वहां पे एक्लिमेटाइजेशन ट्रेनिंग होती है तीन हफ्ते की
0: जी।
1: और फिर आपका फिर एक्चुअल अभियान शुरू होता है।
0: तो इसका मतलब है कि आपका मेडिकल फिटनेस का जो था वो भी बहुत रिग्रस था, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी बहुत रिग्रस था, और ऑब्वियसली कि आज सिंस यू आर ए पार्ट ऑफ द एक्सपीडिशन तो आपकी फिटनेस हर तरह से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही बात।
1: हाँ वही, नहीं मैं आप ही की बात को कह रहा, क्योंकि फिजिकल फिटनेस के अलावा मेंटल एंड्योरेंस भी एक कंपोनेंट है आजकल। तो सेक्रेटरीज भी आप वहां पे कुछ आपको एनालाइज करते हैं, वो एक ये जो पहले नहीं हुआ करता था आजकल पिछले कुछ एक दो दशक में जोड़ दिया गया है।
0: तो डॉक्टर साहब जब भी आपका सिलेक्शन हो गया और इतने बड़े अभियान के लिए आप जा रहे थे, तो कुछ हमें ये बताइए कि आपकी फैमिली की क्या प्रतिक्रिया थी, परिवार वालों ने कैसा महसूस किया कि इतनी लंबी दूरी के जा रहे, किस तरह से आपने उनको कन्विंस किया, कुछ उसके बारे में बताइए। क्योंकि हमारे तो जनरली परिवार वाले ये कहते हैं कि भाई अरे कहाँ इतनी दूर, इतने एक तरह से डेंजरस और रिस्की मिशन है ये एक तरह से। तो इसके बारे में क्या हुआ घर पे?
1: नहीं, जहाँ तक परिवार का सवाल है, परिवार वालों की चिंताएं और संशय तो अपनी जगह थे, लेकिन उन्होंने कभी ये कभी नहीं होने दिए। हालांकि मुझे पता है कि वो मतलब बहुत ज्यादा इस बात से प्रसन्न नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी इस बात में ओपनली कभी नहीं कहा कि इसका विरोध नहीं किया, और एक तरह से मुझे सहयोग किया।
0: चलिए बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब है परिवार ने आपको सहयोग दिया, सपोर्ट किया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए आपके परिवार के नाम पे गाना सुनते हैं, रुक के, और फिर आगे बातचीत करते हैं।
1: बिल्कुल।

0: वेलकम बैक डॉक्टर पंडित। अब चलिए, अब हमें सफर पे ले चलिए, जयपुर से अंटार्कटिका तक का सफर। तो कुछ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप गए, या पहला वो क्षण कौन सा था जब आपने अंटार्कटिका पे पहला कदम रखा था, कुछ उसके बारे में बताइए। किस तरह से आप वहां पहुंचे, कुछ उसके बारे में हमें बताइए।
1: चलिए, थैंक यू। बड़ी वो यादें हमेशा रहेंगी मेरे साथ। बहुत धन्यवाद आपके इस बात के लिए। तो जब आप सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में ट्रेनिंग के बाद में फिर आपको एक टाइम बताया जाता है कि आपको असेंबली जिसको कहते हैं। अब क्या अल्लोक जी की धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। जब मैं पहली बार गया था और दूसरी बार गया, तो उन दोनों में भी काफी अंतर पड़ गया था। दोनों जब पहली बार गया था तो हमारा पूरा अभियान जो है वो शिप से, हमारा मतलब जिसको कहते हायर्ड शिप होता है, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है, तो सब चीजें आपको यहाँ से ले जानी है और उसके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ती। तो एक जहाज आप यहाँ से जाता है, तो गोवा से ही एक्सपेडिशन प्रारंभ होता था
0: जी।
1: और सारी टीम है वो एक गोवा से जाती थी शिप से। और तब पहला स्टेशन जो था हुआ करता था उन दिनों में, मतलब उसके बाद लगातार पानी में चलने के बाद में पहला जो स्टॉप होता था वो था मॉरिशस। तो मॉरिशस किसी टूरिज्म के लिए नहीं होता था, क्योंकि एक टेक्निकल स्टॉप था वहां पे, इसकी फ्यूलिंग होती थी जहाज की, और इंडियन ऑयल का डिपो था वहां पे
0: जी।
1: तो जहां तक आपने बात की, तो मेरे लिए तो ये मतलब ये जर्नी जो थी शिप की जर्नी मेरे लिए पहली जर्नी थी। तो बड़ी शुरू में बड़ा एक्साइटमेंट था जिसको बोलते हैं, लेकिन फिर सुबह शाम चारों तरफ सिर्फ पानी पानी नजर आता है। तो खैर, क्योंकि आप पूरी टीम में हैं, तो वो समय निकल जाता था। और 25 दिन के बाद हम लोग वहां पहुंचे, 25 दिन की यात्रा थी यह। तो लगभग 25 दिन बाद हम लोग वहां पहुंचे। तो जहां हमारा स्टेशन है वहां से लगभग 90 किलोमीटर दूर जहाज के रुकने की किनारा, जहां पे जहाज डॉक करता है, उसके तो वहां पहुंच के जो पहला अनुभव था वो बहुत निराशाजनक था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वहां से फिर आपको हेलीकॉप्टर से स्टेशन तक जाना होता है, जो कि 90 किलोमीटर की यात्रा है
0: जी।
1: और वहां पर मौसम बहुत खराब था उस समय, और हमारे और जो केंद्रीय सचिव थे वो वहां पे स्टेशन पे मौजूद थे, और वो उनको उसी दिन रात को वापस निकलना था, वो स्पेशल फ्लाइट जो वहां से चलती है। तो वो एक बड़ा असमंजस की स्थिति थी कि उनको कैसे अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि इसमें दिक्कत ये होती है कि दोनों जगह मौसम ठीक होना चाहिए। जहां से आप चल रहे हैं हेलीकॉप्टर के लिए बड़ा वो रहता है, जहां से चलेंगे और जहां डेस्टिनेशन है, दोनों जगह मौसम ठीक नहीं होगा तो हेलीकॉप्टर वो टेक ऑफ नहीं कर, मतलब वो यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन फॉर्चुनेटली 2-3 घंटे बाद मौसम क्लियर हो गया, अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि आप तुरंत पहुंचिए, टेक पे पहुंचिए, आपको निकलना है। तो वो मैं इस मामले में बड़ा लकी था कि मैं फर्स्ट चार जो लोग हम लोग फर्स्ट सॉर्टी में गए थे, तो चार लोग जो थे वो बड़े विशेष माने जाते हैं। तो जब वहां जब हम मैत्री पहुंचे, उससे पहले जब ऊपर से देखते हैं, तो वो जब जो मैत्री जो आप फोटोग्राफ्स में इतने साल से देखते आ रहे थे, वो साक्षात दिखाई देता, तो ऐसा लगता है कि वो जिसको मिनी इंडिया की फीलिंग आती है। जब आप पहुंचे तो ऐसा लगता है अपने घर आ गए।
0: तो ये तो बड़ी जोरदार, फिर मतलब कुछ जो स्टेशन बना हुआ है वो चूंकि इंडिया का है और नाम भी उसका मैत्री है, तो उसको देखकर आपको बहुत ही बढ़िया महसूस हुआ होगा। बहुत बढ़िया बात।
1: जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है अपने घर, मतलब अपना वो भारत आ गया, जिसको वहां पर उसको मिनी इंडिया भी कहते हैं लोग।
0: इस सारे विल्डरनेस में आपको एक अपना सा कुछ लगा वहां, बिल्कुल सही बात।
1: लेकिन हाँ, जब आप पहुंचे तो वो एक सेरेमनी होती है वहां पे स्पेशल।
0: अच्छा अच्छा।
1: कि स्टेशन हैंडओवर टेक ओवर, तो हमारे जो हम लोग जब पहुंचे थे, तो मेरे साथ हमारे जो स्टेशन जो मतलब इंचार्ज थे, जो टीम लीडर जिसको बोलते हैं, तो वो भी थे। तो और ये बड़े आनंद फानंद में सेरेमनी की गई। उसके बाद में जो सेक्रेटरी थे उनको उसी हेलीकॉप्टर से वहां भेजा गया। वो एक रशियन स्टेशन है पास में, वो एक वहां पे एक एयर स्ट्रिप मेंटेन करते हैं। एयर स्ट्रिप क्या होती है, सिर्फ बर्फ है वहां पे, सॉलिड आइस है जिसके ऊपर हवाई जहाज लैंड करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो वो जो शुरू के 4-5 घंटे थे, काफी बहुत सारी घटनाएं उसमें हुई।
0: तो चलिए, तो फिर अब आपसे बात करते हैं, इसके बाद में वहां की जो रूटीन थी आपकी किस तरह से करते हैं, यहाँ रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं, फिर आपसे आपकी जो वहां की लाइफ थी उसके बारे में, रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बातचीत करते हैं। एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे चलते हैं।
1: जी

0: चला जाए सपनों से आगे कहां।
1: हाँ, तो वेलकम बैक डॉक्टर पंडित। तो अभी बताइए कि जैसे वहाँ का जो आपका डेली रूटीन था, रोजमर्रा की जिंदगी थी, रहना खाना सोना कम्युनिकेशन, ये कैसे बीतता था? क्या प्लानिंग होती थी? रिसर्च के लिए कैसे टाइम निकालते थे? और कभी क्या होम सिकनेस टाइप भी कुछ रहती थी आप लोगों को? कुछ बताइए अपने रूटीन के बारे में।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं पहुंचने का, थोड़ा सा अब थोड़ा सा बदल गया है साहब।
1: अच्छा,
2: अब हमारा जो एक्सपेडिशन है अब केप टाउन से शुरू होता है।
1: अच्छा अच्छा।
2: और ये महसूस किया गया कि उसमें बहुत समय लग जाता था आने जाने में। और एंटार्क्टिक जाने में एक बड़ी दिक्कत यह है कि आप एक निश्चित समय में अगर आप वहां से नहीं निकलेंगे तो फिर आप 6 महीने के लिए वहां फंस जाएंगे, क्योंकि वो जो समुद्र है वो जमने लगता है विंटर में।
1: अच्छा।
2: तो लगभग मार्च के मध्य में, 20 मार्च तक तो निश्चित रूप से आपको वहां से निकलना पड़ेगा। तो एक जो वहां काम करने के लिए जाने के लिए विंडो मिलती है, बहुत छोटी सी मिलती है, नवंबर से लेके मार्च तक की।
1: अच्छा।
2: तो ये लगा कि काफी समय हमारा यात्रा में निकल जाता है। तो अब हमारा जो एक्सपीडिशन है वो केप टाउन से शुरू होता है। मतलब जहाज केप टाउन से जाता है, केप टाउन तक सामान्य अपने जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उससे जाते हैं।
1: अच्छा।
2: और वहां से फिर, तो वहां से 12 दिन लगभग, एक तरफ 12 दिन कम हो गए, मतलब कुल मिला के 20-25 दिन आपको वहां एक्स्ट्रा मिल जाते हैं रहने के लिए।
1: ओके।
2: तो अब आपका प्रश्न था वहां के रूटीन के बारे में। तो जब आप आपकी टीम में लगभग 65% तो साइंटिस्ट होते हैं और 30-35% जो होते हैं वो सपोर्ट स्टाफ होते हैं, टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ। उसमें इंजीनियरिंग वाले होते हैं जो कि वहाँ मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि वहाँ मेंटेनेंस में का काम करते हैं। और एक चीज और बताऊं, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन आपको खुद करनी पड़ती है, आपका पावर सोर्स खुद का होना चाहिए।
1: अच्छा।
2: और इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज लाइफ लाइन, अगर आपकी बिजली बंद हो गई तो लाइफ बंद हो जाएगी। हर चीज वहाँ बिजली पे कनेक्टेड है। तो आपके ये जो जनरेटर्स रहते हैं, 2 जनरेटर्स काम करते हैं, एक बैकअप में रहता है और 2 जनरेटर्स पीछे उसमें मेंटेनेंस में रहते हैं। और उसके अलावा आपके 2 कुक्स होते हैं जो कि टीम के साथ जाते हैं, और 2 डॉक्टर्स होते हैं। और आमतौर पर डॉक्टर्स की शिकायत ये रहती थी कि सर हमारे पास काम ही नहीं, हम बेकार हो गए, क्योंकि जो वहां पे जो कंडीशंस हैं इतनी ठंड में जो है जुकाम का वायरस सर्वाइव नहीं करता, तो जुकाम भी नहीं होता लोगों को।
1: अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। ओके।
2: और जहां तक बात है रूटीन की, तो एक शाम को एक मीटिंग होती है, कल के सारे प्रोग्राम्स, कल का प्लान्स चेकआउट होते हैं, कल का क्या रहेगा। और क्योंकि 2 हेलीकॉप्टर्स हुआ करते हैं, कभी 2 होते हैं, कभी 1 होता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का, जैसे शुरू में 2 छोटे हेलीकॉप्टर्स हुआ करते थे, अब आजकल जो है एक बड़ा हेलीकॉप्टर होता है जो कि सामान के लिए होता है, और दूसरा एक छोटा हेलीकॉप्टर जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। तो किनको कैसे जाना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, एक हेलीकॉप्टर एक पार्टी को छोड़ के आएगा, फिर जैसा भी है वो सब तय होता है। और हर चीज बिल्कुल मेटिकुलसली तय होती है कि कल कौन कौन क्या करेगा। और आपकी, और उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है, वहां पे सब कुछ आप ये प्रकृति के भरोसे है। मौसम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहां पे। कई बार ऐसा होता है कि 3-3 दिन तक आप अंदर ही बैठे रहते हैं, मौसम खराब है, आप बाहर नहीं निकल सकते। तो मौसम बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मौसम की जानकारी हम लोग आप जितने स्टेशन से आपस में एक दूसरे से शेयर भी करते रहते हैं, क्योंकि खासतौर जब आपको बाहर जाना है तो आप जिस समय जाना है उस समय का मौसम, वहां पहुंचने का मौसम, वहां से निकलते टाइम, यहाँ आने का, ये सब चीजें फेवरेबल हों तभी आप जा सकते हैं। और हम लोग जब फील्ड में जाया करते थे तो अब ये होता था कि आप एक दिन का कुछ खाने का सामान सर्वाइवल के लिए और अपना स्लीपिंग बैग टाइप का साथ लेके जाएं। अब कहीं ऐसा हो कि आपको अटक गए कहीं, वहां लौट नहीं सकते, तो रात को कम से कम वहां हेलीकॉप्टर में बैठ के अपना बचाव कर सकते हैं। और तो जहां तक साइंटिफिक काम है, उसके अलावा जो बाकी के काम है वो सब भी आप ही को करने पड़ते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण वहां का ये है कि इट्स नॉट जस्ट साइंस, आपकी जो जिसको कहते हैं मतलब डिग्निटी ऑफ लेबर, वहां पे पहली बार पता लगती है कि आप जो घर में जो छोटे काम है जिनके लिए आपके बहुत सारे यहाँ हेल्प जिनको रखा होता है, वहां वो सारे काम आपको करने पड़ते हैं। और 2 साइंटिस्ट की ड्यूटी रोज, जिसको कहते हैं गैली ड्यूटी कहते हैं वहां पे, और वो आप उस दिन साइंस नहीं करेंगे, उस दिन आप स्टेशन का सारा काम करेंगे। जैसे सफाई से लेके स्टेशन की सफाई, उसके किचन में उसका सब उसका हेल्प करना, ये कुक्स का, उसके अलावा टॉयलेट्स की सफाई जो कि बड़ी अपने आप में बड़ी जटिल प्रक्रिया है, मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, पर ये कि जो सबके टॉयलेट्स हैं उनको उसको जला के राख इकट्ठी करके पैक करके बॉक्सेस में रखने का काम भी आप ही को करना पड़ता है, ये रूटीन है। फिर शाम को आपकी वही, चूंकि चूंकि आपकी लाइफ इतनी मोनोटोनस होती है, तो वहां पे प्रयास ये किया जाता है कि आपको जो सुविधाएं दी जा सके वो दी जाती हैं। लाइब्रेरी वहां पे काफी अच्छी लाइब्रेरी है, तो आपके पास बहुत सारे ये वीडियोस हैं, इसके सीरीज हैं, बुक्स हैं, और छोटा सा जिम भी अभी हमारे पास है यहाँ पे स्टेशन पे, टीटी खेलने की सुविधा है। फिर वो भी रहता कि एक और भी थी, मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करूँ, क्योंकि लाइफ बड़ी मोनोटोनस होती है, तो कोई भी ओकेजन सेलिब्रेशन का होता है वहां पे उसको जरूर वो किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, तो सब लोगों से अपने डेट ऑफ बर्थ, उनकी ये वेडिंग एनिवर्सरी, उनके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ मांगी जाती है, और जिस दिन वो होता है उस दिन वो सेलिब्रेट होता है।
1: तो डॉक्टर साहब आप भी म्यूजिक का शौक रखते हैं, कोई गाना वाना गाते थे क्या वहां भी आप?
2: नहीं, सुनने का शौक निश्चित रूप से है, वहां पता लगा कि वो तो जो सुनने का शौक रखने वाला है वो गा भी लेता है।
1: कोई ऐसा खास गाना जो आपने वहां गाया हो और आपको याद रहा जिंदगी भर?
2: नहीं, वो तो वहां ऐसा कुछ शो नहीं था, जब भी जो जो लोगों ने कहा सुना दिया।
1: जी जी जी,
2: क्योंकि हमारे कुछ अच्छे गायक भी थे वहां पर।
1: तो चलिए श्रोताओं, इस गाने और म्यूजिक की बात पे, और आपने देख ही लिया कि किस तरह से हम, एक आम सी कहावत है, जंगल में मंगल भी मना लेते थे ये लोग वहां, तो इस तरह से अपने आप को एंटरटेन भी रखते हैं, इतनी रिगरस लाइफ भी होती है, इतने विल्डरनेस में किस तरह से काम करते हैं, कितनी टफ कंडीशंस में, और किस तरह से अपने आप को एंगेज रखते हैं, कितना मजा आ गया सुन के। एक गाना सुनते हैं और फिर डॉक्टर साहब से थोड़ी आगे की बातचीत करते हैं।

0: हाँ डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि ये वहां किसी तरह के कोई जीव जंतु नहीं है, कोई मानव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि वहां पेंगुइन्स हैं। तो अभी ये बताइए कि पेंगुइन्स ही क्यों इस भीषण ठंड में जीवित रह लेते हैं, और क्या क्या है वहां पेंगुइन्स के अलावा, कुछ उसके बारे में बताइए।
1: हाँ, वहाँ पे जब ऐसा ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ नहीं है।
0: जी
1: जिसको जैसे मैंने बताया कि आप भी जानते हैं कि ये जो एंटार्क्टिक है, ये चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। ये एक महाद्वीप और बहुत बड़ा आइलैंड भी मान सकते हैं आप। और इसके जो इसके जितने भी पृथ्वी के जितने भी ये महासागर हैं, वो सब वहां जाके वहीं वहीं जाके खत्म हो जाते हैं।
0: ओके, अच्छा।
1: तो उन जो इसके चारों तरफ का जो पानी, जो समुद्र है, उसको उन्होंने सदर्न ओशन कहते हैं। वो चाहे वो इंडियन ओशन हो, चाहे वो अटलांटिक हो, उसको एक जनरल नाम दे रखा है, सदर्न ओशन। उसमें काफी सारा काफी बायोडाइवर्सिटी है। उसमें व्हेल्स मिलती हैं और कई सारे वो मिलते हैं वहां पे, जो समुद्र जीव। लेकिन बात जब करते हैं एंटार्क्टिक की, तो एंटार्क्टिक के साथ सीधा संबंध है पेंगुइन्स का। अगर मतलब वो अगर वैसा कुछ इसको अगर डायरेक्ट अंटार्कटिक से क्या चीज याद आती है,
0: जी
1: तो पेंगुइन्स। और एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा यहाँ के, जो हम लोग जो ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि अंटार्कटिक किसका होना चाहिए, अगर हो किसी का होना चाहिए तो इनका पेंगुइन्स का होना चाहिए।
0: अच्छा
1: ये और बड़ी विशेष तरह के ये जानवर है, तो बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये उड़ नहीं सकते। मनुष्यों की तरह चलते हैं दो पैरों पर, और इनका सोशल सिस्टम होता है, और बड़ा अच्छा लगता है इनको देखना। आप इनके साथ में घंटों गुजार सकते हैं। और इनकी ये शोध, ये चूंकि मेरा विषय नहीं है, लेकिन लोग बता कहते इनके इनके इस ब्लड में कुछ वो है एंटी फ्रीजिंग तत्व हैं, जो
0: अच्छा
1: कि इनको इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में इनको जीवित रखते हैं। और मजे की बात यह सर कि वहां पे कोई शेल्टर नहीं होती, तो इन ये सब एक्सट्रीम कोल्ड में भी ओपन में रहते हैं।
0: तो चलिए, ये पेंगुइन वाला सवाल जो मेरे दिमाग में कई बार आता है, तो जब भी बात होती है एंटार्क्टिका की, कि आपका मतलब इनके ब्लड में ही ऐसी कोई खास बात है कि जिसकी वजह से एंटी फ्रीज उसके अंदर एलिमेंट्स हैं कि ये एक्सट्रीम कोल्ड में भी वहां रह लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि आप ने एक इतनी बड़ा टफ एक्सपेडिशन किया, दो दो बार एंटार्क्टिका आप हुआए, तो लाइफ के प्रति, अपने जीवन के प्रति, या अपने सहकर्मियों के प्रति, या अपने परिवार के प्रति, अगर ये सबको हम एक साथ रख लें, तो आपका जो आउटलुक है या जो नजरिया है या लाइफ की प्रायोरिटीज है, इसमें कुछ ऐसा चेंज आया है व्यक्तिगत रूप से आपको लगता है, आपकी सोच में, आपके विचारों में ऐसी कुछ बात है?
1: हाँ, कुछ चेंज तो निश्चित रूप से आया है। आपके वहां जाने के बाद, जब आप अपने आप को, जब आप बाहर आप जाते हैं वहां पे, तो प्रकृति का जो एक विशाल रूप जो आप देखते हैं, तब आपको ये एहसास होता है कि आप बहुत छोटे हैं, आप कुछ भी नहीं है। तो ये अपने गौण होने का जो एहसास है, ये वहां पे बहुत बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और दूसरा जो था कि जिसको कहते हैं कॉमरेडरी, या जो आपकी टीम वर्क, इससे बढ़िया उदाहरण कहीं पर भी नहीं है। एक शायद हमारी आपने शायद पूछा था, मैं बताना भूल गया, कि ये परिवार के बारे में, परिवार को कितना मिस करते हैं, कितना याद करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात वहां पर, कि वो इतना बड़ा परिवार वहां मिल जाता है कि आपको अपने परिवार की याद बहुत कम आती है। ये मतलब कभी ऐसा अवसर ही नहीं मिलता कि आपको अपने जो परिवार आपका हिंदुस्तान भारत में छूटा हुआ है, उसको याद करने का। वो कभी कोई उदास हो जाता है तो सारे लोग मिलके उस वो सब सबके सबके लिए सब, मतलब सबका काम हो जाता है। तो कभी कभी महसूस ही नहीं होता कि आप परिवार से दूर हैं। तो ये जो एक ये जो मतलब जब आप किसी बहुत कठिन परिस्थितियों में साथ रहते हैं, तो वो जो साथ है, वो जो जुड़ाव है, वो जीवन भर का जुड़ाव बन जाता है। ये एक जिसको कहते हैं हासिल वहां का जो है, ये भी है। और तीसरा ये था कि वो वहां पे सब बराबर हैं, क्योंकि अलग जब जो वैज्ञानिक हैं, वो अलग अलग श्रेणियों से आते हैं। कुछ डायरेक्टर के स्तर के हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, और कुछ हमारे ये जो थे वर्कर लेवल के भी लोग होते हैं, लेकिन उनको किसी तरह की कोई जो सुविधाओं में कोई कमी नहीं हो, सब बराबर होती है। सबको रहने की जगह बराबर है, सबकी खाने का हर चीज

0: इसमें सब बराबर, मतलब सब मेंबर्स हैं, उसकी कोई कोई छोटा बड़ा वहां नहीं है, और सबको सब काम करने हैं। आपको आपको कोई ये वो नहीं है कि आप बड़े डायरेक्टर हैं, आप प्रिंसिपल हैं, तो इसलिए आप ये काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सबको सब काम करने हैं। तो ये डिग्निटी ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क, डिग्निटी ऑफ लेबर, सब बहुत चीजें वहां पे। अब उसके बाद मुझे कोई काम करने में दिक्कत नहीं आती।
1: मजा आ गया। इसका मतलब एक तो डिग्निटी ऑफ लेबर है, सब लोग मिलके चीयर अप कर, जिसको विश्व बंधुत्व हम कहते हैं, वो एक फीलिंग आप लोगों में वहां आ जाती है। बहुत बढ़िया बात है डॉक्टर साहब, पता ही नहीं लगा आपने तो ऐसी यात्रा पर हमें ले चले, हमें समय का पता ही नहीं लगा और हम बातें करते जा रहे हैं लेकिन कोई ना कोई समय सीमा होती है। तो आज की इस बातचीत में इतना मजा आया है। तो डॉक्टर पंडित, आज की इस बातचीत ने हमें केवल एंटार्क्टिका के बारे में जानकारी नहीं दी, बल्कि हमें महसूस किया कराया कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में नहीं होता, विज्ञान साहस भी है, जिज्ञासा भी है, अनुशासन भी है और प्रकृति के प्रति विनम्रता भी है। आपकी बातों से ऐसा लगा मानो हम भी उस बर्फीले महाद्वीप पर आपके साथ चल रहे हैं। हमें विश्वास है आज का यह संवाद अनेक युवाओं के मन में साइंस रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के प्रति नई जिज्ञासा और नया उत्साह जगाएगा। रेडियो एसएन के सभी श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद, आपने अपने जीवन के इतने अनमोल अनुभव हमारे साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब।
0: थैंक यू वेरी मच, आपका भी मुझे एक बार पुनः उस यात्रा पे ले जाने के लिए। मैं जब भी वहां की बात करता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक बार पुनः वो सब चीजें जीवित हो जाती हैं। आपका विशेष आभार इस बात के लिए और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसको सुना, थैंक यू वेरी मच।
1: चलिए डॉक्टर साहब, हम आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, निरंतर सक्रिय वैज्ञानिक और जीवन की मंगल कामना करते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ आलोक कुमार मैं आपसे विदा लेता हूं, आप फिर मिलेंगे एक नए प्रेरक व्यक्तित्व के साथ, एक नई रोचक बातचीत के साथ। नमस्कार।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

दुनिया की क्या हालत है। दोस्तों, अगर आप अपनी नजर खबरों पर ले जाएंगे तो आपको हर जगह गिरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, विफल होती हुई कंपनियां और आपदाएं ही नजर आएंगी। इससे ये सोच लेना कि दुनिया खात्मे की ओर बढ़ रही है बड़ा आसान है। हालांकि सफल लोग इन सब की चिंता नहीं करते, क्योंकि वो उन सब चीजों में खुद को नहीं उलझाते जिन पर उनका बस ही नहीं चलता। इसके बजाय वो हर दिन का इस्तेमाल आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने और अपनी कोशिशों को बेहतर बनाने के लिए करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीजों पर ध्यान ही ना दीजिए जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बने रहिए आरजे समीर के साथ। दोस्तों, प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि प्रेम की भाषा गूंगे भी बोल लेते हैं और इसे बहरे भी सुन

0: बातें रिकी, इसकी तो हवाएं निकल गई। अब क्या होगा भैया?
1: सही जगह पे निकली है गोविंद, तो इसमें हवा भरवा ले।
0: अच्छा भैया।

गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिर की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार संता और उसका परिवार गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने कहा, अरे वाह संता जी, आप तो सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चला रहे हैं, शाबाश, आपको मिलता है ये 500 रुपए का इनाम। और उसने 500 रुपए दिए। अब आप ये बताएं कि इस 500 रुपए का क्या करेंगे? तो संता ने कहा, जी सबसे पहले तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूंगा। तो संता की माँ बगल में बैठी थी, उसने कहा, अरे इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये दारू पी के कुछ भी बोलता है। पिताजी पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, मुझे पता था हम चोरी की गाड़ी में बहुत ज्यादा दूर जा नहीं पाएंगे।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोचिए क्या होता अगर रजनीकांत 150 साल पहले पैदा होते। आजादी की लड़ाई अंग्रेजों को लड़नी पड़ती।
2: तो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था अभी तो।

संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला ही होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास

जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार है बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है जैकी श्रॉफ। जी हां, जैकी श्रॉफ जी का जन्म बॉम्बे में ही, जो कि आज की डेट में मुंबई है, हुआ था। इनका जन्म 1 फरवरी 1957 को हुआ था। लीजिए, पेशा खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। जैकी श्रॉफ जी ने 11वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद बस फिल्मों में आने की कोशिश में लग गए, और उसके बाद इतनी ढेर सारी फिल्में इन्होंने की कि बस मजा आ गया। इनकी शानदार पर्सनालिटी, इनके बोलने का अंदाज हम सभी को हमेशा याद रहता है। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं पर फिल्माया हुआ ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? कैसे हैं दोस्तों? आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

जैकी श्रॉफ जी ने कुछ टेलीविजन शोज भी किए, जैसे लहरें, चित्रहार एंड मिसिंग। वहां भी इन्होंने अपनी कलाकारी की छाप छोड़ी। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। भाई साहब, आपको पता है गूगल का जन्म कैसे हुआ? एक बार रजनीकांत सुबह सुबह उठे, उन्हें ख्याल आया कि अगर उनकी नॉलेज का 1% हिस्सा भी दुनिया को मिल जाए तो उनका भला हो जाएगा। बस गूगल का जन्म हो गया।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना दोस्तों? आज के कलाकार प्रोग्राम के कलाकार जैकी श्रॉफ जी का ये गीत

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। आइए सुनते हैं जैकी श्रॉफ जी के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकारा हैं हेलन। जी हाँ, हेलन जो बहुत प्रसिद्ध डांसर रहीं, एक्ट्रेस रहीं हमारी हिंदी फिल्मों की। हेलन का असली नाम है हेलन एन रिचर्डसन खान। जी हाँ, हेलन दरअसल एक क्रिश्चियन हैं। आइए उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत सुनते हैं।

0: श्रोताओं, हम स्वागत करते हैं महेंद्र गौतम जी का जयपुर से। गौतम भाई, जरा ये बताइए अदाकारा हेलेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: शी वॉज अ वेरी गुड डांसर एक्चुअली। उनकी केमिस्ट्री जो आयशा भोसले के साथ में है और उनके जो गाने हैं वो आपको वैसे ही थिरकने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो वो उनके गाने अपने आप में बहुत मजेदार गाने होते थे। आप थिरकते थे उनसे, आज भी थिरक उठते हो।
0: बेहतरीन बेहतरीन गौतम भाई, थैंक यू सो मच। गौतम, आपका बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

हेलन का जन्म 21 नवंबर 1938 को बर्मा में हुआ। उनके पिता की मौत वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हो गई, तभी उनकी फैमिली भारत में शिफ्ट हो गई। यहीं पर हेलन का करियर बॉलीवुड फिल्मों में शुरू हुआ। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

बड़ी ही मजेदार बात है कि एज एक्ट्रेस हेलन और उनके लिए गाना गाने वाली हमारी प्रसिद्ध गीत गायिका आशा भोसले जी की बेहद गहरी दोस्ती थी। आशा भोसले जी ने हेलन के करीब करीब सारे गाने गाए हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हेलन ने सलीम खान जी से शादी की, जिसकी वजह से वो सलमान खान जी की फैमिली से जुड़ी। यूं देखा जाए तो सलमान खान उनके सौतेले बेटे हैं, बट दोनों के बीच बेहद प्यार है। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हेलन को सबसे पहला बढ़िया ब्रेक हावड़ा ब्रिज नाम की मूवी में मिला, जिनका बहुत ही फेमस गाना है, बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, मेरा नाम चिंग चिंग चू। आइए दोस्तों सुनते हैं यही गीत।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि हेलन को ऐश्वर्या राय और अक्षय कुमार के साथ साथ पद्म श्री अवार्ड्स के लिए भी चुना गया। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: मैंने जब दरवाजा खोला ना भैया, तो उसकी आंखों में आंसू थे, सांसों में तेजी थी, दिल में बेबसी थी। परी ने पहले बताया ही नहीं कि दरवाजे में उसकी उंगली फंसी थी।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: जिंदगी तुझे कितना चाहा सराहा, जिंदगी तुझे कितना चाहा सराहा, मैंने तुझको प्यार किया, अब तेरी बारी है। कुछ एहसास कर, प्यार चाहे ना कर, पर ये बेरुखी तो छोड़ दे। नमस्कार, आदाब। जिंदगी को सुरों के चश्मे से देखने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, 90.8 FM पर यह है रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील, और मैं हूं आपकी

0: अपनी हमदम, आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय। आपके चहेते प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक में। दोस्तों, कभी कभी दूरियां सिर्फ मीलों की होती हैं, दिलों की नहीं। और इन दूरियों को मिटाने का सबसे खूबसूरत जरिया बनता है हमारे फोन का, वो एक सिंगल डायल टोन, जो किसी अपने की आवाज को सीधे हमारे कानों तक ले आता है। तो आज की ये शाम सुपुर्द है हमारी इसी अनमोल फैमिली के उन खास दोस्तों के नाम, जिन्होंने फोन के तारों के जरिए अपने दिलों के हाल और अपनी पसंदीदा गजलें हमसे साझा की हैं। कौन सा दोस्त किस शहर से हमारे साथ जुड़ा है, इस पर सस्पेंस का पर्दा रहने ही देते हैं। सुरों का ये कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, यादों के ये पन्ने खुद ब खुद खुलते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वक्त को यहीं थामते हैं और मिलाते हैं आज की शाम की पहली सुरीली घंटी। ट्रन ट्रन सुनते हैं ये बातचीत।
1: हाँ जी, बोलिए।
2: हेलो मोहन सर, कैसे हैं आप? पहचान लिया ना, मैं रेडियो एफएम से आरती रॉय बोल रही हूँ।
1: वेरी नाइस, आई एम ऑनर्ड, बहुत खुशी हुई आपसे बात हो करके।
2: अपने प्रोग्राम अल्फाज से है सास तक के लिए मोहन सर, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम खास तौर पर गजलों और नज्मों का एक रूहानी सफर है। और आज हम सजा रहे हैं आप जैसे अजीज दोस्तों के लिए एक बेहद खास फरमाइशी प्रोग्राम। तो जब फरमाइशी प्रोग्राम की ख्याल दिल में आया, तो जब दोस्तों के पसंद की बात आती है, तो मुझे सबसे पहले ख्याल आपका ही आया और मैंने तुरंत आपको फोन कर दिया।
1: वेरी नाइस, मैं तो धन्य हो गया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें यहाँ याद किया।
2: तो मोहन सर, ये बताइए कि आपका पसंदीदा गजल सिंगर कौन है?
1: सॉरी, वर्ड ब्रेक हो रहा है
2: जी।
1: जी हाँ, बोलिए।
2: हाँ, आपका पसंदीदा गजल सिंगर कौन है?
1: अच्छा, कई गजल हैं, लेकिन उसमें खास तौर से मुझे पसंद है सुरेश वाडकर का गाया हुआ, सीने में जलन।
2: अरे वाह।
1: आंखों में तूफान क्यों है, ये पसंद है।
2: वेरी नाइस, बहुत बहुत जबरदस्त चॉइस है आपकी, वाह। आई वॉज एक्सपेक्टिंग के आप भी बोलेंगे जगजीत सिंह की, गुलाम अली की या मेहदी हसन साहब की, मगर आपकी तो पसंद आपकी तरह ही बहुत मुख्तलिफ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस मोहन सर। अच्छा, आप ये तो बताइए कि ये इस तरह की गजल आपको क्यों पसंद है?
1: तो है, ये शायर है, उसका नाम है रफीक। बहुत ऐसे कुछ कॉम्पोजिशन नहीं है, लेकिन ये जो है ना, सच्चाई को उन्होंने इसे लिखा है। आप किसी भी शहर में देख लीजिए, लोग BMW में जाते हैं, मर्सिडीज में जाते हैं, लंबोर्गिनी में जाते हैं, उनकी आंखों की तरफ देखिए, एक परेशानी है लोग। और सवेरे उनका जो काम होता ना, जैसे यंत्र जैसे होता है, कोई लगाव नहीं है, मन नहीं है जो करते हैं। तो इसीलिए उसमें उस गजल में एक शेर है, क्या कोई नई बात नजर आती है मुझ में, आईना हमें देख के परेशान हमें देख के हैरान सा क्यों। मुझे अपना चेहरा नहीं लगता है। ये जो शहर की जो परेशान, हम लोग काम कर रहे हैं सवेरे 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक काम कर रहे हैं, इधर से उधर दौड़ रहे हैं, काफी पैसा हमारे साथ पास है, और कहने को जिंदगी में काफी कंफर्ट है, कुछ कमी है। ये जो रफी को जो शायर ने, मैं ये जो इसमें जो प्रकट किया है, मुझे वो बहुत है, वो बहुत टच किया, मुझे छू लिया उस।
2: बहुत सुंदर, बहुत।
1: शहर में जाइए, ये हालत है, देयर इज नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, दे आर रनिंग।
2: मगर ये गजल तो सुरेश वाडकर साहब की है ना?
1: हाँ, सुरेश वाडकर ने गाया है, कंपोजर है रफीको।
2: अच्छा,
1: अगर जो लिरिक्स है रफीको की, रफीको इज द नेम ऑफ द पोएट।
2: ओ आई सी ओके ओके ओके
1: ओके रफी
2: इसके इसके अंतर में आता है ना
1: कि ये कौन सी मंजिल है
2: नाउ आई गॉट इट रफी को यस यस नाउ आई गॉट इट थैंक यू सो मच मोहन सर थैंक यू सो मच अपनी पसंद बताने के लिए तो आइए हम आपकी इतनी उम्दा गजल को अपने सुनने वाले दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और उनको भी सुनाते हैं और आप भी सुनिए थैंक यू सो मच मोहन सर
1: माय प्लेजर
2: बाय
1: बाय बाय

0: नमस्ते दोस्तों, ये थे चेन्नई से हमारे बेहद सम्मानित और आदरणीय मोहन सर। मोहन सर सिर्फ हमारी रेडियो SN फैमिली के गौरव नहीं हैं, बल्कि वो RBI के रिटायर्ड जनरल मैनेजर रहे और एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, जो वेदांत और गीता पर अपने लेक्चर से लोगों की ज़िंदगी रोशन करते हैं। सच कहूँ तो मोहन सर, इस गज़ल का जो अकेलापन और जो रूहानी माहौल है, उसे आपकी इस पसंद ने हमारे दिलों में जिंदा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चेन्नई के इस बेहद संजीदा और शानदार आगाज़ के बाद आइए देखते हैं कि हमारी अगली घंटी कहाँ बजती है और कौन से हमारे दोस्त अपनी दिलकश पसंद के साथ हमसे जुड़ने जा रहे हैं। सुनते हैं ये अगली कॉल।
1: हेलो
2: हेलो यतिन जी, दिस इज आरती रॉय, पहचाना?
1: हाँ जी, हाँ जी, पहचान लिया।
2: मैं रेडियो SN से बोल रही हूँ, अपने प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक से। तो
1: ओके, दैट्स नाइस टू नो।
2: तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम खास तौर पर गजलों और नज्मों का एक रूहानी सफर है आज।
1: हाँ,
2: और आज हम सजा रहे हैं आप जैसे अजीज दोस्तों के लिए एक बेहद खास फरमाइशी प्रोग्राम। तो मुझे फिर आपकी याद आई, क्योंकि आप तो हमारे SN रेडियोज के बहुत खास मेंबर हैं और आपके तो कितने प्रोग्राम्स आ चुके हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यतिन से उनकी पसंद की गजल के बारे में पूछा जाए। तो आप ये बताइए कि आप का सबसे पसंदीदा गजल सिंगर कौन है?
1: मेरे सबसे पसंदीदा जो गजल सिंगर है वो है अरिजीत सिंह जी।
2: ओके,
1: टॉप गजल साउथ इंडिया की।
2: तो आपके जगजीत सिंह जी फेवरेट गजल सिंगर हैं। तो अब आप ये भी बताइए यतिन जी कि जगजीत सिंह की आपको सबसे ज्यादा फेवरेट गजल कौन सी लगती है आपकी?
1: जगजीत सिंह जी के तो सारे गजल
2: आई नो चॉइस करना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी कोई तो दिल के बहुत करीब
1: होते हैं। उसमें that movie, because सारे गाने उनके ही थे and उनमें से सारे अच्छे लगे, लेकिन सबसे खूबसूरत मुझे लगा तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो।
2: अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत उम्दा चॉइस है आपकी यतिन जी, आई मस्ट से मेरी भी ये बहुत फेवरेट गजलों में से है। ये तो बताइए यतिन जी, इतनी अच्छी गजल आपको इतनी अच्छी लगती है, कोई तो वजह होगी, अगर आप हमारे साथ, हमारे दोस्तों के साथ, सुनने वालों के साथ अगर शेयर करना चाहें तो।
1: जैसे मैंने कहा कि सारे गजले अच्छे लगते हैं, मतलब आंख बंद करके सुनने में इतनी सुकून मिलती है ऑफ करके या आंख बंद करके। नाउ जनरली गजल जो है वो थोड़ा सैड मेलेंकोलिक ऐसे मूड में होते हैं, जो एक्चुअली दिल को मतलब सुकून भी दिलाते हैं, लेकिन थोड़ा आपको भी हो सकते हैं। लेकिन ये तुम इतना मुस्कुरा रहे हो जो है, उसमें अल्फाज ऐसे हैं कि दे एक्चुअली मतलब शी इज क्राइंग बट ही इज ट्राइंग टू चीयर हर अप एवरी स्टैंड से ही गिव्स अ रीजन कि क्यों क्यों दुख से पूरा के जिंदगी जीना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये मतलब सबसे आई लाइक टू बी पॉजिटिव, आई लाइक टू थिंक पॉजिटिवली अबाउट द फ्यूचर।
2: बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत जवाब है आपका। सारी बातें तो इमोशंस की होती है ना यतिन जी, कि हम कई बार अपनी इमोशंस जो हैं गा के गजलों के थ्रू ही हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपका भी ख्याल उसी तरीके का है और आपकी पसंद भी बहुत उम्दा है। थैंक यू यतिन जी, हम आपकी ये गजल अब अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, उन्हें सुनाते हैं और आप भी सुनिए। थैंक यू सो मच।
1: मुझे कॉल करके पूछने के लिए थैंक यू
2: थैंक यू थैंक यू, बाय
1: बाय।

0: जीत सिंह साहब का वो अमर अंदाज हमेशा सीधे दिल पर दस्तक देता है। तो दोस्तों, ये थे बेंगलोर से हमारे बेहद गुणी दोस्त यतिन नाटकर्णी जी। यतिन जी सिर्फ रेडियो SN फैमिली के चमकते सितारे नहीं हैं, बल्कि वो एक बेहतरीन सिंगर भी हैं। सबसे खास बात ये है कि वो कई जुबानों के बहुत बड़े माहिर हैं और उन्होंने अलग अलग भाषाओं में गाने गाए हैं और उनके प्रोग्राम में भी उन्होंने उतने ही भाषाओं में गाने गाकर हमको एकदम से क्या बोलते हैं उसको हैरान कर दिया। यतिन जी जगजीत सिंह साहब की इस खूबसूरत पसंद को आज की महफिल में शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, बेंगलोर की इस हसीन शाम से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेलीफोन की ये सुरीली घंटी अब किस शहर में बजने जा रही है और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है। आइए सुनते हैं ये अगली कॉल।
1: हेलो।
2: हेलो अनीता।
1: हेलो आती जी,
2: कैसी हो?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
2: ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं रेडियो SN से इस वक्त अल्फाज प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक से बात कर रही हूँ अनीता। और जैसे कि आप जानते ही हैं, ये हमारा गजलों का खसूसी प्रोग्राम है और ये वाला प्रोग्राम हम फरमाइशी प्रोग्राम बना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अपने अजीज दोस्तों को फोन करके उनकी पसंद के बारे में पूछा जाए और फिर मुझे तुम्हारा भी ख्याल आया, क्योंकि तुमने भी उस दिन बोला था कि आपकी पसंद की गजल आप सुनाना चाहती हैं, तो इसलिए मैंने आपको फोन किया। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका पसंदीदा गजल सिंगर कौन है?
1: थैंक यू आरती, थैंक यू सो मच। मैं SN रेडियो सुनती हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है, स्पेशली गजल का प्रोग्राम तो आप बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हो। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लाइक समझा।
2: दोस्तों के लिए एनीथिंग।
1: आपने मेरी पसंद को नजर किया आपने। मेरी फेवरेट पसंद एक्चुअली, मैं वैसे तो गजल कम सुनती हूँ, बट जो मुझे तलत महमूद जी हैं उनकी गजल मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली जो गम की कसम आज है रहा है ना, श्याम गम की कसम आज है रहा है आज मेरे सनम, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत जब सुनती हूँ ना एकदम पता नहीं छू जाती है देख।
2: तो आपने अपनी पसंदीदा गजल गायक के बारे में बताया, आपने उनकी गजल भी बताई, शाम गम की कसम आज गमगीन हैं हम आभिजा भिजा आज मेरे सनम, और बहुत सुंदर आपने गाया। और ये गजल आपको क्यों पसंद है?
1: थैंक यू सो मच आरती जी, थैंक यू।
2: ये गजल आपको इतनी क्यों पसंद है अनीता?
1: आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है, मे बी कुछ इंटरनेट इश्यू होगा।
2: हेलो, आपको ये गजल क्यों पसंद है?
1: बस जब भी कभी तन्हा बैठे हो, कोई आसपास नहीं हो, तो अपनी पुरानी यादों में खो और बस।
2: अच्छा।
1: तब बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनना ना।
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: तन्हाई का साथी है ये गजल हमारी।
2: अरे वाह। गजल होती ही ऐसी है, हमेशा तन्हाई की ही साथी होती है अमूमन, आमतौर
1: पे।
2: तो थैंक यू अनीता, इतनी अच्छी आपकी पसंद हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अब हम आपके साथ और सब दोस्तों के साथ सुनते हैं ये गजल, शामे गम की कसम आज गमगीन है हम।
1: ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू,
2: थैंक यू एंड बाय
1: बाय।

0: भीजा आ भीजा आज मेरे सनम शामे गम की कसम। साल 1953 में आई फिल्म फुटपाथ का ये नगमा और तलत महमूद साहब की वो मखमली कम कपाती आवाज वाकई एक गुजरा हुआ हसीन जमाना आंखों के सामने तैर जाता है। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली से हमारी बेहद प्यारी अनीता गुलाटी जी। अनीता मेरी सिल्वर विंग्स के ज़माने की बेहद पुरानी और अजीज दोस्त है। यू अब रेडियो SN फैमिली का भी हिस्सा बन गई हैं। अनीता जी, आपकी पसंद हमेशा की तरह बहुत ही लाजवाब और ऐतिहासिक रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली की इन सुरीली फिजाओं के बाद आइए देखते हैं कि अगला पड़ाव कहाँ का है और कौन से हमारे दोस्त अपनी फरमाइश लेकर लाइन पर हैं। सुनते हैं ये अगली कॉल।
1: हेलो हेलो विनोद सर।
2: हाँ जी, नमस्कार।
1: मैं आरती रॉय बोल रही हूँ अपने प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक से रेडियो SN से।
2: वेलकम जी, वेलकम।
1: आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है ना?
2: ये आ रही है जी।
1: तो जैसा कि आप जानते हैं विनोद जी कि हमारा प्रोग्राम गजलों का खास प्रोग्राम है, तो अब हमने गजलों का प्रोग्राम फरमाइशी प्रोग्राम बनाने की हमने सोची। तो विनोद जी, मुझे आपका भी ख्याल आया कि क्यों ना हमारे विनोद जी जो कि इतने अच्छे गजल गाते भी हैं और उनको पसंद भी हैं, तो उनसे बात की जाए। तो इसलिए मैंने आपको फोन किया आपसे ये जानने के लिए विनोद जी कि आपकी पसंद का सबसे पसंदीदा गजल सिंगर कौन है?
2: मुझे दिलजीत सिंह जी के सारी गजल अच्छी लगती हैं और इसके अलावा लता की जो कंपोजिशन में है मदन मोहन जी की, वो मुझे सारी बहुत पसंद है।
1: तो आप ये बताइए कि आप अपनी पसंद की कौन सी गजल सुनना चाहेंगे?
2: मुझे ये फिल्म आई थी आपकी परछाइयाँ, इसमें मदन मोहन जी का कंपोजिशन था और लिरिक्स थे राजा मेहंदी अली खान के।
1: वेरी नाइस।
2: अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, ये मुझे बहुत पसंद आती है।
1: लता जी की आवाज में?
2: हाँ जी, लता जी की आवाज में।
1: अरे वाह, बहुत उम्दा चॉइस है आपकी विनोद जी। पर ये तो बताओ कि आपको ये गजल पसंद आने की कोई खास वजह?
2: ये इसमें कही है, एक तो लता जी ने बहुत अच्छा गाया और फिर इसमें जो म्यूजिक दिया मदन मोहन जी ने, दैट इज आल्सो मार्वेलस।
1: हाँ जी।
2: जो लिरिक्स लिखे हैं राजा मेहंदी अली खान जी ने,
1: सोने पे सुहागा,
2: जबरदस्त है। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि सब जी का अच्छा कंट्रीब्यूशन है इसके लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल।
2: हाँ जी,
1: आपका इसको पसंद करने का जो वजह है वो बिल्कुल माकूल है, माकूल है। तो विनोद जी, थैंक यू अपनी पसंद हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आइए अब बाकी के दोस्तों के साथ और सुनने वालों के साथ सुनते हैं फिर आपकी गजल।
2: ओके, बहुत
1: पसंद की गजल। क्या बोला आपने? अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे,
2: अपने गम दे दो, इन आंखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे,
1: कसम दे दो। बहुत सुंदर। ओके विनोद जी, थैंक यू सो मच। बाय
2: बाय।

0: मदन मोहन साहब की वो अमर धुन राजा मेहदी अली खान साहब के लिखे जज्बात और लता जी की वो पाकीज़ा आवाज़ वाकई अंदर तक रूह तृप्त हो जाती है। दोस्तों, ये थे हमारे बेहद उम्दा गायक और संगीत के गहरे पारखी विनोद साहब। विनोद जी मुझे सिल्वर विंग्स के दिनों से जानते हैं और जब भी संगीत की बात होती है उनकी पसंद हमेशा सबसे नफीस होती है। फिल्म आपकी परछाइयाँ की इस अनमोल गज़ल को आज हमारी महफिल का हिस्सा बनाने के लिए विनोद जी आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है आप हमारी महफिल का हिस्सा बने। अब इस सुरीली महफिल के आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं दोस्तों। एक ऐसी सहेली जो संगीत को अपने भीतर जीती है और बहुत ही मीठा गाती है। और आपको ये भी बता दूं कि मुझे इस SN फैमिली से इंट्रोड्यूस कराने वाली भी वही हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं अहमदाबाद और सुनते हैं आज की ये आखिरी कॉल। थोड़ा गेस वर्क कर लीजिए, बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा।
1: हेलो
2: हेलो
1: हाँ हेलो
2: हेलो सुधा,
1: हाय डियर,
2: हाउ आर यू, कैसी हो आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हो?
2: मैं ठीक हूँ सुधा। मैं रेडियो एसेंस से अपने प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक से आपसे बात कर रही हूँ। और आज हमने, आप जानती ही हैं हमारा गजल का प्रोग्राम है मेरा, तो आज हमने फरमाइशी प्रोग्राम के लिए सोचा, तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया कि तुम्हारी पसंद की गजल भी चलाई जाए इसमें प्रोग्राम में। और हम जानना चाहते हैं सुधा कि आपका पसंद की आपकी कौन सिंगर हैं, गजल सिंगर?
1: जी, मेरी फेवरेट है बेगम अख्तर साहिबा।
2: अरे वाह, क्या बात है, बेगम अख्तर। देखिए दोस्तों, ये हमारी सुधा जी हैं और इनकी पसंद देखिए कितनी नफीस है। इनकी पसंद की जो गजल सिंगर हैं वो बेगम अख्तर हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और सुधा, आपको इनकी कौन सी गजल या नज़्म सबसे ज्यादा पसंद है?
1: जी, मेरे हम नवाज, मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मेरे हम नफस, मेरे हम नवाज। ये मेरी बहुत फेवरेट है।
2: ओ माय गॉड, सुना दोस्तों आपने, सुधा जी ने कितनी अपनी पसंद को कैसे हमें बताया है गा के। वेरी नाइस, सुधा जी इतना अच्छा गाती हैं, आज इस बात का आप सबको भी पता चल गया होगा। तो सुधा, आप ये बताओ कि ये गजल आपको इतनी पसंद क्यों है, कोई खास वजह है?
1: बिल्कुल, आती ना इसके, देखो बोल कितने सुंदर है, इसकी तर्ज कितनी सुंदर है, और बेगम अख्तर साहिबा ने क्या बढ़िया गाया है। सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बहुत पसंद है मुझे।
2: ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सुधा, थैंक यू फॉर सिंगिंग द लाइन फॉर अस। और दोस्तों चलिए फिर आइए अब सुधा जी की पसंद पर सुनेंगे ये बेगम अख्तर साहिबा की यही गजल। और ठीक है सुधा, थैंक यू सो मच, बाय।
1: थैंक यू आरती, बाय
2: बाय।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ।

0: सब साफ थाई जाए
1: साफ थाई जाए।
0: तो फसल ने कोई नुकसान नहीं थे।
1: अगर मान लो अपनी उनाला में गहरी खेड़ाई कर नाखी थे तीन माँ जो कीटाणु से जो कई प्रकार ना जीव जंतु मरी जाते बाद में सुमाने टाइम पर तीन माँ हूँ लाभ थाय
0: तीन माँ अपन इतना लाभ थाय कि दवा ज्यादा उपयोग नहीं करवी पड़े
1: ज्यादा दवा नहीं छिड़कवी पड़े
0: नहीं छिड़कवी पड़े एक थी दो बार बस क्या तीन बार चार बार और कहीं ना हो क्योंकि मैं पांच बार ना की नहीं नहीं इमा फिर नुकसान थाई जाए।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ ज्यादा दवा छिड़कवा थी नुकसान थाई जाए
1: नुकसान था तो लागत ज्यादा लागी जाए।
0: हाँ ज्यादा लागत लागी जाए तो एक थी दो बार
1: नाखो
0: मैं तो सोया बीज पक जाता
1: पक जाता। तो हकरू भाई ये बता कि इनमा तीन साल में कितना साल में एक बार गहरी जुताई भी करनी पड़े
0: तीन साल में
1: तो तीन तीन लाभ था
0: तीन से जमीन टूटी जाए और गहराई में मतलब जमीन भी थोड़ी के दो दो साल तक तो अपन घास भी ज्यादा नहीं होगा निंदवा में थोड़ा फायदो पड़े।
1: अच्छा अच्छा
0: और जमीन भी पोसी रहे और पेड़ भी अच्छा जमता है
1: तो
0: फल ज्यादा दे
1: फल ज्यादा दे। अच्छा हकरु भाई ये बता कि फसल और बाद में किसान भाई ने जो तमें आप ये फसल हो रही हो तो तीन में सोयाबीन नु बी घेर नु आणियो के बाजार में तो आणियो
0: वो तो बी पसाड़ी से।
1: अच्छा अच्छा
0: अपन मन प्रसन्न पड़े तो थोड़ो छोटा छोटा दाना हो घेरना तो नहीं और वो नुकसान थाई जाए कभी असल लावे और बाजार थी ले आवो तो बाजार थी लावो तो मतलब अपन पैसा लागे घेर थू घेर नु बी होए।
1: हाँ हाँ तो किसान भाई ने खर्चो कम लागे
0: किसान भाई ने खर्चो कम लागे केम के बी ना पैसा वसी
1: पैसा वसी है। तो किसान भाइयों हकरु भाई ने कहू से कि किसान भाइयों ने आप किसान से तो किसान बी कोई बाजार में नहीं बनी रहते तीन हारू किसान भाई ने बी हारू अलग थी सालनो मारी तेनु अवेरी मेलवू जोई
0: अवेरी मेलवू जोई
1: ताकि किसान भाई ज्यादा तीन फायदो मिली सके
0: ज्यादा फायदो।
1: हाँ तो हकरु भाई ये बताड़ कि जो आप ये तो थाई की अपनी बीनी बात इन्हीं बात में ये बताड़ कि तू जैसे आप खेतर खेड़ी रहा तो तेना पाटला कितरे कितरे सेटी रहवा जाए
0: पाटला लगभग डेढ़ वो सोया बीज का तो एक फीट
1: एक फीट न रहवा जाए।
0: हाँ
1: अच्छा अच्छा
0: तो और कपास बो।
1: हाँ
0: तो कपास में लगभग तीन फीट नो पाटलो सी।
1: तो आपने मक्की ने अने सोयाबीन ओरी मिली ते मक्की ना ओलिया काटी मिले तमी
0: ओलिया काटी
1: ते केतरा सहाड़ा सोयाबीन ना के तीन बाद में केतरा मक्की ना
0: चार सहाड़ा सोयाबीन ना और एक मक्की ना।
1: अच्छा अच्छा तो तीन थी आपने किसान भाई ने जैसे सोयाबीन नानू रहते है तो तीन में हूँ लाभ था मक्की जे निकली जाए तीन बाद में कई
0: तीमा मतलब एम था मक्की नो सहाड़ो जो से नी डोडी भी मजबूत रहे।
1: अच्छा अच्छा
0: डोडी मतलब कितनी भी हवा आवे पड़वा नहीं मांगे।
1: अच्छा
0: तो मक्की ने नुकसान दे और सोयाबीन
1: ने नुकसान नहीं था बेहद फायदा से
0: दो फसल एक सरी किया।
1: अच्छा अच्छा तो इन्हीं बात में आप बात करिए कि हकरु भाई की अपन निंदाई गुड़ाई नहीं बात करिए अगर निंदाई गुड़ाई नहीं बात करिए तो निंदाई गुड़ाई हारू की कम करवो जाए
0: निंदाई गोडाई हारू तो एक महीना अंदर अंदर निंदी गोडेन साफ सफाई कर देवानो अनाज ने।
1: अच्छा अच्छा अगर किसान भाई घना करा किसान भाई बाजार ने दवा लाने भी साटी रहा से तो
0: बाजार ने दवा लावा थी तो थोड़ोक नुकसान भी से जमीन माता ने।
1: अच्छा अच्छा
0: मारे इतना साल था ये हूँ फसल करी रहो से हूँ भी नानो किसान से बड़ा किसान नहीं हूँ।
1: हाँ हाँ
0: पर आज तक मैं सारा नहीं दवा जमीन पर आज तक टपकू नहीं पड़वा दे और घना लोग लावे साटी रहे पर तेमा थोड़ी फसल वगड़वाम जाए से कम लाई जाए फिर पासो ताकत धरे तीनी दवा लावे छिटकारो मारवो पड़े तो पासी ताकत धरे और आप दाड़किया ले ली ने दाड़किया मा से
1: मोहगू पड़ी जाए।
0: हाँ मोहगू पड़ी जाए
1: तो मतलब फसल ना उत्पादन ने लागत करता अपने निंदाई गुड़ाई में खर्चो ज्यादा था
0: खर्चो ज्यादा था।
1: तो हकरु भाई एक बात ये भी है कि अगर तुम ये भी बात कह दी कि अगर आप सारू कम करूँ तो उनाला ने खेड़ भी काफी ज्यादा मार ले
0: काफी बिल्कुल उनाला में खेड़ मार लो तो सारो नहीं था
1: सारो नहीं था
0: नहीं था।
1: तो किसान भाइयों महंगी दवा लावा ने बजाय आप उनाला ने खेड़ ज्यादा
0: मार दो
1: तो थोड़ा घणु सारू वसे ती निंदण में
0: साफ
1: साफ थाई जाए
0: साफ थाई जाए ज्यादा पैसा नहीं लागे आप निंदाई गोडाई ना।
1: तो हकरु भाई ये बताड़ कि आप हाउ इनमें जो सुमाहमा मान लो कि हमने तो सुमाहा की खेती में सोयाबीन और मक्का करी मेली, पर मान लो अगर कोरड रही गई तो किसान भाई ने हूं करूं जाइए?
0: अगर कोरड रही गई
1: जिना किसान भाइयों कन पानी नी व्यवस्था,
0: जिना कन पानी नी व्यवस्था है जो पानी वाल फेर दे, अगर नी व्यवस्था है तीन बेचारा नुकसान से।
1: हाँ वो तो फिर ठीक है, पर अधिकतर एम देखी जाए कि आप घना वारी एम से कि अगर ज्यादा पानी पड़ी जाए तो हूं करूं जाइए?
0: ज्यादा पानी पड़ी जाए तो ओवणो निकाल दो, उसको पानी का निकास कर दो डोबणा माथी, तो पानी खिसाई जाए।
1: हाँ
0: तो अनाज ने नुकसान नहीं था,
1: नुकसान नहीं था,
0: नहीं था।
1: तो इन्हीं बाद में अगर देखी जाए तो घनी कई नहीं, अभी हमने कई सोयाबीन में कई कई बीमारी अभी आवे से, जैसे बीमारी नो की कम इलाज करो,
0: बीमारी नो इलाज है दवा लावीन छिटकार दो,
1: दवा छिटकावानी,
0: दवा छिटकार दो, कहीं पापड़ी ने कोर दे, पायड़ा ना नुकसान आवी जाए, एक बारी दवा नो छिटकारो मार दो तो
1: साफ थाई जाए,
0: साफ थाई जाए।
1: तो हमने अपना सोयाबीन में कई बीमारी दिखाई रही हल्की पतली कई कीड़ है?
0: हाँ कीड़ है हल्की पतली, पर बरसात के टाइम में है।
1: हाँ
0: बरसात में जीव जंतर मरता नहीं है, तो थोड़ा तड़को नकलो एक बारी साट दो तो
1: साफ थाई जाए। तो मतलब क्या ना, मतलब ये कि पानी पड़ता हो तीन टाइम पर अपन दवा नहीं साटवी, थोड़ा हल्का तड़का में साटवी,
0: तड़का में साट
1: तो जो कीड़ है ते भी मरी जाए,
0: ते भी मरी जाए,
1: अने मक्का में भी कीड़ हो ते भी साफ थाई जाए,
0: साफ थाई जाए।
1: तो बात देखी जाए तो अगर आप मिश्रित खेती करी मेली तो इन्हीं हाथे हाथे अपने मक्की भी से, तो मक्की में हमने मुवो है तो मुवा हारू कम करवो जाइए किसान भाई ने?
0: मुवा हारू ते मनाकोटा,
1: मोनोकोटा,
0: मोनोकोटा,
1: मोनोकोटा
0: एक बारी छिटकारो मार दे मुवा नो नाम नहीं रहे,
1: नाम नहीं रहे
0: खत्म।
1: तो ये मोनोकोटो एक ढोलका में केतरा नाखवी जाइए?
0: एक ढोलका में एक ढक्कन,
1: एक ढक्कन,
0: एक ढक्कन
1: 50 ml नो,
0: 50 ml एक ढक्कन में लगभग कम से कम आधा वीगो पुगी जाए,
1: आधा वीगो पुगी जाए। हाँ तो हकरू भाई ये बताड़ कि मान लो कि हमने सोयाबीन ने फसल आप जो खेती करी रहा से, तो इन्हीं खेती में आपने फायदों से या नुकसान है?
0: अभी तो फायदा है, अगर सोयाबीन कट गया ना बरसात आ गई तो नुकसान, उसके लिए तो बरसात ही लाना पड़ेगा। तो अपने बचत करवी हो अपना अनाज नहीं सोयाबीन ने वसाड़ू हो तो बरसात ही लावी पड़े, अगर कटी गई ने बाद ढीक वाले ऊपर बरसात ही नाख दो तो वसा था जाए, अगर बरसात ही नहीं हो तो पूरा नुकसान हो,
1: नुकसान था जाए,
0: नुकसान।
1: तो आपने ये कहूं से किसान भाइयों की हकरुभाई ने ये कहूं से कि सोयाबीन जेर पाकवानी अवस्था था जाए एंड सोयाबीन पाकवा मंडी जाए, तो एवा टाइम पर किसान भाई ने पहला थी बरसाती नी व्यवस्था कर देवी चाहिए, अने बरसाती नी व्यवस्था निहार करवी कि आपकी साल भर नी फसल रहे तीन बड़ी मेहनत थी आपकी फसल लगाड़ी अने तीन फसल ने एक पानी आ जाए तीन मा त्या खत्म था जाए,
0: खत्म था जाए।
1: अच्छा अच्छा
0: ज्यादा से ज्यादा
1: किसान भाइयों ने ज्यादा से ज्यादा अगर उपज ले तो हूं करवा जाइए किसान ने?
0: किसान ने गोभी, गोभी और मिर्ची,
1: मतलब सोयाबीन निकले बाद में।
0: हाँ
1: हकरू भाई ये बताड़ कि अगर सोयाबीन की खेती अगर किसान करे तो माड़वा में पाके एवी करवा हारू, मतलब तीहनी जमीन अपनी जमीन में भी आप ज्यादा से ज्यादा पकड़ी सके तीन हारू किसान ने हूं करवा जाइए?
0: तीन हारू खातर ना उपयोग वारे करवो जी।
1: अच्छा
0: गोबरिया खातर,
1: गोबरिया खातर ना।
0: हाँ
1: अने
0: तो किसान बराबर भी आप माड़वा ने जमीन बराबर आप पकड़ी
1: पकड़ी सके,
0: पकड़ी
1: सके। अच्छा अच्छा तो आपन इनमा मतलब सोयाबीन ने फसल में अगर बीमारी आती है तो आप देसी दवाई नो उपयोग करिए तो कहीं ना कहीं बनाई सके? कि
0: देसी दवा नो उपयोग बनावो हो तो ओहड़ा नी जेड़ी, ओहड़ा न साल और लिमड़ा ना पत्ता, उसको ताजो कूसी लो, कूसी ने एक दो घंटों उसका कई तपेला हपेला में गाड़ लो, तो पहले हम गाड़ ले दो इन्हें बाद फिर तुम छिटकारो मार दो, एक जीव जंतर खेती में
1: नहीं आवे।
0: हाँ
1: तीन थी पाकेलो धान भी मतलब
0: कई नुकसान नहीं था, कोई नुकसान नहीं,
1: बाजार थी लावी ना साटी इनमें हूँ नुकसान,
0: इनमें नुकसान से
1: हूँ नुकसान था,
0: इनमें बाजार थी लावी एक पैसा भी अपना खोटा जाए।
1: हाँ, एक तो पैसा अपना बगड़
0: पैसा जा रहा है ना
1: बराबर।
0: हाँ एक तो पैसा भी जा रहा और फिर तीन बाद आपने अगर जीव जंतर कभी मरियो मरियो नहीं मरियो तो तीमा भी नुकसान से।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ, नहीं
1: दवाई पर कोई भरोसा नहीं,
0: दवाई पर कोई भरोसा नहीं। हमारा डेट सुखे अपन दवा मिलेगी,
1: एक्सपायरी डेट वाली दवा भी वैसी दे।
0: हाँ,
1: हाँ, देते है, नहीं काम करे,
0: ये नहीं काम करे।
1: अच्छा, अच्छा।
0: आपको नुकसान से।
1: हाँ, तो आप मान लो बाजार से दवा लेवा जा रहा था, आपन फानी कई कई चीज ने अपन ध्यान रखनी चाहिए।
0: अपन बस एक डेट देखवी,
1: डेट देख
0: कई नहीं, डेट नहीं से।
1: हाँ,
0: जीव जंतर मरियो की नहीं मरियो।
1: हाँ,
0: ये जरूरी ध्यान
1: देवी, केतरी मात्रा में नाखू,
0: केतरी मात्रा में नाखू ये भी ध्यान देवी। ज्यादा मात्रा में न खाएगी फिर भी नुकसान, कम में न खाएगी तो भी नुकसान, माफसर नाखवी पड़े,
1: माफसर नाखवी। तो अकरू भाई ये बता कि घना खरा किसान भाई अपना एम करे कि जैसे टंकी में पहली दवा साटेली रहती है अलग प्रकार नहीं रहे,
0: अलग
1: आने तीन टंकी ने धोवे नी, तीन बारा में कई कहवा मांगे
0: नुकसान थे,
1: तीन थी नुकसान थे,
0: तीन थी नुकसान थे, धान बढ़ी जाए કેમ કે ઉસકે કીટાણુ મહી રહે ને,
1: મહી રહે બીજી દવાના,
0: બીજી દવાનું કીટાણુ રહે, આપું બીજી દવાથી ને ટંકીમ ઘોળ દઈ તો તેમાં નુકસાન થાય,
1: તે અબડાઈ જાય, મતલબ ફટી જાય,
0: ફટી જાય,
1: દવા ભી કામ નહીં કરે,
0: દવા કામ નહીં કરે, અનાજ ને કઈ ના પાયડા બાળતે।
1: અને ઘણી એટલી વાત છે, એ તે વાત બતાડી એની બાદમાં પિંચભાઈ હકરુભાઈ એક વાત એ છે કે કિસાન ભાઈ ને હું ધ્યાન રાખવું જોઈએ દવા સાડતા વખત, જેવી રીતે મોં પર પટ્ટી બાંધો યા સીતરે કઈ નું સાંધવું હોય કે નહીં,
0: આપણે દવા સાટવાની ધ્યાન પર હાથના મોજા બી જોવે,
1: હાથના મોજા,
0: હાથના મોજા જોવે, મોહ પર પટ્ટી જોવે, આંખે પર શિશ્મો બી જોવે,
1: અચ્છા અચ્છા,
0: ઓર પોગોમાં મોજા જોવે,
1: મોજા જોવે,
0: કેમ કે જો દવા સાટી રહેતી ના વ્યક્તિને મતલબ નુકસાન નહીં થવા,
1: નુકસાન નહીં થવા જોઈએ।
0: હા, અગર સાટી રહે કદી પોગો મોજા નહીં રાખ્યા, કાલ કદી તેના તેના પોગોમાં કઈ નાનું મોટું સાંધું હોય, તેને અંદર કદી ટપકું પડી ગયું, તો આદમી ભી નુકસાન કરી શકે, દવાનો એ પ્રોબ્લેમ।
1: અને બીજી વાત યા કે ડબલ્યા આપું સાટ્યા બાદમાં કઈ અહીંથા અહીં મેલ દઈ,
0: હા મેલ દઈ,
1: તો નાના સોના યા જનાવર
0: રમતા જાય કઈ મોહ સાટી લે કઈ નો, તો તેનો ભી નુકસાન, તો દવા પૂરી થઈ ગઈ એને બાદ નાના મોટા ડબલિયા આપણે કઈ રે કઈ નો ઢક્કણ રે કઈ નું કઈ, તો જમીનમાં ભંડાર દો,
1: જમીનમાં ગાળ દેવાનું,
0: ભંડાર દો, કોઈ ડગરા બોકડા ને કોઈ આપણા સોના સાબર ને કોઈ નુકસાન,
1: કોઈ નુકસાન નહીં,
0: એમાં કઈ નો ઘુસા વાળું મને ખાય,
1: હા તો મનક બી પી લે,
0: મનક બી પી લે તો બી નુકસાન।
1: અને દવા સાડતા વખત એને બી ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે વાયરી એની પાછી આવી રહી, આપણે ઉલટી કોડી,
0: હા
1: એના બારામાં
0: મને થી વાયરી આવી રહી તો અહીંની સાઈડ થી એમ છાટો,
1: પણ
0: અહીંથી વાયરી આવી રહી તો તેની મતલબ જઈ હવા જ આવી રહી
1: દવા સાટી રહ્યા, નાના સોના ભી મેરે નહીં રહેવા જોઈએ, અને હવાની ઉલટી દિશામાં અને હાથ ઉપર મોજા રહેવા જોઈએ, પોગોમાં ભી મોજા રહેવા
0: જોઈએ।
1: અને કિસાન ભાઈ ને તમે ઘણી અસલ વાત બતાડી, અને જાતા જાતા અમારા કિસાન ભાઈઓને તમે શું કહેવા માંગો કે ખેતી કરવામાં એને ધ્યાન રાખવી જોઈએ,
0: ખેતી કરવામાં ધ્યાન રાખવું જોઈએ।
1: તો તમે બે વીઘામાં ખેતી કરી મેલી,
0: બે વીઘામાં
1: સોયાબીન ની મકીની,
0: મકીની,
1: તે એમાં સોયાબીન કેટલી નકળી જાય બે વીઘામાં અને મકી કેટલા ની થઈ જાય?
0: લગભગ 60-70 હજાર નું સોયાબીન થઈ જાય,
1: 60-70 હજાર નું સોયાબીન થઈ જાય,
0: સોયાબીન થઈ જાય,
1: અને મકી,
0: મકી થઈ જાય લગભગ 8-10 ક્વિન્ટલ
1: મક્કી ભી પાકી જાય,
0: આકડી નીકળી,
1: હા। અને મતલબ હાંગરી ખેતી કરવાથી શું લાભ થાય, કઈ એક ફસલ બગડી જાય બીજી એમ કઈ?
0: હા, તો હાંગરી કરવાથી મતલબ એક ફસલ બગડે એક તો આવે,
1: એક ને એક તો આવી જાય,
0: એક ને એક આવી જાય, ઓર એક ખરી આપું કરી દઈએ સોયાબીજ કરી દે તો માન લો, તો સોયાબીજ કદી વગડી ગયું તો મકી આવી જાય,
1: મકી આવી જાય,
0: ઓર મકી વગડી ગઈ તો સોયાબીજ,
1: સોયાબીજ આવી જાય,
0: એટલો ફરક છે। કેમ કે કિસાન પાસો નુકસાન માની જાય,
1: નુકસાન માની
0: જાય, એક ને એક ફસલ આવી જાય,
1: એક ને એક ફસલ આવી જાય,
0: તો માની એક ફસલ આવી જાય, એટલે અમારી ફસલમાં અમો એમ કરીએ છે તો સોયાબીન બી ઓર મકા બી, એક નુકસાન થાય એક તો પાકે।
1: અને મકી સોયાબીન ને મકી માં મતલબ ખુલ્લી મકી સેટી સેટી રહે તેના કારણે ડોડિયા ભી મોટી થતી,
0: ડોડિયા મોટી થાય, ઓર હવા પવન માં પડવા ની,
1: હવા ભી નહીં માંગે,
0: સોયાબીન ને નુકસાન થાય,
1: હા,
0: ઓર મકીન ભી,
1: મકીન ભી હવા થી રોકાઈ જાય,
0: હવા થી રોકાઈ જાય, પડે તો એક બીજા રાડા પર જાય, ક્યુ જાય,
1: લેકો લે, પેલું પેલા પર જાય,
0: પેલું પેલા પર, આંગુડી મકી તો હવા આવે એક થી એક ઉપર
1: ખતમ થાય જાય, પૂરી ખેતી ખતમ થાય જાય,
0: ખેતી ખતમ
1: થાય. તેની હારે સોયાબીન બી મિશ્રિત ખેતી માં ફાયદો છે.
0: ફાયદો
1: છે. અચ્છા અચ્છા. તો હકરુભાઈ જાતા જાતા હમારા કિસાન ભાઈ ને એ બતાડ કે કિસાન ભાઈ ને તો હું સલાહ આલવા માંગે.
0: હું કિસાન ભાઈ ને એમ સલાહ આલવા માંગુ કે જો જેવી રીતે મેં વાત બતાડી કે એવી રીતે ફસલ કરવી જોઈએ.
1: અચ્છા અચ્છા.
0: તો એની ફસલ માં કોઈ નુકસાન નહીં થાય, ઓર કિસાન ભાઈ કોઈ ઘાટો નહીં જાય. જો જેવી ફસલ આપણી નિકાળ લીધી તેવી ફસલ આપણને ફાયદો બી થઈ રહ્યો, એમાં નુકસાન રહે એવું નહીં મળે. જે બી મેં વાતે વતાડીએ કિસાન ભાઈ ને, કોઈ બી કિસાન ભાઈ ની વાત ને ધર લે તો અગાડી ફાયદો થાય.
1: નુકસાન
0: રહે નહીં મળે. જો મેં વાત વતાડી ની વાત પર પાંડ ધરી ફોરની કે કેવી રીતે કરવી, એવી રીતે કરવી, તેની રીતે ખેતી કરી લેવાની, તો આપણા કિસાન ભાઈ ને કોઈ નુકસાન નહીં
1: થાય. ડાહા ડાહા આપણે કહેતા આયા કે ખેતી નો ખોળો છે અને દાડકી નો
0: દોડો
1: દોડો છે. તો કિસાન સાથીઓ, આજ અમારી વસમાં હતેલો હકરુભાઈ ડામોર અને તેની સોયાબીન અને મક્કાની મિશ્રિત ખેતીના બારામાં તમને અસલ એ જાણકારી હમળાવી, અને હમુન તમારથી ઉમ્મીદ છે કિસાન ભાઈઓ કી તમે એની વાતને સાંભળીને જ્યાદા સે જ્યાદા ઉત્પાદન લેવામાં કામયાબ રહો. અને હાઉ હકરુભાઈ ડામોર ને ઇજાજત આપજો. નમસ્કાર.
0: નમસ્કાર.
2: હું છે આરજે રાકેશ.
3: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર.
2: તમે સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ
3: ખેતીવાડી,
2: આપણા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર.

0: वाली फसल निवाद। तो किसान साथियों, हमने आप सुमाहा निवाद कर रहा तीन हारू ज्यादातर आपड़ में हमने वताड़ी तीन फसलों पर ध्यान देवानो। कटाई गहाई अने भंडारण। तो किसान साथियों, सोयाबीन की कटाई दातेड़ा या मशीन थी करी जाए से फसल की कटाई तेर करवाने जेर 95% फलियो भूरियो पड़ी जाए अने पायणा झड़वा लागी जाए। ज्यादा देरी थावा पर कटाई करवा पर फलियो छटकवानी संभावना बनेली रहेशे। तो किसान साथियों, बीज वाली फसल की कटाई कंबाइन थी नहीं करवानी, गेहाई थ्रेसर मशीन थी करवा हारू हुकेलू फसल नी गाड़ियों बनाई लेवानी हो अने थ्रेसर नी गति 300-500 RPM अने पंखा नी गति 1400-500 RPM राखवानी। ट्रेक्टर थी गाई हारू खाला मा फसल नी मोटी परत वसार देवानी अने हुकवा हारू सोड देवानी। जेर फलियो छटकवा लागे तेर नवा टायर ना ट्रेक्टर थी धीमी गति थी इनाने गेहाई कर लेवानी, महाली लेवानू। महाड़वा ना थावानी बाद मा तेज हवा मा पंखा या उड़ावनी नी बीजों ना डाकला अने भूसा ने अलग कर लेवानू अने बीजों ने दुबारा पुनः रूप थी धूप मा 2-3 दनो हारू हुकाड़वा हारू मेल देवानू अने साणी ने इनो भंडारण कर देवानू। तो किसान साथियों, इना इनी बाद मा बोरा भर देवाना। तो किसान साथियों, सोयाबीन नी उन्नत प्रजातियों अने तीहोनी विशेषताओ। तो किसान साथियों, देखी जाए तो जातिनु नाम अने पाकवानी अवधि अने तीहोनी उपज अने तीहोना विशेष गुण। तो किस्मनु नाम देखी जाए JS 335 अने इनी पाकवानी अवधि से 95 થી 100 દિન तक अने इनी जो उपज से किसान भाइयों 25-30 क्विंटल प्रति हेक्टर अने इनी विशेषता से व्यापक क्षेत्र हारू अनुकूल श्रेष्ठ अनुकरण ज्यादा उत्पादन क्षमता अने बैक्टीरियल पाचकवेद हारू प्रतिरोधी बर्ड फ्लाइट रोग अने कीटों में थोड़ मक्खी हारू सहनशील। तो किसान साथियों, बीजी जो सोयाबीन की उन्नत किस्म से JS 93-05 या 90 થી 95 દિન માં પાકીને તૈયાર થઈ જાય છે કિસાન ભાઈઓ અને એની ઉપજ છે 25-30 ક્વિન્ટલ પ્રતિ હેક્ટર અને એની ખાસ વિશેષતા યા છે કે વ્યાપક ક્ષેત્રો હારું અનુકૂળ શીઘ્ર વેગી પાકવાવાળી અને શાર દાણાવાળી ફળીવાળી ફસલ અને અસલ અંકુરણ ક્ષમતા ફળી છટકવા હારું પ્રતિરોધી જળ હળન અને પ્રમુખ કીટ અને બીમારીઓના પ્રતિ પ્રતિરોધી સહનશીલ કિસ્મ છે। तो किसान साथियों, अगली जो सोयाबीन की जो किस्म से JS 95-60 या 82-87 दिन में पाकिन तैयार थी जाए से एने 18-20 क्विंटल तक किसान भाइयों ने प्रति हेक्टर तक उत्पादन मिली जाए से अने वेगी पाकवा वाली शार दाणा वाली जो फली कम वर्षा अने उतुले जमीन वाला क्षेत्र हारू भी अनुकूल असल अंकुरण क्षमता वाली फली छटकवा हारू प्रतिरोधी अने हुकू सहनशील अने कीटों में थूड़ मक्खी चक्रभ्रंग नीलाभ्रंग अने बीमारियों में जेड हालन अने जीवाणु धब्बा हारू प्रतिरोधक से। तो किसान साथियों, अगली किस्म है जो बीज है सोयाबीन नो JS 97-52 98 દિન थी लगाड़ी ने 102 દિન में पाकिन तैयार थी जाए से अने इनी उपज से 25-30 કિલો प्रति हेक्टर 25-30 क्विंटल प्रति हेक्टर अने इनी खास विशेषता से व्यापक क्षेत्र हारू अनुकूल सर्वश्रेष्ठ अनुकूल ज्यादा उत्पादन क्षमता बहुरोधी क्षमता फली छटकवा हारू प्रतिरोधी पीला मोजेक जड़ सलन अने कीटों में तना छेदक अने पत्ती भक्षक अने ज्यादा नमी हारू रोधी सहनशील फूल नो रंग धोळो रहेशे।
1: હું છે આરજે રાકેશ
2: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર।
1: તમે સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી, આપડા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર।
0: તો કિસાન ભાઈઓ, મક્કા વિશ્વમાં કૃષિમાં કાફી મહત્વપૂર્ણ સ્થાન છે અને એની ફસલને વિશ્વમાં ખાદ્યાન ફસલોની રાણીના રૂપમાં માન્યું જાય છે કેમ કે એની ઉત્પાદન ક્ષમતા ખાદ્યાન ફસલોમાં સૌથી જ્યાદા છે યા 150

0: હું છે આરજે રાકેશ.
1: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર.
0: તમે સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી, આપણા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર. નમસ્કાર કિસાન ભાઈઓ, સ્વાગત છે તમારો સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર. હું છે આરજે રાકેશ અને રોજની જેમ તમારી વસમાં આજ ફેર કાર્યક્રમ ખેતીવાડી લઈને હાજર થયો છે. અને કિસાન ભાઈઓ, હું રોજ તમારી વસમાં ખેતીવાડી દેખા જોડાયેલા મુદ્દા, ખેતીવાડીની સમસ્યાઓ અને તેના સમાધાનની વાતો લઈને રોજ એના જ સમય પર હાજર થતો રહું છે. તો કિસાન ભાઈઓ, આજના ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં આપ વાતો સાંભળવાના છે એકીકૃત ખેતીની વાતો. બધી વાતો આપણ વતાડે કૃષિથા જોડાયેલા વિશેષજ્ઞ અને અનુભવી લોગ અને હાથે હાથ એવા કિસાન ભાઈ ત્યાં યે ખેતી કરીને ઘણો અસલ અને મોટો મુનાફો કમાઈ રહ્યા છે. તો ચાલો કિસાન ભાઈઓ, આજના કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ અને હા મળીએ એકીકૃત ખેતીની તકનીકી વાતો.
2: હમારા દેશ પ્રગતિ કે રાહ પર કાફી તેજી સે આગે બઢ રહા હૈ ઓર ઇસમે બહોત બડા યોગદાન હૈ કૃષિ કે ક્ષેત્ર કા, વો ભી ખાસ તોર પર હમારે ઉન કિસાનો કા જો કી પ્રગતિશીલ કિસાન હૈ ઓર નવાચાર નઈ તકનીક કો અપના કર અપની જિંદગી સવાર રહે હૈ, સાથ હી અન્ય કિસાનો કે લિયે ભી નયે નયે અવસર પેદા કર રહે હૈ. યે કિસાન કૃષિ સ્ટાર્ટઅપ, પશુપાલન ઓર ખેતી સે જુડે હુએ કિસાન હૈ, ઇસીલિયે હમારી કોશિશ હોતી હૈ કે દેશ કે કોને કોને મે ઉભરતી હુઈ પ્રતિભાઓ કી કહાનિયા હમ આ તક પહોંચાએ. આજ કે હમારે સફળ કિસાન હૈ પ્રમોદ દીક્ષિત. પ્રમોદ દીક્ષિત કઈ વર્ષો સે અપને ખેતો મે પ્રાકૃતિક તરીકે સે ખેતી કરતે આ રહે હૈ. ઇસકે અલાવા વો મધુમક્ખી પાલન ભી કરતે હૈ જિસસે ઉન્હે અતિરિક્ત લાભ હોતા હૈ. આજ કે સમય મે ઉન્હે કઈ ગુના લાભ હો રહા હૈ. આઈએ જાનતે હૈ પ્રમોદ દીક્ષિત કી કામયાબી કી કહાની કે બારે મે.
3: उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ का इलाका काला नमक चावल की खेती के लिए भी मशहूर है. उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के 11 जिलों में काला नमक चावल की खेती की जाती है. सबसे ज्यादा काला नमक धान की खेती बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर, गोरखपुर आदि जिलों में की जाती है. यहाँ के किसान भी काला नमक धान की खेती के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. यहाँ के किसान अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं. इसी जागरूकता की वजह से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर जैविक उत्पादों को उगाना बेहतर मानते हैं. जैविक और प्राकृतिक उत्पाद मानव स्वास्थ्य को बेहतर रखने के अलावा खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में मददगार होते हैं.
2: सारे अन्य किसानों की तरह प्रमोद दीक्षित भी पहले अपने खेतों में रसायनों का इस्तेमाल करते थे. लंबे समय से रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से उनके खेत की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बहुत कम हो गई थी और ऐसे में उन्हें नुकसान होना शुरू हो गया था. तब उन्होंने जाकर प्राकृतिक खेती को गले लगाया. जी हाँ, वो समझ चुके हैं कि प्राकृतिक खेती ही समय की मांग है और पूरी तरह से उन्होंने रसायनों से तौबा कर लिया. आज के समय में वो देखते हैं कि न सिर्फ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बेहतर हुई है बल्कि उन्हें अच्छा फसल उत्पादन भी अपने खेतों से प्राप्त हो रहा है. आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से.
3: भारत सरकार में वैज्ञानिक पद पर काम कर चुके प्रमोद के पास करीब 10 एकड़ जमीन है जिस पर उनके पिताजी खेती करते थे. प्रमोद रिटायर होने के बाद गांव वापस आए तो उन्होंने देखा कि पिताजी सहित क्षेत्र के अधिकांश किसान खेत में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे खेत को नुकसान हो रहा है, उत्पादकता कम हो रही है. खेत की दशा सुधारने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया जिससे उनके खेत की उत्पादकता और आमदनी दोगुना तिगुना बढ़ी. इस बारे में प्रमोद जी कहते हैं,
4: मेरे पास करीब करीब 3-4 गांव में मिला के 10 एकड़ जमीन है तो उसकी खेती मैं करता था और बेसिकली हमारे पिताजी करते थे, हम तो बाहर में थे तो उसमें रासायनिक खाद इत्यादि बहुत डालते थे लोग. और जब मैं रिटायर्ड होकर आया तो देखा गांव में सारे लोग डाल रहे हैं इसको, इससे खेत नुकसान हो रहा था, खेत की उत्पादकता कम हो रही थी, केचुआ नीचे के मर रहे थे. तो मैं सोचा कि क्यों ना खेती को ठीक से किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से किया जाए. तो 37 साल का जो अनुभव था कई प्रदेशों का, कई

0: देशों का, उसको संकलित करते हुए मैं इस गांव में, चूंकि अब मेरा अपना गांव था तो यही सोचा कि यहां से कुछ किया जाए ऐसा कि लोग उसको देखें तो उनको फायदा मिले। तो सबसे पहला कदम मैंने कहा किया कि ऑर्गेनिक खाद बनाया, ऑर्गेनिक खाद केचुआ खाद का बनाया। मेरे बगल में 20 गायें थी, उनके गोबर को लेके और केचुआ में पंतनगर विश्वविद्यालय से लाया और उसको डाला, खाद बना। उस खाद का प्रयोग मैं अपने सारे खेतों में किया, उत्पादन मेरा ठीक हो गया और मेरा जो ऑर्गेनिक कार्बन है खेत का बढ़ गया और नतीजा ये हुआ कि मैं इस समय एक कट्ठे में एक कुंटल धान पैदा कर रहा हूँ, गन्ना पैदा हो रहा है और हमको 4-5 साल के अंदर में 5-6 लाख रुपया अतिरिक्त मिल गया, जो कि हमको पहले 1-2 लाख मिलता था, तो हमारी आमदनी दोगुनी हो गई। और किसी किसी उत्पाद में मेरी आमदनी 4 गुनी 5 गुनी 6 गुनी हो गई। और मैं जो है सारा इसको वैश्विक पटल पर भी बेचता हूँ, जो मेरे सारे उत्पाद हैं 24 उत्पाद में बेचता हूँ ऑनलाइन और वैश्विक पटल पर अमेजन के थ्रू जाता है। तो इससे क्या हुआ कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, मेरा उत्पादन जो है कम खेत होते हुए भी डबल हो गया, डबल से ट्रिपल हो गया। और कम खेत होने के बावजूद भी मैं जिसके पास 25 एकड़ जमीन है 30 एकड़ उससे ज़्यादा में आमदनी हमको हो रही है। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मेरे परिवार का स्वास्थ्य ठीक है, मेरे खेत का मैं जांच कराया था उसकी उर्वरता बढ़िया है, ऑर्गेनिक कार्बन बहुत बढ़िया है और मधुमक्खी पालन, केचुआ पालन, खेत और पत्ती का खाद और तमाम तरह से करी का पत्ता, सहजन का पत्ता, नीम का पत्ता और मैंने एक दवा बनाई है संपूर्णा, उससे जो है उत्पादन भी बढ़ता है और बीमारी भी कम होती है। तो कुल मिला के मैं इस ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती से काफी संतुष्ट हूँ।
1: जैविक या प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्रकृति से मिली चीजों का भरपूर उपयोग किया जाता है। खेत में रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक खरपतवार नाशकों की बजाय गोवंश के गोबर और मूत्र के अलावा प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग कर खेत और फसल दोनों को समृद्ध बनाया जाता है। खेत में जैविक खाद, हरी खाद, केचुआ खाद, जीवाणुओं के टीके और कीट प्रबंधन में गोबर और गोमूत्र का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित खेती कर खेत की उर्वरा शक्ति को सुधारने का प्रयास किया जाता है। जैविक खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति और जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। जैविक खादों के प्रयोग से कृषि लागत में कमी आती है और उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर होती है। जैविक पद्धति से उगाई जाने वाली फसलों और सब्जियों का मानव जीवन पर कोई प्रतिकूल असर भी नहीं पड़ता है। खेत में प्राकृतिक खेती के फायदे को जान कुशीनगर के सरगरिया गांव के किसान प्रमोद दीक्षित प्राकृतिक खेती ही कर रहे हैं। इसके लिए वो प्राकृतिक संसाधनों और गोवंश के गोबर और गोमूत्र का उपयोग जैविक और बर्मी कंपोस्ट बनाने में करते हैं। गोबर की खाद और प्राकृतिक कीटनाशक बनाने के लिए प्रमोद जी ने गाय भी पाल रखी है। गोमूत्र का उपयोग वो जीवामृत बनाने में करते हैं। प्राकृतिक रूप से मिश्रित खेती करने के फायदे ही फायदे हैं। कुशीनगर और आसपास के जिलों में काला नमक धान यानी बुद्धा राइस की खेती की जाती थी, लेकिन नुकसान के चलते किसान इसकी खेती बंद कर चुके थे। इसे देख प्रमोद जी ने काला नमक धान की पैदावार बढ़ाने का फैसला किया। प्रमोद जी को काला नमक धान उगाने के दौरान डर का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और काला नमक धान उगाने में सफल रहे।
2: इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सफल किसान में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रमोद जी को मधुमक्खी पालन से फायदा हो रहा है, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज सफल किसान में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से संबंध रखने वाले प्रमोद दीक्षित की। जी हां, प्रमोद जी रासायनिक खेती को छोड़कर अब पूरी तरह से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो अपने खेतों में मधुमक्खी पालन भी करते हैं, जिससे उन्हें कई तरह के लाभ होते हैं। एक तो ये कि मुख्य फसल में परागण बढ़ता है और दूसरा मधुमक्खी पालन से उन्हें अतिरिक्त आय भी होती है। आइए जानते हैं कि कैसे फॉर्मूला उनके लिए लाभ लेकर आया है।
1: प्राकृतिक खेती करने वाले प्रमोद जी के पास 10 एकड़ जमीन है, जिसमें वो तिलहन खाद्यान्न फसलों के अलावा शहद का भी उत्पादन करते हैं। उनके खेत में लगी सरसों और गेहूं की फसल उनकी सूझबूझ की गवाही देता है। सरसों के खेत के पास प्रमोद जी वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी का पालन कर अपनी आमदनी और स्वास्थ्य दोनों सुधार रहे हैं। वर्कर मधुमक्खियों के परागण के चलते फसल और शहद उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस बारे में प्रमोद जी कहते हैं,
2: ये मधुमक्खी उत्पादन के क्रम में मैं यहाँ पर हूँ इस समय अपने खेत में, और यहाँ सरसों का खेत लगा हुआ है। तो सरसों का जो मधु होता है सबसे बढ़िया होता है, तो इसमें आवश्यकता होती है कि खेत के पास होना चाहिए और गांव से बाहर होना चाहिए, तो उसको सोचते हुए इसको बाहर में लगाया गया है और खेत के पास है। तो इसमें मधुमक्खियां उड़ती हैं, इनके जो वर्कर होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, ये उड़ती हैं और खेत में जाती हैं, और दिन भर वो सरसों जितना है 3 किलोमीटर के रेंज में सरसों के पराग को, नेक्टर को और रस को और पालन को लाती हैं। लाने के बाद जो है इसमें अंदर, तो ये सबसे, ये जो नीचे वाला बक्सा, दो भाग हैं इसके, ये वैज्ञानिक तरीके से हमने बॉक्स तैयार किया है, यही तरीका होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि नीचे वाला ब्रूड बॉक्स कहलाता है, जिसमें मधुमक्खी रहती है, रानी रहती है, उसके सिपाही रहते हैं, नर मादा रहते हैं, नर भी रहता है। और ऊपर में लगाया गया है एक थर्मोकॉल का बॉक्स, तो उसमें जो है केवल मधुमक्खियां शहद बनाती हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि जब हम शहद लेना होता है तो हम नीचे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि जो नीचे अगर डिस्टर्ब कर देंगे तो ये मधुमक्खियां समाप्त हो जाएंगी। तो पहले यहाँ किसान जो है मैं देखता था, वही नीचे वाला करते थे, ऊपर वाला नहीं जानते थे। तो मैं इसको वैज्ञानिक विधि से लाया कि इसको सुपर, इसको बोलते हैं सुपर बॉक्स। तो ये सुपर बॉक्स जो है, हनी बॉक्स, ये दोनों कहलाता है। अब इसको हम निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले ये दबा देते हैं ताकि कोई, ये उसके ऊपर एक ये बॉक्स है, एक लेयर ये निकालो। उसके बाद ये थर्मोकॉल का कवर है, ये बोरा इसलिए रखते हैं कि शाम को रात में ठंडा ज्यादा पड़ता है, तो 2-3 बोरा रखते हैं। अब देखिए मैं इसको खोल दिया, तो ये जो मधुमक्खियां ये बना रही हैं, इसमें केवल शहद बना रही हैं, और नीचे बहुत कम से कम 15,000-20,000 मधुमक्खियां नीचे में हैं, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा उनको। जो एकदम पक जाती हैं वो ऊपर आती हैं, और ये अपना अब ये तैयार है। अब इसको हमको करना क्या है कि ब्रश से झाड़ देना है इसी में, और इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद डब्बे में करके वो अंदर में जो है हमारा मधुमक्खी रस निकालने वाली मशीन है, वहां ले जाएंगे, और एक में से कम 4 बोतल भर जाएगा, 1 किलो आराम से, 2-2 किलो भी भर जाएगा। तो इस तरह से अगर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो एक बार में निकालेंगे तो एक डिब्बे से 15 किलो निकल जाएगा।
1: खेतों में लगी फसल के लिए प्रमोद जी अपने द्वारा बनाए गए जैविक कंपोस्ट खाद का ही उपयोग करते हैं, जिससे फसल बेहतर हो। प्राकृतिक रूप से काला नमक धान की खेती करने, मधुमक्खी पालन करने और किसानों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए प्रमोद जी स्वयं बताते हैं,
2: मधुमक्खी पालन, केचुआ पालन, पत्ती खाद उत्पादन, काला नमक धान उत्पादन, करीब 24-25 उत्पाद हम जो है पैदा कर रहे हैं विभिन्न विभागों के सहयोग से, जैसे कृषि विभाग हुआ, आपका उद्यान विभाग हुआ, कृषि विज्ञान केंद्र, इनके सहयोग से, प्रयासों के साथ, मैं उनके साथ वो जो उत्साह वर्धन कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ।
1: प्राकृतिक और जैविक खेती से उत्पादित प्रोडक्ट्स को बाजार में पहुंचाने में प्रमोद जी के बेटे नीरज काफी मदद करते हैं। इसके लिए नीरज ने जॉब की ओर न जाकर पिताजी का सहयोग करने का निश्चय किया और ऑनलाइन के माध्यम से उत्पादों की बिक्री कर काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बारे में नीरज कहते हैं,
3: जो ऑर्गेनिक खेती हमारे खेतों में होती है, जैसे काला नमक चावल, इन सबको पूरे भारत में अमेज़न के थ्रू मैंने बेचने में, सेल करने में मदद की। मैं तमाम यूथ लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो जॉब के अलावा भी कृषि में ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से अपना कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं।
1: मिश्रित खेती से खेत की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है। इसे जानकर प्रमोद जी के आसपास रहने वाले दूसरे किसान भी प्राकृतिक खेती करते हुए खेत में जैविक फसलों का ही उत्पादन करते हैं, जिससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी होती है। क्षेत्र के किसान शिवाय दीक्षित और इंद्रजीत दीक्षित बताते हैं कि ये प्रमोद जी के प्रयास का ही नतीजा है कि प्राकृतिक खेती का विकास कर रहे हैं। प्रमोद जी प्राकृतिक खेती की तकनीकी जानकारी देते रहते हैं।
4: जैसे कि यहाँ खेती का काम होता है और प्रमोद जी के माध्यम से तरह तरह की तकनीकी लगाई जा रही है, उसकी वजह से तमाम सारे वैज्ञानिक आते हैं यहाँ, उन लोगों को आने का अवसर मिलता है और उनसे हम लोगों को बहुत सीख मिलती है। तरह तरह की तकनीक के बारे में जानकारी मिलती है। काफी सालों से चल रहा है प्रमोद जी का प्रयास।
5: प्रमोद दीक्षित के साथ मिलके यहाँ, चूंकि प्रमोद दीक्षित जी वैज्ञानिक लोगों को ले आके इस गांव में और कुछ तकनीकी सलाह दे रहे हैं, और बर्मी कंपोस्ट और ये मधुमक्खी पालन और तमाम चीजों का, और यहाँ इस गांव के किसानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं।
0: इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि किसानों को मिश्रित खेती और प्राकृतिक खेती के लिए कैसे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उन्हें सही राह दिखा रहे हैं।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के समय में खेती वैज्ञानिक खेती है और ऐसे में बहुत आवश्यक है कि हमारे किसानों तक वैज्ञानिक सलाह पहुंचती रहे और नई तकनीक का इस्तेमाल करते रहे। कैसे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उन्हें सही राह दिखा रहे हैं, कैसे इससे उन्हें लाभ हो रहा है।
1: पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि अधिकारियों वैज्ञानिकों की ओर से किसानों को मिलने वाले कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। इस बारे में कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक राय बताते हैं।
2: तो जनरली ये कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के क्या समस्या है उस पर हम लोग किसानों के गांव में जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना, उनको प्रशिक्षित देना, उनके जो क्राप जो फसल उत्पादन ले रहे हैं जैसे अभी कुशीनगर जनपद में मेन मुख्य रूप से गन्ना का उत्पादन, फिर धान का उत्पादन, सब्जी का उत्पादन और गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अभी आज के डेट में देखा जाए तो केला एक डबल इनकम का मुख्य सोर्स बना हुआ है जो कि 15,780 हेक्टेयर एरिया में कुशीनगर में केला का खेती मुख्य रूप से किया जा रहा है। उसमें G9 का केला काफ़ी प्रचलित अभी हुआ है और FPO के माध्यम से और छोटे छोटे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसके माध्यम से उसको प्रोडक्शन में किया जा रहा है और उसको वैल्यू एडिशन में जैसे हमारा जो प्रोसेसिंग चैम्बर है उस पर भी काफी किसान अभी आगे आके काम कर रहे हैं।
1: खेतों में जैविक अनाजों के उत्पादन और प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को जानकारी देने के लिए उद्यान विभाग के अधिकारी भी खेतों तक पहुंच रहे हैं। आइए इस बारे में सहायक उद्यान निरीक्षक विपिन उपाध्याय से जानते हैं।
3: श्री प्रमोद दीक्षित जी हम लोग से सन 2021-22 में जुड़े विभाग से और इन्होंने इसके बारे में पता किया वर्मी कम्पोस्ट पहले कि कैसे तैयार करें, तो हम लोगों ने बताया कि गोबर की खाद और केचुआ इसका प्रयोग करेंगे आप और इस पे आपको विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। तो 21-22 में इन्होंने इसका लाभ विभाग से लिया।
1: खेतों में रासायनिक का प्रयोग न करने और प्राकृतिक रसायनों का प्रयोग कर जैविक फसल लेने और मिश्रित खेती को बढ़ावा देने में केवी के विशेषज्ञ लगातार प्रयास कर रहे हैं। खेतों के आसपास मधुमक्खी का पालन करने से फसल उत्पादन और खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इसे बताने और किसानों को अन्य जानकारी देने की दिशा में कृषि विभाग लगा हुआ है। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं।

0: विशेषज्ञ शमशेर सिंह।
1: ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये किसानों के बीच तकनीक हस्तांतरण का काम करता है। तो हम लोग बहुत सारे तकनीक जो कि उद्यान से संबंधित है उसके ऊपर किसानों के यहाँ जा करके प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदर्शन के माध्यम से उनकी इनकम को बढ़ाने में सहायक होते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं। तो जैसे अभी बात हो रही थी मधुमक्खी की, तो मधुमक्खी पालन बहुत जरूरी है। आज के समय में जिस तरह से अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग हो रहा है, इन रसायनों का प्रयोग होने से मधुमक्खियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, दिन पर दिन वो मरती जा रही हैं। और ऐसा देखा गया रिसर्च के माध्यम से कि जिस खेत में मधुमक्खी पालन किया गया वहां पर उस फसल का, लीची का या अन्य फसल का उत्पादन ज्यादा हुआ, जहां पर रसायनों का प्रयोग ज्यादा होता रहा वहां पर मधुमक्खियां कम आती हैं। मधुमक्खियां कम आने से फलों में जो फूल होता है उसका परागण नहीं हो पाता है ठीक से, और परागण न होने की वजह से फूलों में फल धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। इस वजह से हम किसानों को यह सलाह देते हैं कि अपने खेतों में रसायनों का प्रयोग कम से कम करें, अधिक से अधिक ऑर्गेनिक का प्रयोग करें। तमाम जो किसान पालक हैं जिनके यहाँ पशु हैं वो अपने पशु से विभिन्न तरह के ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। वो बर्मी कंपोस्ट हो सकता है, नादिप कंपोस्ट हो सकता है, वो बर्मी वास हो सकता है। इन सब का अगर खेतों में प्रयोग करें, फसलों पर प्रयोग करें, तो निश्चित तौर पे उनके जो लागत है वो लागत में कमी आएगी। क्योंकि जब रसायनों का, जब हम बर्मी कंपोस्ट वगैरह का खेत में प्रयोग करेंगे तो निश्चित है कि हमारी जो रासायनिक खाद है उसकी मात्रा की जरूरत कम पड़ेगी। और इन बर्मी कंपोस्ट वगैरह में लगभग सारे तत्व हैं, लेकिन रासायनिक खादों में तो वही तत्व है जो हम देते हैं पौधों में। चाहे यूरिया है तो केवल नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस या पोटास देंगे तो पोटास मिलेगा, लेकिन अगर हम बर्मी कंपोस्ट देते हैं तो लगभग सारे तत्व मिलते हैं पौधों के विकास के जो तत्व चाहिए। तो इस तरह से अगर बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं खेतों में तो निश्चित है कि हमारी रासायनिक खादों की मात्रा का जरूरत कम पड़ेगा, और जब हम लागत को कम करेंगे तभी हम लाभ ज्यादा पाएंगे।
2: हूँ से आरजे राकेश
0: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
2: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर।
3: तो सालो किसान भाइयों हाव लई एक नानो ब्रेक अने हा मळी आपड़ा झाबवा जिलामा भील समुदायमा जब लाडो पैणे अने जान जाय तीनमा जो गावे थी घणु मजानु अने असल गीत हामळीने पासा भेळा था हूँ कार्यक्रम खेतीवाड़ीमा। तो किसान भाइयों जाजोमती कहता हामलता रहेजो झाबवानी आवाज पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM।

0: सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से खेती किसानी से जुड़ी हुई ऐसी प्रतिभाओं से रूबरू करवाते हैं जो खेती किसानी में आगे आकर विकास की नई गाथाओं को लिख रहे हैं। सफल किसान, जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि सफल किसान के जितेंद्र कसाना ने कैसे जैविक खेती को अपनाया और आगे कैसे वो विकास की नई गाथाओं को लिख रहे हैं।
1: जिला यूं तो राजनीतिक हलचलों के मामले में काफी आगे है, लेकिन यहां के किसान भी खेती के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यहां के किसान अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। इसी जागरूकता की वजह से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर जैविक उत्पादों को उगाना बेहतर मानते हैं। जैविक और प्राकृतिक उत्पाद मानव स्वास्थ्य को बेहतर रखने के अलावा खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में मददगार होते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर के कृषि वैज्ञानिक प्रेरणा से जितेंद्र कसाना पिछले कई सालों से अपने खेत में गोबर से तैयार खाद का प्रयोग कर सरसों आदि फसलों की जैविक खेती कर रहे हैं। जितेंद्र बताते हैं कि कोरोना काल में कुछ मुश्किलों का सामना करने पर उन्होंने दूध का व्यापार किया और वहीं से उन्होंने जैविक तरीके से ज्वार, गेहूं के अलावा सब्जियों की खेती प्रारंभ की, जिसमें उन्हें अच्छा फायदा हो रहा है।
2: हम पारंपरिक खेती करते थे पहले, तो अब जो है फिलहाल जैविक में आ गए। 2015 में हमें जो है डॉक्टर विपिन कुमार से हमारी संपर्क हुई है, वे मुरादनगर केवीके में रहते थे। उन्होंने जो है हमको गाइडलाइन दी कि कुछ बदलो, ये तो पारंपरिक आप करते गेहूँ धान ये तो आप करते ही आ रहे हो, कुछ दूसरी तरफ चलो। फिर हम जो जी सब्जी की तरफ चले, उसके बाद में हमने सरसों को भी काम कराया। उन्होंने हमसे सरसों खरीदवाई, तेल पिलवाई, अपने घर की सरसों भी बोई हमने, और वो काम हमारा काफ़ी बढ़ा। लेकिन कोरोना टाइम में आकर के हम उसमें थोड़े से डाउन हो गए, कोरोना के डर से फिर हम उसे जो सप्लाई भी नहीं कर पाए। हमने अच्छी आमदनी ली उससे, मतलब, और अच्छी आमदनी लेने के बाद में जी उसके बाद फिर हम चलते रहे, फिर दूध का व्यापार कर लिया जी। और दूध का व्यापार करके अब इस खेत में हमने जो ज्वार बो रखी है, गेहूँ काट के ज्वार बोई है। ज्वार बोने के बाद में हम इसमें धान लगा देंगे, धान के बाद में फिर गेहूँ, और कुछ सब्जी की खेती करते हैं जी, आलू भी बोते हैं। तो हमारे पास 6-7 एकड़ जमीन है, उसमें अदलवा बदलवा कुछ ना कुछ करते रहते हैं जी सर। और अब जो फिलहाल हमारी अच्छी आमदनी हो रही है, बढ़िया काम चल रहा है जी। दूध हम यहाँ पे 50 रुपया किलो कटवाते हैं जी, और 70 रुपया किलो दिल्ली में सप्लाई करते हैं जी।
1: जैविक तरीके से होने वाली ज्वार को जितेंद्र अपने पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज वे जैविक अनाज ही पैदा कर रहे हैं, जैविक उत्पाद ही उनका आहार बन चुका है। इस बारे में जितेंद्र कहते हैं,
2: ज्वार जो जी अपने पशुओं के लिए चारा करते हैं जी इसमें जी, और चारा खिला करके हमारे पास जो है 10-12 भैंस हैं, गाय हैं, दूध का व्यवसाय है, और चारे से जो है मतलब अच्छी जैविक चारा है, पशु भी जैविक खाते हैं हमारे, और हम भी जैविक अनाज पैदा करते हैं जी। जैविक का ही खान पीन, रहन सहन हमारा सब कुछ जैविक के उससे रहता है जी, एकदम साधारण सिंपल। और पशुओं में भैंसों में जो जी अच्छी हमें जो आमदनी हो रही है जी।
1: जैविक खेती करने के साथ साथ पशुपालन बेहद फायदेमंद होता है, इसे जानकर जितेंद्र गाय भैंस पालकर डेयरी का भी काम करते हैं। सुबह उठकर पशुओं के काम में लगकर दूध निकालते हैं और उसे बाजार में बेचते हैं। अच्छी नस्ल के पशुओं को वे रोहतक लाते हैं जिनसे दूध अधिक निकलता है। पशुओं के चारे और टीकाकरण का जितेंद्र पूरा ध्यान रखते हैं। वे युवाओं को सलाह देते हुए कहते हैं कि युवा नौकरी के बजाय कृषि को अपनाएं और सफलता हासिल करें।
2: मेरा मुख्य काम भैंसों का दूध की डेयरी, ये काम है मेरा। मैं सुबह जो है 4 बजे उठ करके और अपना दूध निकालता हूँ भैंसों का, उनका चारा करता हूँ, चारा वगैरह करके उन्हें नहवा धोला करके और अपने कार्य को जो मतलब 10 बजे तक फारिग हो जाता हूँ, दूध की सप्लाई कर आता हूँ, और पशु जो है रोहतक से लाता हूँ। हम जो जी गर्मियों में तो जी इन्हें नहलाना पानी से 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को जी, और अपना धान की पराल जो होती है हम उसको वेस्टेज नहीं करते ना, उसमें ये कि मतलब आग लगा दे या वो कर दे, अपनी धान की जो पराल होती है उसको इकट्ठा कर लेते हैं और मशीन पे काटते और अपने पशुओं को कुछ खिलाते हैं जी। टीकाकरण समय पर करवाते हैं जी, हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है निस्थौली में, वहाँ से डॉक्टर आते समय समय पर आते रहते हैं, और समय समय पर भी टीका लगाते हैं, अब भी लगा के वो टीका, अब से 15-20 दिन पहले टीका लगा करके वो गए।
1: भारत की समृद्धता प्राचीन काल से विख्यात रही है और यहाँ की कृषि पद्धति भी प्राचीन काल से ही भारत के खेतों में गोवंश का बोलबाला रहा है। खेत और गोवंश एक दूसरे के पूरक माने जाते रहे हैं। गोवंश का गोबर और गोमूत्र का उपयोग खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और बीजों को रोग रोधक बनाने में किया जाता रहा है। मानव और खेत दोनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर के चलते कृषि विभाग ने जैविक खेती को बढ़ावा देने का निश्चय किया। कृषि विभाग के प्रयासों के कारण एक बार फिर किसानों का रुझान जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है। कृषि विभाग जैविक खेती को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं।
0: दोस्तों, वक्त हो गया यहाँ ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के प्रयासों के बारे में, कैसे किसानों को वो जोड़ रहे हैं और कैसे किसानों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

For you.

Tamunamayamabubuyo, usasubikano,

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सवाल किसान के इस कार्यक्रम के दास्तान को आगे बढ़ाते हैं और आप बात करते हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के प्रयासों के बारे में कि कैसे उन्होंने किसानों को आगे बढ़ाया और किसानों को इससे जोड़ने की कितने प्रयास किए जा रहे हैं, किसानों को कैसे जागरूक किया जा रहा है, वो तमाम तरह के अभियानों के बारे में जानते हैं।
1: खेतों में रासायनिक खादों के चलते उगने वाली फसलों के दुष्प्रभावों को देखते हुए किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर किसानों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र की स्थापना की गई है। इस दिशा में संस्थान अपनी गतिविधियों के माध्यम से किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ने का प्रयास कर रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए संस्थान के निदेशक डॉक्टर जगनेश शर्मा जी बताते हैं।
2: हमारा जो संस्थान है वो देश में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमुखतया यहाँ पर कार्यरत है और हमारे जो संस्थान है इसके चार मुख्य मैंडेट्स हैं, जो कार्य हैं हमारे। सबसे पहला जो है हमारा कार्य वो ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है किसान भाइयों से लेके और सभी जितने भी एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उन सब के साथ मिल के जो है हम कृषि के जितने भी जैविक कृषि के ट्रेनिंग्स हैं, हमारे जो प्रशिक्षण के प्रोग्राम हैं वो चलाते हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग करना सभी स्टेक होल्डर्स की, ये हमारा सबसे पहला दायित्व है। दूसरा जो है हमारा प्रमाणीकरण है कि प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना है देश में। आपको पता ही है कि दो प्रकार की प्रमाणीकरण की प्रक्रियाएँ हैं देश में। पहली तो है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, जो अपेडा एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उनके द्वारा चलाई जाती है, जो एक्सपोर्ट के लिए और डोमेस्टिक ट्रेडिंग के लिए दोनों के लिए कार्य करती है।
1: राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र किसानों को ट्रेनिंग के अलावा उत्पादित फसलों के प्रमाणीकरण और उसकी टेस्टिंग की दिशा में भी काम करती है। इनका पूरा प्रयास रहता है कि लोग जैविक तरीके से उगाई जाने वाली फसलों को अपनाएं और स्वस्थ जीवन जिएं। इसलिए संस्थान जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण करती है कि ये उत्पाद पूर्णतया जैविक है। इस बारे में एपीडा के अलावा किसान भाई भी फसलों का प्रमाणीकरण कर सकते हैं। इस बारे में डॉक्टर जगनेश शर्मा जी बताते हैं।
2: हमारा जो संस्थान है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, हमारे यहाँ पर पीजीएस सेक्रेटरिएट है जिसका नाम है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन। तो ये सर्टिफिकेशन ग्रुप बेस्ड सर्टिफिकेशन है और जैसे कि आपने नाम सुना पार्टिसिपेटरी, मतलब किसानों द्वारा खुद का निरीक्षण खुद करके और खुद ही अपना पीयर इंस्पेक्शन पीयर अप्रेजल्स के द्वारा डिक्लेयर करना कि हाँ हम जो है केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं और हमारी जो है जैविक खेती हम जैविक कर रहे हैं और स्टैंडर्ड्स और जो मानक हैं उनके आधार पर जैविक खेती कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है वो भी हमारा दूसरा दायित्व है। और तीसरा जो हमारा मैंडेट है वो है टेस्टिंग का। हमारे यहाँ पर हमारे संस्थान के साथ हमारे पांच और संस्थान हैं जिनका हम क्षेत्रीय संस्थान कहते हैं और जो रीजनल सेंटर हैं हमारे अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, जैसे कि हेडक्वार्टर गाजियाबाद से शुरू करें यहाँ पर। तो ये जो संस्थान है यहाँ पर लेबोरेटरी भी है जो ऑर्गेनिक जो इनपुट्स हैं जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 है उसके तहत हमारी लैब्स जो हैं वो नोटिफाइड हैं और हमारी जो हेडक्वार्टर की लेबोरेटरी है वो तो NABL एक्रेडिटेड भी है। और इसके अलावा बेंगलोर की लेबोरेटरी है RCNF बेंगलोर और RCNF नागपुर है और इसके अलावा जो है हमारी RCNF भुवनेश्वर है, इसके अलावा हमारे RCNF मणिपुर है। तो हमारी पांच संस्थान हैं क्षेत्रीय जो ट्रेनिंग भी करते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं और उसके साथ साथ में सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को भी सुचारू रूप से चलाने में सहायक हैं।
1: जैविक एवं प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए संस्थान अन्य गतिविधियां करने के अलावा किसानों को ट्रेनिंग आदि भी देते हैं। जैविक उत्पादों की जांच के लिए संस्थान अपनी लैब को अपग्रेड भी कर रहा है जिससे उत्पादों की सही जांच हो सके और लोगों को सही जैविक उत्पाद मिल सके। इस बारे में जगनेश जी कहते हैं।
2: ट्रेनिंग में हमारे सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 30 दिवसीय सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जिसमें हम +2 तक के जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती के ऊपर।

0: सर्टिफिकेशन के बारे में भी उनको जानकारी दी जाती है और उनको ट्रेन किया जाता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाई जाती है और उनको कहीं भ्रमण पर भी ले जाया जाता है। तो इस तरह से 30 दिन में उनको एक्सपोज किया जाता है सभी प्रकार के जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब उनसे उनको अवगत कराया जाता है। 20 लेक्चर्स रखे जाते हैं जो हमारे नेशनल लेवल के एक्सपर्ट होते हैं, वो चाहे साइंटिस्ट हों, वैज्ञानिक हों IARI के या किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उनको हमने एम्पैनल और एक्सपर्ट्स को अपने पैनल में रखा होता है, उनको बुलाया जाता है इन ट्रेनिंग्स को करवाने के लिए। इसके साथ साथ हम कंपाइलेशन करते हैं डिफरेंट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के द्वारा वैलिडेटेड टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको हम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के फॉर्म में पब्लिश करते हैं। हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का न्यूज़लेटर भी है, बायोफर्टिलाइजर न्यूज़लेटर भी है, जो साल के 2 बार हम पब्लिश करते हैं और किसानों तक ही नहीं सभी स्टेक होल्डर्स तक वो पहुंचता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में भी जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी ये न्यूज़लेटर उनकी लाइब्रेरी में उपलब्ध होता है। तो इस तरह से हमारा संस्थान ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाता है। एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है जो किसानों के लिए किया जाता है, खेत में जहां पर किसान गांव में कोई मॉडल डेमोंस्ट्रेशन फार्म है उनके इन एंड अराउंड हम ये ट्रेनिंग रखते हैं और 50 किसानों को इसमें भागीदार बनाते हैं और उनको भी एक दिवसीय ट्रेनिंग में एक्सपोज किया जाता है जैविक खेती में प्राकृतिक खेती प्रमाणीकरण। और साथ ही साथ हमारा टू डेज एक्सटेंशन ऑफिसर्स ट्रेनिंग भी है और इसके साथ साथ PGS इंडिया का जो हमारी रीजनल काउंसिल्स होती हैं, एजेंसीज होती हैं, ताकि उनके ऑडिटर्स और इंस्पेक्टर्स ट्रेन हों, उसके लिए भी हमारी 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है।
1: कैसे जैविक खेती और प्राकृतिक खेती से जुड़कर किसान भाई आगे आ सकते हैं और कितनी अपार संभावनाएं हैं प्राकृतिक और जैविक खेती से जुड़कर आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं और जो आपकी उत्पादन की गुणवत्ता है उसको भी आप कितना महत्वपूर्ण है और कितना बेहतर आप कर सकते हैं, ये सब कुछ संभव है जैविक और प्राकृतिक खेती के जरिए। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र के प्रयासों के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे इनके जरिए भी किसानों को आगे बढ़ाया जा रहा है, किसानों को जागरूक किया जा रहा है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं किसानों के लिए ये उपलब्ध करा रहे हैं।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सफल किसान के दास्तान को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि कैसे कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय ये दोनों ही विभाग किसान को सफल किसान बनाने के लिए अग्रसर हैं। कैसे ये दोनों विभाग किसानों को सफल किसान बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास कर रहे हैं, कैसे वो जागरूक करते हैं और कैसे किसानों को जोड़ने का काम करते हैं। इनके प्रयास खेती किसानी के क्षेत्र में अमूल्य हैं और यही कारण है कि आज हमारे देश भर के कोने कोने से ऐसी किसान प्रतिभाएं निकल कर आ रही हैं जो आज अपने आप को एक सफल किसान के तौर पर स्थापित कर रही हैं।
1: पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और ये सब संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की ओर से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। मेरठ जिले के मोदीपुरम में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशालय में कार्यरत डॉक्टर सिंह बताते हैं।
2: सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशालय के नियंत्रण में 18 जनपद आते हैं जिसमें 4 मंडल हैं और इन 18 जनपदों में 20 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। प्रत्येक जनपद में एक कृषि विज्ञान केंद्र और तीन हमारे ऐसे जनपद हैं जहां दो दो कृषि विज्ञान केंद्र हैं जिसमें मुरादाबाद, बिजनौर एवं बदायूं हैं। प्रसार निदेशालय कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से तकनीकी हस्तांतरण में अपना योगदान दे रहा है जिसमें हमारा जो मुख्य रूप से हम जो खेती में लगे किसान भाई हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए और खेती में युवाओं का रुझान बढ़ाने के लिए हम तकनीकी रूप से उनको सशक्त बनाने में लगे हुए हैं और जो भी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्राथमिकताएं हैं उन पर प्रसार निदेशालय कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के माध्यम से तकनीकी हस्तांतरण करा रहा है जिसमें मुख्य रूप से अगर हम कहें तो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, क्योंकि फसल अवशेष प्रबंधन की बहुत आवश्यकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर धान और गेहूं का फसल चक्र है और गन्ने में भी है जहां पर पराली जलाने की बात होती है, गन्ने की पत्ती जलाने की बात होती है, वहां पर हम किसान भाइयों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं।
1: खेतों में पानी के बेहतर इस्तेमाल के बारे में भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के अलावा युवाओं को खेती के प्रति रुझान पैदा करने के लिए भी विश्वविद्यालय लगातार प्रयास कर रहा है। कृषि के मामले में किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास जारी है। आइए इस बारे में जानते हैं।
2: बहुत सारी ऐसी तकनीकी है जिससे जल को बचाया जा सकता है, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, उसके बारे में भी उनको बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा जो महिलाएं हमारी हैं उनके सशक्तिकरण के लिए विशेष हमने एक अभियान चलाया हुआ है जिसमें माननीय राज्यपाल महोदया जी के निर्देशन में हमने 1000 अशिक्षित महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है जिसमें से 73 महिलाओं ने अपना लघु उद्योग स्टार्ट किया है और उसके माध्यम से वो स्वयं भी अपना आय का अर्जन कर रही हैं और उन्होंने 4 से 5 लोगों को और भी उसी गांव में रोजगार मुहैया कराने का कार्य किया है। तीसरा जो हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट ग्रुप है वो है आज का युवा। युवा आज विमुक्त हो रहा है खेती की तरफ से, तो उनको खेती में रुझान किस तरह से पैदा किया जाए उसके लिए हम उनका एक स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग करा रहे हैं और इस स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग के माध्यम से विशेषकर हम 3 से 4 चीजों पर फोकस कर रहे हैं जिसमें मधुमक्खी पालन, मछली पालन और मशरूम और पोल्ट्री, क्योंकि ये एक चारों चीजें इस तरह की हैं जो कि आय का अतिरिक्त साधन भी देती हैं और इनका खेती के साथ सामंजस्य भी है और हमारे पास आज बहुत सारे ऐसे मॉडल युवा हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इस दिशा में कार्य किया है।
1: देश में किसानों को तकनीकी जानकारी देने और खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका काफी बढ़ रही है। ये संस्थाएं खेत में पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीजों को विकसित करने के अलावा किसानों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास करती हैं। मेरठ का सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी कृषि के क्षेत्र के विकास में जुटा हुआ है। इस बारे में बता रहे हैं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के सिंह।
3: हमारे विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र 4 मंडल जिसमें कि सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद और बरेली, इन 4 मंडलों के 18 जिले आते हैं और इसके अंतर्गत 20 हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं और विश्वविद्यालय का मैंडेट कृषि क्षेत्र के में शिक्षा देना, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी, ये सब प्रोग्राम हैं और शोध कार्य है कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों में शोध कार्य और उसका प्रचार प्रसार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं तकनीकों का। इसमें हम लोग उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षण कार्य देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में कृषि के, चाहे वो मुर्गी पालन हो, मशरूम का प्रोडक्शन हो या बकरी पालन हो, हमारा नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में और मोटे अनाज से जुड़े हुए प्रसंस्करण, मोटे अनाजों का उसका उत्पादन और प्रसंस्करण, इस सब पर हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं और वो प्रशिक्षण लेकर के अपना कोई न कोई रोजगार शुरू करते हैं, महिलाएं हों या युवा हों।
1: भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। आज के दौर में कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विभाग से जुड़ी संस्थाओं और कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत अधिकारी व वैज्ञानिक किसानों को प्रगतिशील बनाने में सक्रिय हैं। हर किसी का प्रयास है कि खेतों में उत्पादन बेहतर हो और किसानों की आय बढ़े। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 18 जिलों में किसानों और खेतों की दशा सुधारने और जैविक खेती को बढ़ाने में मेरठ का सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थाएं सक्रिय हैं। ऐसे में किसान इनकी राय लेकर उत्पादन को बेहतर बना सकते हैं।
4: तो सालो किसान भाइयों, यो है तो आज नो कार्यक्रम खेतीवाड़ी। आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में आप ही बात हमली एकीकृत खेती नी बातियों अने हाथे हाथ पशुपालन नी खेती मा सफल किसान नी बातियों पण इना कार्यक्रम मा आप ही हामलियो। किसान भाइयों, हम रोज तमारी हारू एवा असल थी असल खेतीवाड़ी ना कार्यक्रम लीन आवी से अने आशा पण करी से कि हमारा झाबुआ जिला ना किसान भाई ये बधी बातियों हामले अने खेतीवाड़ी ना क्षेत्र मा आगाड़ी बढ़े अने असल मोटो मुनाफो कमाई सके। तो सालो किसान भाइयों, आ सारू बस एतरी वात, केम के हाव समय थाई गयो से बीजा कार्यक्रमों नो। हूँ आरजे राकेश लू से तमारी देखी इजाजत, पण तमु जाजो मती कहता हामल तारे जो झाबवानी आवाज पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM तमारा रेडियो खतवार आरजे राकेश नी हाते। धन्यवाद।

0: हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर, और आइए स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से।
1: आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और आज के प्रोग्राम में जो मेहमान, जो कलाकार हमारे साथ हैं, उनका नाम है कर्नल नरेश रावल साहब। बाकी की बातचीत हम कर्नल साहब से ही करेंगे। तो जैसा हम हमेशा करते हैं, अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं नरेश साहब के गाए हुए इस गीत से।

0: कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत आभार कि आप आए। मैं सबसे पहला सवाल शुरू करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा आपसे कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, क्या है, और उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताइए।
1: मेरा जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। अहमदाबाद 600 साल से भी पुराना शहर है, जिसको अहमद शाह बादशाह ने बसाया था। ये बहुत सालों तक गुजरात की राजधानी थी, लेकिन तकरीबन 1974-75 में यहाँ से शिफ्ट करके सैटेलाइट टाउनशिप गांधीनगर बनाया और वहाँ पे राजधानी बनाया। लेकिन वाणिज्यिक राजधानी अभी भी अहमदाबाद ही है गुजरात की। गुजरात को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड की तरह, मैनचेस्टर की तरह कॉटन टेक्सटाइल्स की बहुत ज्यादा मिलें थी। आजकल थोड़ी निष्क्रिय हो गई हैं, क्योंकि सूती कपड़े का चलन ही थोड़ा कम हो गया है। और बाकी शहर अभी बहुत बढ़िया है, इस्लामिक आर्किटेक्चर भी है, मस्जिदें हैं, रोजा वगैरह है, और साथ में 2-3 बड़े बड़े तालाब भी हैं। और मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ साथ यहाँ पे रिवर फ्रंट अभी बहुत मशहूर है, साबरमती नदी के ऊपर बिल्कुल लंदन के जैसा रिवर फ्रंट बना रखा है। तो ये है हमारी खासियत अहमदाबाद की।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच सर। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं नरेश सर का ही गाया हुआ एक खूबसूरत सा गीत।

0: बहुत ही प्यारा गीत। जनरल साहब, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: मैं बचपन में एक पायलट बनना चाहता था। जब पहली बार मैंने एक हेलीकॉप्टर देखा था और मेरे पिताजी ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं या तो पुलिस अफसर या सैनिक बनूं, और उन्होंने मुझे प्रोत्साहन के नाते कैंटोनमेंट में घुमाया और मेरी खसूसियत बताई सब आर्मी की, और उसके बाद मुझे उन्होंने सैनिक स्कूल में भेजा। तो सैनिक स्कूल से फिर मैं लगातार आर्मी जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी से होते हुए अफसर का कमीशन पाया।
0: बेहतरीन बेहतरीन। तो जो आपने बचपन में सोचा था दरअसल वही आपको मिला आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में। बहुत बहुत सुंदर बात है। आइए दोस्तों, सुनते हैं कर्नल नरेश जी का गाया हुआ एक और गीत।

0: बहुत ही प्यारा गीत। तो कर्नल साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों?
1: मेरा पसंदीदा गायक, वैसे तो सारे गायक की मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन बचपन से मुझ पर प्रभाव रहा है मुकेश जी का। जिस मोहल्ले में हम रहते थे, सवेरे से मतलब ज्यादातर गाने मुकेश के चलते थे, जो पड़ोस में रहते थे और मेरे पिताजी के फेवरेट थे, तो इसलिए मुझे मुकेश अच्छे लगते हैं। और अभी के संदर्भ में मुझे सुखविंदर का गाना बहुत अच्छा लगता है। उसकी रेंज और जो कंट्रोल है वाणी के ऊपर, वो बहुत बढ़िया है
0: जी। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। तो दोस्तों, आपने सुना, आगे सुनते हैं कर्नल साहब का ही गाया हुआ बेहद खूबसूरत सा गीत।

0: कर्नल साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक मजेदार सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको आपकी तीन इच्छाएं पूरी करने वाला एक जिन्न मिल जाए कहीं से, तो क्या मांगेंगे आप उससे?
1: थोड़ा सा मैं अचंभे में पड़ गया हूँ. ऐसा है कि मैं ऐसा कुछ ना मांगू जिसको कि बाद में मैं सोचूंगी ये नहीं दूसरा कुछ चाहिए था
0: जी.
1: और एनीवे, अच्छी सेहत, खुशी माहौल, यही सबसे बड़ी चीज है जो दुनिया में, सेहत और खुशी का माहौल.
0: जी, बहुत बहुत सुंदर. दरअसल क्या होता है सर, ये सवाल मैंने जानबूझ के इसलिए पूछा क्योंकि हमारे दिल में कई सारी इच्छाएं चुपके चुपके दबी रहती हैं, जो हमें लगता है कि काश हमारे पास कुछ ऐसा आशीर्वाद ऊपर वाले का मिल जाए या कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए तो हम वो चीजें अपनी पूरी कर लेंगे. कुछ लोग नई गाड़ियां लेना चाहते हैं, कुछ लोग मकान, कुछ लोग कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ खाना चाहते हैं. तो मुझे लगा कि एक बार किसी भी इंसान के अंदर का वो भोला सा बच्चा अपना जवाब देगा कि मैं ये चाहता था. फिर भी आपने बहुत समझदारी से बहुत सुंदर जवाब दिया. थैंक यू सो मच सर फॉर दैट. आइए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत नरेश जी का.

0: कर्नल साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी हॉबीज क्या हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए।
1: मेरी हॉबीज में संगीत, पेंटिंग, कारपेंट्री और विज्ञान की काफी जिज्ञासा है। मतलब कोई भी चीज होती है तो मैं उसको खोल के देखना चाहता हूँ कैसे चलती है और कैसे उसको रिपेयर किया जाता है। स्कूल में था तब चित्रकारी और कारपेंट्री में मुझे काफी इनाम मिले हैं। और घूमने फिरने का शौक है। संगीत में मैं कीबोर्ड बजाता हूँ, फ्लूट भी थोड़ा सा बजा लेता हूँ, तो ये मेरे शौक हैं। इसके अलावा रिलेटली स्टैम्प कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन, ये भी मेरा एक हॉबी है।
0: बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इतनी सारी हॉबीज अगर किसी इंसान के पास हो तो उसके अंदर एनर्जी की कमी तो हो ही नहीं सकती, उत्साह की कमी तो हो ही नहीं सकती। बहुत ही सुंदर। आइए दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत नरेश सर का गाया हुआ।

0: सर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको मौका मिले कि आप अपनी जिंदगी में पीछे की तरफ जाकर कोई एक चीज को बदल सकें तो क्या बदलेंगे आप?
1: वैसे भगवान ने जिंदगी में बहुत कुछ दिया है, तो बदलने का कोई ऐसा, और वैसे भी अभी मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, तो पीछे से कुछ बदलने की इच्छा तो नहीं है, पर अगर जैसे आपने पूछा तो एकमात्र इच्छा ये होगी, मुझे इंजीनियर बनने का शौक था, लेकिन फौज में रहते हुए मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला जिसमें कि मैं बी बन सकूं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया मेरी हॉबीज में मुझे जिज्ञासा विज्ञान की तरफ बहुत है, तो मुझे थोड़ा सा इसमें मिला भी है। एक तो जैसे मैंने बोला कि मुझे पायलट बनना था, वो भी मैं बन चुका हूँ, आर्मी एविएशन में मैंने 5 साल हेलीकॉप्टर भी उड़ाया है,
0: जी
1: और साथ में मैं ऑर्डनेंस फैक्ट्री में जब लोहे के सामान से, मतलब मेटल धातु के सामान से गोला बारूद वगैरह बनाते थे,
0: जी
1: उसका क्वालिटी एश्योरेंस करता था, तो वहां पे मैं आधा मेटलर्जिस्ट बन गया हूँ, और इससे मुझे काफी वो है, तो अगर एक चीज होती तो मैं शायद इंजीनियर बनने की सोचता।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आइए दोस्तों, इसी बात पे कर्नल नरेश जी का गाया हुआ ये खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

0: बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही प्यारी गायकी। कलर साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और फिर एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं तो आप क्या चाहेंगे कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं?
1: परिचय एक अच्छे नागरिक की तरह, एक देशभक्त की तरह आप मेरा परिचय दें तो बहुत ही आनंद होगा।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। तो लीजिए दोस्तों, पेशे खिदमत है कर्नल नरेश साहब का गाया हुआ एक और प्यारा सा गीत।

0: बहुत ही प्यारा गीत। सर, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप हर दिन अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करते हैं?
1: हमारी जो बचपन से ट्रेनिंग रही है, ये खुशकिस्मती है, हमारा सौभाग्य है कि सैनिक स्कूल से लेके नेशनल डिफेंस एकेडमी या इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, फौज का हमारा मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि पहले देश, उसके बाद फिर जो हमारे जवान जिनके ऊपर हम अपना कमांड करते हैं, और उसके बाद आखिर में हमारा होता है। ये चेटवुड करके एक थे अंग्रेज जनरल, उनका दिया हुआ मोटो था, और यही मोटो हमारे जीवन में हर वक्त रहता है, और इसी से इंस्पायर होके, प्रेरित होके पूरा जीवन निकाला, तो बस यही एक तमन्ना है।
0: बहुत बढ़िया, बेहतरीन, सुंदर। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कर्नल नरेश साहब का गाया हुआ एक और गीत।

0: थैंक यू सो मच कर्नल सर, आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के साथ। और अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके पसंद का सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत कौन सा है?
1: बचपन में जब मैं 9 साल का था तब एक पिक्चर आई थी मिलन
0: जी,
1: और उसका एक गाना था सावन का महीना पवन करे शोर, ये मुझे बहुत ही प्रिय गीत लगता है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आइए दोस्तों, कर्नल साहब का ही गाया हुआ एक और गीत सुन।

0: थैंक यू सो मच सर, बहुत ही प्यारा गीत। और अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे श्रोताओं को, हमारी ऑडियंस को भी एक मैसेज दीजिए।
1: सारे श्रोताओं को मैं मानता हूं कि वो संगीत में और गीत में रुचि रखते हैं, इसीलिए हमारा गाना सुनते हैं। तो मैं एक तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन लोगों को भी संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं और उनको हर वक्त खुशहाल रखें, गुनगुनाते हुए गाते हुए रखें।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत आभार। आपके गीत सुनकर, आपसे बातें कर बहुत मजा आया।
1: धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच सर।
2: तो दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है। सुनते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आइए दोस्तों, आज के कलाकार का एक बहुत ही पवित्र, एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही मधुर कार्यक्रम मैं लेकर हाजिर हूँ, आपका दोस्त समीर। और आज हमारे साथ जो टैलेंट, जो प्रतिभा, जो गायिका मौजूद है वो है गौरी जी। बातचीत होती रही तो बस मैं गौरी जी को गौरी माँ कह बैठा, अच्छा लगा मुझे। तो बस चलिए, मेरे लिए तो मैं वो माँ ही हो गई, अब मैं उनको गौरी माँ ही बुलाऊंगा, बाकी की बातें हम गौरी माँ से करेंगे। और गौरी माँ, आपका बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सभी सुनने वालों को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ना, आप कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं आप?
1: सबसे पहले मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने मुझे माँ कहा। आई थिंक दैट्स अ प्रिविलेज गिवन टू मी।
0: आई थिंक प्रिविलेज इज माइन।
1: और मैं बंबई की हूँ, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, ऑलवेज लिव्ड हियर। और प्रेफरेबली would like to continue to live in Mumbai as long as I live.
0: Okay, no problem. It's okay. तो आप अभी क्या करते हो माँ? I mean, what are you doing right now?
1: I am retired now.
0: But not tired.
1: No, definitely not.
0: बिल्कुल ठीक है.
1: Definitely not. I had a Manjini's cake shop.
0: अरे वाह.
1: In one of the buildings in my colony itself.
0: Okay.
1: Which I ran. वो 30 साल मैंने चलाया. तो अभी 23 में we had some family problems, I should say. And means I couldn't manage. मैं manage नहीं कर पा रही थी, तो

0: वो साकिना का शिफ्ट हो गया था, फिर इसके बाद वापस वो लोग शायद इधर आ गए थे, एनीवेज तब तक मैंने छोड़ दिया था। एंड आई यूज्ड टू लिव इन कांदिवली ईस्ट।
1: ओके
0: चलिए, एनीवेज दोस्तों आपने जाना कि गौरी माँ कहाँ है, क्या करती है, और आगे बढ़ते हुए पहले हम गौरी जी के गाए हुए इन गीतों का आनंद उठाएं, उसके बाद हम वापस आए और उनके बारे में जानने के लिए, उनके संगीत को जानने के लिए। पेश करता हूं ये गीत

0: बहुत सुंदर गायकी और बहुत ही सुंदर प्रारंभ। गौरीमा मुझे आपका बहुत बहुत स्वागत है माँ। अच्छा मुझे ये बताओ गौरीमा कि संगीत की यानी कि म्यूजिक की यानी कि आपकी गायकी की यानी कि आपकी सिंगिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, कब से गा रहे हैं आप, किसने आपको मोटिवेट किया या किसने आपको कहा कि बस अब गाना शुरू कर दीजिए?
1: मेरा अभी 2022 में मैंने सबसे पहले मुंह खोला गाना गाने के लिए।
0: अच्छा।
1: बिफोर दैट आई डिडंट सिंग एट ऑल।
0: ओके।
1: और मेरी माँ एक्चुअली आई थिंक इज माई द वन हु मोटिवेटेड मी मोस्ट। तो उन्हें मैं ऐसे अनप्लग्ड गाने गा के जस्ट रिकॉर्ड करके सुनाती थी।
0: ओके।
1: तो वो इतनी खुश होती थी, एवरी डे शी यूज्ड टू आस्क मी और किया क्या रिकॉर्ड, आज रिकॉर्ड किया क्या, आज रिकॉर्ड। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट। फिर मेरी बड़ी बहन है तो वो स्टार मेकर की मेंबर थी, तो शी टोल्ड मी टू अबाउट स्टार मेकर। शी लिटरली प्रेशराइज मी इनटू जॉइनिंग स्टार मेकर और आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज इट्स अ लवली प्लेटफॉर्म। और मेरी अभी समदन है नमिता।
0: okay.
1: जो जिसने मुझे ये ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया, ये फैमिली में इंट्रोड्यूस किया। और दिस फैमिली इज लिटरली नाउ माय एक्सटेंडेड फैमिली।
0: वाओ,
1: वेरी वेरी नाइस पीपल।
0: ब्यूटीफुल।
1: यतीन जी हैं, शीतल हैं।
0: ओके।
1: शीतल को पिकर। वेरी नाइस पीपल। यतीन नाडकर्णी बैंगलोर में हमारे कैप्टन है। को कैप्टन शीतल कोपिकर है जो मुंबई में।
0: ओके, ब्यूटीफुल। तो दोस्तों आपने जाना कि किस तरीके से, ठीक है मैं मानता हूँ, हम सभी मानते हैं कि कोविड ने हम सभी पूरे संसार को बहुत सताया, बहुत चोट पहुंचाई, बहुत दुख दिया। लेकिन वो ये ना कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिक्के का दूसरा पहलू जो कोविड का आया वो ये कि इतने सारे लोगों की प्रतिभाएं निकल के बाहर आई, कितने ही लोग स्टार मेकर पर जुड़े, स्टार एसम्यूल पर जुड़े। वैसे तो मैं टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन फिर भी जिन्होंने स्टार मेकर बनाया उन सब लोगों को मैं बहुत शुक्रिया कहता हूं कि जिनकी वजह से इतने सिंगर्स, इतनी प्रतिभाओं से मुझे मिलने का मौका मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मतलब सेंटी हो गए, थोड़े इमोशनल हो गए, आगे बढ़ते हुए पहले इन गीतों का आनंद उठाएं, फिर इसके बाद वापस आएं मैम के पास। चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: बहुत सुंदर। आपने बताया गौरीमा कि अभी 2022 में ही आपने गाना शुरू किया। मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है। मैंने जो एक बुक लिखी एकलव्य एक अकेला योद्धा, उसमें मैंने इस एक चैप्टर मेंशन किया है कि किस तरीके से हमारे जो सीनियर एक्सपीरियंस्ड प्रबुद्ध लोग हैं वो किस तरीके से नए तरीके से कुछ सीख सकते हैं। आप उसका बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल हो कि आपने बस एक डेढ़ दो साल पहले ही आपने गीत गाना शुरू किया और इतने प्यारे सिंगिंग आपने कर की, दैट इज सो ब्यूटीफुल। तो
1: इट्स वेरी नाइस ऑफ यू।
0: मैं तो ये कहूंगा माँ कि एक नई जिंदगी शुरू हुई, एक नया बचपन, क्योंकि बच्चे ही सीखते हैं ना। बच्चे सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, चोट खाते हैं, फिर खड़े होते हैं, और हम, मैं और आप उसी जगह पर आ गए। अब हम फिर से सीख रहे हैं। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट, राइट? तो चलो अपनी संगीत के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि किस तरीके का म्यूजिक आपको पसंद है, और किस तरीके का म्यूजिक मतलब क्लासिकल हुआ, भजन हुए, गजलें हुई, सूफी गाने हो गए, या फिर बहुत प्लेन एंड सिंपल बॉलीवुड, और आपके अच्छे फेवरेट सिंगर्स के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए।
1: मुझे तो एकदम आई एम अ टोटल बॉलीवुड फैन।
0: ओके,
1: तो मैं नॉर्मली बॉलीवुड ही गाती हूँ, बॉलीवुड आई मीन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स गाती हूँ, एंड आई लव द रेट्रो वंस, राइट, ऑलमोस्ट फ्रॉम द 50s ऑनवर्ड्स। और सिंगर्स तो दे वर ग्रेट सिंगर्स, नो, मोहम्मद रफी जी, किशोर कुमार जी, आशा भोसले जी, लता मंगेशकर जी, मुझे पसंद है वो जरा मस्ती वाले नटखट, थोड़ा सम नॉटी सॉन्ग्स, आई लव देम,
0: राइट? वो आपकी आवाज में भी सुनाई दे रहा है गौरीमा कि आप खूब नटखट हो, दिख रहा है, सुन रहा है, ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। बॉलीवुड सिंगिंग इसी वजह से सबसे ज्यादा पॉपुलर है कि वो बड़ी आराम से, बहुत ही खूबसूरती से हमारे दिलों तक आ जाती है, सुनने में भी सुरीली लगती है, और उसको गर्म गाना चाहे तो गाने में भी अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया,
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हुए अभी इन गीतों का आनंद उठाएं और फिर वापस आए कुछ और जानने के लिए।

0: बहुत खूब, बहुत बढ़िया।
1: गौरीमा मुझे ये बताओ, आपने बहुत ही प्यारी सी एक्सपीरियंस्ड भरी हुई जिंदगी जी और जी रहे हैं अभी।
2: हाँ जी।
1: अभी तो पूरी की पूरी वापस से शुरुआत हो गई है आपकी जिंदगी की, तो कोई ऐसा सपना बचपन से अगर आपने देखा हो जो आज तक आपने किसी को बताया ना हो, आज मौका है, उसे बताइए और उसे पूरा कर लीजिए, हम सब आपका साथ देंगे।
2: मुझे, मैं बहुत ही छोटी थी, कुछ आई थिंक 4 या 5 साल, तभी हम लोग वी वर फ्लाइंग टू कैलकटा।
1: ओके।
2: तो फ्लाइट पे मुझे कंटाल, मींस आई वाज गेटिंग बोर्ड, और मैं बहुत किताबें पढ़ती थी। तो मैंने मेरे पापा को बोला कि मुझे किताब चाहिए पढ़ने को, मैं बोर हो रही हूँ। तो उन्होंने बोला जाओ एरोस्टिस से पूछो। तो मैं गई एरोस्टिस से, मैंने पूछा आपके पास किताब है, तो वो बैठी उधर मेरे साथ, मुझे लिया गोद में और बोली मेरे पास किताब तो नहीं है लेकिन मैं कहानी सुना सकती हूँ। That impressed me so much कि as I grew up, my aim was to become an aerostis.
1: Okie dokie.
2: Because you know, I found that very touching and very sweet. So then slowly, of course, it's just a childhood dream. So wo thoda jawani ka, you know, that dream. And then slowly I realized that I have worked in a travel agency, I worked in offices also. And mujhe ye dhyan aaya ki if you are self-employed, then you only answer to yourself.
1: Okay.
2: Which is what I wanted. So I thought of this Manjini shop, which I could manage even alone.
1: I understand. Ji.
2: Okay. That's how I went into this.
1: Okay, so beautiful. इस बात से माँ मुझे याद आ रहा है कि मैं थोड़ा सा सनकी किस्म का इंसान हूँ माँ, बुक्स से मुझे भी बहुत प्यार है और ट्रेन में चलता हूँ आज के डेट में या कहीं पर भी होता हूँ तो 99.99% पॉपुलेशन जो है वो फोन में घुसी हुई दिखाई देती है मुझे। बड़ा दुख होता है और अब आदत पड़ गई है तो क्या करूँ, मतलब ट्रेन में घुसता हूँ तो सिर्फ यही देखता हूँ जो मैं देखना नहीं चाहता कि हर आदमी फोन में है। अगर पूरी की पूरी ट्रेन में या बोगी में जिसमें मैं बैठा हूं अगर कोई भी एक व्यक्ति मुझे किताब पढ़ता हुआ दिख जाता है तो मैं तुरंत तो उसके पास जाकर उसको कंग्रेचुलेट करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, थैंक यू कहता हूं कि आप तो कम से कम पढ़ रहे हैं। बहुत प्यारी सी बात कही आपने कि एयर होस्टेस ने आपको कहा कि किताब तो मेरे पास नहीं है लेकिन वो एक कहानी सुना सकती है आपको, तो कुछ ऐसा ही हुआ था उसकी उसी चीज से यू नो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड होके मैं बच्चों की कॉमिक्स बुक्स या ऐसी कुछ कहानी की किताबें खरीद लेता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, 6-7-8, इससे ज्यादा नहीं, और ट्रेन में बैठा तो कोई छोटा बच्चा दिख जाता है तो मैं उनको दे देता हूँ बुक्स के लिए, बेटा ये बुक पढ़ लो। उनके माँ बाप मुझे बड़ा
2: लवली
1: वो घूर के देखते हैं मेरे को कि जैसे मैंने कोई बंदूक बंदूक दे दी उनको, तो मैं कहता हूँ कि अरे बच्चे हैं इनको किताब पढ़ लेने दीजिए, डोंट वरी, मैं इनसे ना कोई, मुझे कोई पैसा नहीं लेना है, मुझे कुछ नहीं लेना है, आई जस्ट विश दैट दीज किड्स शुड बी देयर इन स्टोरीज रादर देन इंस्टाग्राम, तो इनको पढ़ने दीजिए बस, बाकी कुछ नहीं, मैं फौरन पलट के चल देता हूँ वहां से सो दैट दे कैन नॉट यू नो आर्ग्यू विद मी और टॉक टू मी। एनीवेज, सो आई डोंट नो, दिस इज माय वे ऑफ जस्ट शेयरिंग द बुक्स टू द वर्ल्ड।
2: बहुत ही खूबसूरत विचार है आपका।
1: कितना पैसा लगता है माँ इसमें, सोचो ना आप, 20-25 रुपए की एक किताब आती है ना, 100 रुपए की मैंने 4 किताबें ली और बांट दी तो क्या हो गया, तो ठीक है,
2: और क्या जाने आगे जाके वो बच्चा फिर यू नो इंटरेस्ट डेवलप करे बुक्स में,
1: या प्रोबेबली इट कुड हैपन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए, अभी तो गौरीमा की गाय हुई, इन गीतों का आनंद उठाएं एंड देन विल कम बैक फॉर मोर टॉक्स।

0: बहुत सुंदर गायकी।
1: गरिमा, जैसे हर एक बहुत ही प्यारी सी चीज की शुरुआत होती है तो उसे एक टाइम बाउंड फ्रेम में हमें बांधना भी पड़ता है। तो हम उस जगह आ गए जहां पर मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि पूरे फैमिली मेंबर्स जो भी आज के कलाकार के आज आपको सुन रहे हैं उनसे बात कीजिए, कुछ अपने दिल की बात, कुछ अपने मन की बात उनसे कहिए, वो सुनना चाहते हैं आपको।
2: जरूर। एक्चुअली ज्यादा मेरे बहुत ज्यादा फंडास नहीं है
0: जी,
2: तो जस्ट प्लेन एंड सिंपल कोई भी हुनर पकड़े और उस पर खूब मेहनत करे, दिलो जान से मेहनत करे, इट्स मोक्ष, यू नो
0: जी।
2: और दूसरी बात यह है अपनी खुशी अपने आप में ढूंढे
0: जी,
2: दूसरों पे उम्मीद नहीं रखे कि और कोई मुझे खुशी दे तो मैं खुश हूँ, आपको हर दम खुश रहना है। हर दम, एंड इट शुड कम फ्रॉम विद इन, दैट्स ऑल आई मीन, दीज आर माय फंडास इन लाइफ।
0: ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत सी बात है। हमें किसी को जवाब नहीं देना है, वी आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीबॉडी, वी आर अकाउंटेबल टू आवरसेल्फ्स एंड आवर गॉड, खत्म हो गई बात।
2: Yes.
0: तो जो कुछ भी करना आया करिए ना।
2: Yes.
0: गरिमा, थैंक यू सो वेरी मच, आपसे बातें, आपके गीत, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। हम दोबारा हमेशा मिलते रहेंगे, आप तो हमारी फैमिली में हैं।
2: Yes.
0: तो आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर।
2: ऑफ कोर्स, और थैंक यू सर आपको फॉर सिलेक्टिंग मी फॉर दिस आज के कलाकार प्रोग्राम।
0: ओह माय गॉड, थैंक यू मैम, थैंक यू। You please,
2: yes,
0: take care.
2: Thank you. Yes, I will. You too.
0: Thank you.

तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कलाकार, जिनके गीत हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा हुनर कभी सीमाओं का मोहताज नहीं होता। हर कला के पीछे छुपा होता है समर्पण, संघर्ष और एक ऐसा सपना जो दुनिया को कुछ नया देने की चाह रखता है। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपको भी अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने की तो प्रेरणा देगी। इसी तरह नए कलाकारों और उनके प्रेरणादायक गीतों के साथ हम फिर मिलेंगे आज के कलाकार में। नमस्कार।

शुभ प्रभात दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दर्शन के भजनों के इस प्रोग्राम में। भजन क्यों किए जाते हैं, यूं तो सभी को इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी भजन करने से जो मन की शांति हमें मिलती है, स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है, सुबह सुबह जो हमारे चित्त को, हमारे स्वभाव को, हमारे सोचने की शक्ति को प्रबल कर देता है, अच्छा बना देता है, सुख से भर देता है, उसी को भजन कहते हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये भजन। भजन किसी भी भाषा में धार्मिक विषय या आध्यात्मिक विचारों के साथ किसी भी भक्ति गीत को संदर्भित करना होता है, विशेष रूप से धार्मिक धर्मों में। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये प्यारे से भजन। हमने इस दुनिया में आने के बाद क्या सही किया, क्या गलत किया, ईश्वर रूपी दर्पण में सब कुछ साफ दिखाई देता है। दोस्तों, हमें अपने आप को पहचानने की बहुत जरूरत है।